सुप्रभात, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। आज है दिन रविवार, सक्सवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026। 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है आज की ये सभा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्रैम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहां पर 2 लाख

0: कायदे दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टोंटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, खेती किसानी। विषय है गर्मा जुताई के लाभ। वाचन है अनीता तिर्की के।
3: फसल कटने के बाद खेतों को जोतने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। इससे भूमि में अगली फसल पैदा करने की क्षमता एक बार फिर से जीवित हो जाती है। यह सर्वविदित है कि फसल लेने के बाद भूमि प्रायः रुग्ण सी हो जाती है, मिट्टी की संरचना भी बिगड़ जाती है और इस मिट्टी में तरह तरह के कीड़े और बीमारियों के जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही हमारे किसान भाई गर्मी के मौसम में खेतों को परती छोड़ देते हैं और अगली फसल को बोने योग्य बनाते हैं। गर्मी की जुताई एक आवश्यक क्रिया है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता है। इसके कई फायदे हैं। रबी फसलों की कटनी के बाद घास पात या खरपतवार अनावश्यक रूप से पौधों से पोषक तत्व लेते रहते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति तो कम होती ही है, साथ ही साथ खरपतवारों या घास पात के बीज भी जमीन पर बिखर जाते हैं और बरसात आने पर खरीफ फसल में काफ़ी संख्या में उग आते हैं। रबी फसलों की कटनी के बाद खेत की जुताई कर देने से खरपतवारे की जड़ें कट जाती हैं और सूर्य की भीषण गर्मी के कारण वे नष्ट हो जाती हैं। ये खरपतवार भूमि में दबकर आसानी से सड़ गल जाते हैं और भूमि में जीवांश की मात्रा बढ़ जाती है। यही जीवांश बाद में खरीफ फसल के लिए अनेक तरह के आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। खेत की जुताई गर्मी में करने पर घास पात के बीज खेत में नहीं रह पाते हैं और इस तरह खरीफ फसल में बहुत कम घास पात उगते हैं। जो घास पात भूमि के अंदर दबकर सड़ने लगते हैं उससे जमीन की निचली परत पर नमी की सुरक्षा होती है, जो लाभकारी जीवाणुओं के लिए आवश्यक है। गर्मी की जुताई से दूसरा फायदा यह भी है कि जितने भी हानिकारक कीट हैं उनके अंडे और बीमारियों के जीवाणु ऊपर आ जाते हैं जो धूप लगने से नष्ट हो जाते हैं। जमीन में लगातार फसल लेने से उसकी हल्की भौतिक संरचना प्रभावित होती है। भूमि कड़ी होने से नमी संरक्षण, जड़ों के फैलने आदि में बाधा उत्पन्न होती है। खेतों की जुताई कर देने से भूमि की कड़ी परतें टूट जाती है और मिट्टी हल्की और भुरभुरी हो जाती है। खेतों की गहरी जुताई करने से भूमि की जो अधिक कड़ी परतें हैं वो टूट जाती है और वर्षा के दिनों में पौधों की जड़ों के पास अनावश्यक नमी का निकास नीचे की तरफ हो जाता है। इस तरह पौधे स्वस्थ वातावरण में बढ़ते हैं। ऐसी जुताई करने से निचली परत पर जो पोषक तत्व रहते हैं वो पौधों के जड़ों के नीचे रहते हैं, वो ऊपर चले आते हैं और अगली फसल को इसका लाभ मिलता है। कहा जाता है कि खेत गर्मी में जितना सूखता है बरसात में वह उतनी ही ज्यादा नमी को पौधों की बढ़वार के लिए अपने अंदर सुरक्षित रखता है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो गर्मी में जुताई करने से अनेक लाभ हैं, जिन्हें कृत्रिम तरीके से प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयां हैं। अतः हमारे किसान भाइयों को इस आवश्यक कृषि कार्य को भूलना नहीं चाहिए। गर्मी की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से ही करनी चाहिए। ऐसा करने से नीचे की घास पात की जड़ें ऊपर आ जाती है और दबकर मर जाती है। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी एकदम बारीक हो, ऐसी भी जुताई नहीं करनी है। ऐसी हालत में हवा के झोंके मिट्टी के कण को अपने साथ उड़ाकर ले जाते हैं और बहुत हद तक मिट्टी का कटाव हो जाता है। जहां भूक्षरण की समस्या हो वहां गर्मी की जुताई का कार्य बड़ी ही सावधानी से करने की आवश्यकता है, नहीं तो लाभ के बदले हानि ही होगी। इसीलिए मिट्टी को मोटे मोटे ढेलों की हालत में छोड़ देनी चाहिए। हैरो कल्टीवेटर या पाटा का व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। अगर वर्षा हुई है तो उसका फायदा उठाते हुए किसान भाइयों को जुताई अवश्य करनी चाहिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसानी, वाचन अनीता तिर्की के थे, विषय था गर्मा जुताई के लाभ। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।

0: संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल के।
1: जीवन में उदय अस्त हर्ष विषाद सफलता असफलता से जुड़ी दोनों ही स्थितियां देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ लोग जन्म से ही अवसान की अवस्था में रहते हैं। इसका कारण है अज्ञानता, अहंकार, अभिमान। इन स्थितियों के कारण उनका जीवन नष्ट हो जाता है। वे जानते नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा, क्या उचित है क्या अनुचित, शराब पीने का क्या नुकसान है इसे जानते नहीं और पीने लग जाते हैं। ये अज्ञान है। कुछ लोग परिणाम जानते हैं, लेकिन अपने प्रमाद अहंकार के कारण बुराई को गले लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ज्ञान का अहंकार है, इसलिए बुराई को जानते हुए भी अहंकारवश अपना लेते हैं कि मैं शक्तिशाली हूं, मेरा क्या बिगड़ने वाला है। विश्व में अज्ञान, प्रमाद और अहंकार से अस्त होने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो स्वयं तो नष्ट होते ही हैं, दूसरों के विनाश के बारे में भी सोचते हैं। बुराइयों से घिरे ऐसे लोगों की सबसे बड़ी विसंगति ये है कि वे अकेले में बेचैन हो जाते हैं, उन्हें अधूरापन महसूस होता है, इसलिए वे कुछ और लोगों को अपनी संगत में लेने का प्रयत्न करते हैं। जैसे शराबी लोग संगी साथी ढूंढते हैं। प्लेटो का कथन है कि अति प्रायः प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है और विपरीत दिशा में परिवर्तन लाती है, चाहे वो ऋतु में हो अथवा व्यक्ति या शासन में। यह एक कटु सत्य है कि बुराई का जितनी तेजी से संक्रमण होता है उतना अच्छाई का नहीं होता। हमें विचार करना है कि बुराई कैसे कम हो, बुराई के परिणाम के प्रति लोगों को अवगत कराया जाए, साथ ही

जनकपुर में अपने चारों पुत्रों के विवाह का शुभ कार्य संपन्न होने के बाद महाराज दशरथ सभी सगे संबंधियों सहित अयोध्या लौटे। राजकुमारों की बारात की वापसी का समाचार पाकर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भेरी और शहनाई, नगाड़े और ढोल तथा शंख की मंगल ध्वनियां चारों दिशाओं में गूंजने लगी। प्रसन्नता से झूमते नगर निवासियों ने घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों तथा नगर द्वारों को तोरण और ध्वज पताकाओं से सजाया। घर घर मंगल कलश सजाए गए। अयोध्या का ये सजा संवरा रूप देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी सिहाते हैं। राजमहल की रचना कामदेव के मन को भी मोहित करने वाली है। सामूहिक उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धारण करके राजा दशरथ के महल में सर्वत्र छा गया है।

श्रोताओं, आइए आज हम आपको प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:05 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली का वक्त होगा 7:15 पर। कवयित्री सोनम झा द्वारा रचित कविताएं आप सुनेंगे कार्यक्रम खुला आकाश में 7:45 पर। समाचार प्रभात आप सुनेंगे 8:00 पर। मॉर्निंग न्यूज़

प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 8:30 पर। 8:45 पर आप सुनेंगे संवीत गान शिक्षा, बोल है ए माटेरी। फिल्मी गीत का कार्यक्रम रसरंजन आप सुनेंगे 9:05 पर।

9:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत, 10 बजे आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। चर्चा का विषय रहेगा जल है तो कल है, गर्मियों में स्वस्थ रहे करें योग और व्यायाम। 10:30 पर आप सुनेंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम जोहार रांची।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात आप सुन पाएंगे 10:55 में। उनका संस्कृत अनुवाद होगा 11:23 पर। दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 12:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। बारह बजकर 30 पर आप सुनेंगे भारत भारती। 12:45 पर आप सुन पाएंगे लोकगीत कार्यक्रम लोक रंग के अंतर्गत। 1:00 सुनेंगे हिंदी में समाचार। 1:05 पे अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। चर्चा का विषय है सर्वाइकल कैंसर। भेंट वार्ताकार है डॉक्टर रानू कुमारी और भेंटकर्ता संजीव कुमार लाल की।
2: मित्रों नमस्कार, जोहार। मित्रों आजकल के समय में एक बीमारी है सर्वाइकल कैंसर, इससे बहुत सारी महिलाएं ग्रसित हो जा रही हैं। ये सर्वाइकल कैंसर क्यों हो जा रहा है, क्या हमारी बिगड़ती लाइफस्टाइल है, क्या हमारा खान पान है, कौन कौन से तत्व इस सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं और सर्वाइकल कैंसर का सही प्रकार से हमें मालूम पड़ जाए क्या इसके लक्षण हैं, ताकि समय रहते हम इसका उपचार शुरू कर दें और इसका बचाव कैसे करें, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं डॉक्टर रानू कुमारी। रानू कुमारी जी स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद।
2: रानू जी, ये सर्वाइकल कैंसर आजकल काफ़ी बढ़ता जा रहा है, ये किस तरह की बीमारी है और ये क्यों हो जा रहा है इतना?
3: सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के गर्भशाया का निचला भाग जो कि योनि से जुड़ा होता है उसे गर्भशाया ग्रीवा या सर्वाइकल कहा जाता है। इसी भाग में होने वाला कैंसर सर्वाइकल कैंसर कहलाता है। भारत में महिलाओं में होने वाले कैंसरों में यह एक बहुत आम कैंसर है। दुख की बात यह है कि अधिकांश महिलाएं तब डॉक्टर के पास पहुंचती हैं जब बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी होती है, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि इस कैंसर को समय रहते रोका जा सकता है। यह संक्रमण बहुत सामान्य है और कई बार शरीर खुद ही इसे ख़त्म कर देता है, लेकिन कुछ महिलाओं में यह संक्रमण लंबे समय तक बना रहता है जिससे धीरे धीरे कैंसर बनने का खतरा बढ़ जाता है। बहुत सारी महिलाओं में खतरा अधिक इसलिए भी होता है क्योंकि उनकी शादी अगर कम उम्र में कर दी जाए या शारीरिक संबंध बार बार गर्भधारण करने की वजह से या साफ सफाई की कमी से, अगर वो महिलाएं धूम्रपान करती हों या उनकी इम्यूनिटी या कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता है या लंबे समय तक HPV इन्फेक्शन जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कि इसका मुख्य कारण है उससे ग्रस्त हो
2: तो सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या हैं ताकि हम समय रहते सावधान हो जाएं और इसका इलाज हम शुरू करवा दें, क्योंकि यदि इस तरह की बीमारी को हम इग्नोर करते हैं, लक्षण दिखता है और लक्षण को यदि हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो बीमारी विकराल रूप धारण कर लेगी और फिर आप जानते ही हैं कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है।
3: शुरुआती अवस्था में अक्सर कोई लक्षण नहीं होते, यही कारण है कि स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। कुछ महिलाओं में ये लक्षण दिख सकते हैं जैसे कि पीरियड्स के बीच खून आना या संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग होना या मेनोपॉज जो कि आपकी मानसिक बंद हो गई हो उसके बाद भी कभी कभी ब्लीडिंग दिखना या दुर्गयुत डिस्चार्ज होना या कमर या पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, ये सारे लक्षण को हम पकड़ के डॉक्टर को अगर हम टेस्ट के लिए बोले तो हम इसे इनिशियल या शुरुआती में ये बीमारी को पकड़ सकते हैं।
2: जी, ये प्रायः किस उम्र की महिलाओं को ज़्यादा घेर लेता है?
3: ये शादीशुदा महिलाएं हैं जिनमें ज़्यादा शारीरिक संबंध या जो सेक्सुअली एक्टिव जो महिलाएं होती हैं उनमें ये केसेस ज़्यादा दिखने को मिलते हैं जिनकी इम्यूनिटी भी कम हो।
2: तो इसकी जांचें किस प्रकार की जाती हैं और इसका इलाज का तरीका क्या है?
3: खास तौर पे हम इस केस में पैप स्मियर करते हैं। पैप स्मियर क्या होता है कि यह एक बहुत सरल और महत्वपूर्ण जांच है। इसमें जो हमारी सर्विक्स का जो पार्ट है, जो निचला हिस्सा है हमारे, उससे हल्के से कुछ सेल्स लिए जाते हैं और माइक्रोस्कोप के से हम उसे जांच करते हैं कि कहीं कोई असामान्य बदलाव तो नहीं है उस सेल्स में। यह जांच बहुत कम समय में ही हो जाता है और सामान्य दर्द रहित होता है। अस्पताल में भर्ती होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और सबसे महत्वपूर्ण, इससे कैंसर बनने से पहले ही बीमारी पकड़ी जा सकती है। इसे हम यूजुअली सामान्यतः हम 21 वर्ष की उम्र के बाद या शादी के कुछ वर्षों बाद महिलाओं की स्क्रीनिंग शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार हर 3 से 5 साल के बीच अंतराल ये जांच करनी चाहिए।
2: कुछ अंतराल पर हर महिलाओं को अपनी ये जांचें करवा लेनी चाहिए ताकि सतर्कता ही सबसे बड़ा इसका इलाज है। जी, कम खर्चों में जांचें हो जाती हैं।
3: जी, कम खर्च में ये जांच हो जाती है और इसमें आपको एडमिट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से ये टेस्ट हो जाते हैं, तो इसमें ऐसे कोई डरने की भी आवश्यकता नहीं है।
2: यदि आरंभ में लक्षण दिख जाते हैं और जांचे में ये लग जाता है कि आप इस बीमारी से ग्रसित हैं, तो इलाज में सुगमता आती है, इलाज में त्वरित गति से कार्रवाई की जाती है।
3: जी, जब हम एज ए पैथोलॉजिस्ट हम जब ये सेल्स देखते हैं कि हाँ अगर किसी महिला के सेल्स में अगर कैंसर होने की संभावना है, अगर हमें वो पता चल रहा है, तो हम उसे रिपोर्टिंग के तौर पे हम विशेषज्ञ के थ्रू हम उनको भेजते हैं, जिससे कि वो पता करते हैं कि हाँ इसमें कैंसर होना कितना इनमें बढ़ चुका है या फिर ये कैंसर इनमें है या नहीं है।
2: उसी तरीके से फिर इलाज शुरू
3: किया जाता है।
2: जी मैडम, ये बीमारी से बचाव के लिए टीका भी लोग लगाते हैं और भारत सरकार की ओर से भी टीकाकरण अभियान चलाया गया है सर्वाइकल कैंसर की बीमारी को रोकने के लिए, तो ये कौन सा टीका लगाया जाता है और क्या सभी उम्र की महिलाएं टीका लगा सकती हैं?
3: हमारे सरकार ने यूजुअली जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जिससे मेन कारण है सर्वाइकल कैंसर होता है, इसमें दो ऐसे महत्वपूर्ण टीका हैं जो कि है सर्वेरिक्स और गार्डासिल। सर्वेरिक्स जो है वो महिलाओं में ही लगाए जाते हैं जिनमें कि वो 9 साल से 25 साल की उम्र में हम ये टीका लगा सकते हैं और ये टीका 3 डोजेस में अंतराल में लगाए जा सकते हैं। बात करें गार्डासिल की, तो गार्डासिल में भी दो टीकों में ये इसके डिवीजन है, गार्डासिल 4 और गार्डासिल 9, जिसमें गार्डासिल 9 ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये हम ये गार्डासिल टीका लड़कों और लड़कियों में भी लगा सकते हैं, लेकिन सर्वेरिक्स में सिर्फ लड़कियों में ही ये टीका लगाते हैं। गार्डासिल 4 नाम इसलिए हम देते हैं क्योंकि ये कम जो वेरियंट है, जो वेराइटी है HPV इन्फेक्शन के, उनको पकड़ता है, लेकिन जो गार्डासिल 9 है वो 9 अलग अलग वेरिएंट को गार्डासिल ट्रीट करता है, तो गार्डासिल 9 लगाना मुझे लगता है कि ज़्यादा लाभदायक होगा।
2: और ये टीकाकरण बिल्कुल निःशुल्क है सरकार की ओर से, या कहीं हम अलग से भी लगाते हैं तो उसके लिए भी कुछ खर्च हमें लगते हैं?
3: ये किसी किसी अस्पताल में निःशुल्क होते हैं और किसी किसी अस्पताल में वो थोड़े अपने चार्ज ले सकते हैं। सरकारी अस्पताल में मेरे ख्याल से ये निःशुल्क ही है।
2: जी, और किस उम्र की महिला इसको लगाएंगी?
3: मैंने जैसे बात किया, ये सर्वेरिक्स और गार्डासिल 9 साल की लड़कियों से 45 साल की महिलाओं तक में लगाया जा सकता है।
2: जी।
3: ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर उनकी शादी हुई है तभी उनको देना है, आप 9 साल की उम्र में भी टीका लगा सकते हैं।
2: एक बार ही लगा सकते हैं?
3: एक बार लगाना है, लेकिन उनके डोजेस अंतराल 3-3 ऐसे डोजेस में लगाने होते हैं। जैसे गार्डासिल जो आपके 9 है वो 2 डोज में लगा सकते हैं, एक तो जब आपको पता चलता है और उसके बाद 6 महीने बाद फिर से, और अगर 9 से 14 साल में गार्डासिल का वैक्सीन हमने लगाया है तो हमें दूसरे डोज है 15 से 45 साल में। अगर 9 से 14 साल में आपकी वो डोज छूट गई है तो आपको

0: फिर बीमारी बढ़ती जाती है और महिलाएं अक्सर घर के कामों में व्यस्त होती हैं और इन बातों को इग्नोर कर जाती हैं। तो क्या कहेंगे हमारी माताओं, बहनों या जो लड़कियां हैं, जो नवयुवतियां हैं, 9 साल से ऊपर की जो लड़कियां हैं, उनको आप क्या कहेंगे?
1: हमारे समाज में महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य को पीछे रखती हैं क्योंकि घर और परिवार की जिम्मेदारियों में वो अपनी जांच और इलाज को टालती रहती है। लेकिन याद हमें ये रखना चाहिए कि स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार की आधारशिला होती है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव संभव है, पर हमें समय पर स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। पैप स्मियर एक सरल जांच है और सुरक्षित जांच है, जिसमें कि पेशेंट को एडमिट होने की भी ज़रूरत नहीं है। और कई महिलाएं शर्म या डर से ये टेस्ट नहीं करवाती हैं, बट मुझे ये बोलना है कि आप इसमें इससे डरिए मत, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने और दूसरी महिलाओं को भी जागरूक करें।
0: तो यदि आप जागरूक होते हैं, सजग होते हैं और इस तरह के लक्षण आपको दिखते हैं, तो आप देर नहीं कीजिए, तुरंत पैप स्मियर टेस्ट है आप करवा लें और ये हर जगह उपलब्ध है और बिल्कुल निश्चिंत पूर्वक अपने आगे की भविष्य की रूपरेखा आप तैयार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रानू कुमारी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और सर्वाइकल कैंसर और उसके बचाव पर आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा, रोज की बात ही, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों और परिवार का भी ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, आज का दिन आपका शुभ एवं मंगलमय हो, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, विषय था सर्वाइकल कैंसर, भेंट वार्ताकार डॉक्टर रानू कुमारी और भेंट करता थी संजीव कुमार लाल की।

स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम सुबह सुरीली में, और सुबह सुरीली में हम सुनते हैं फिल्मी गीत। आइए सुनते हैं पहला फिल्मी गीत। फिल्म अयाज से संगीत रविंद्र जैन के हैं, गीत आनंद बख्शी के और आवाज़ येसुदास की।

आइए सुनते हैं सुभा सुरीली का अगला गीत। फिल्म प्रेम पर्वत से संगीत जैदो के हैं, गीत जानिसार अख्तर के, आवाज़ लता मंगेशकर की।

0: अब वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
5: तो क्या करूं?
6: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
6: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
0: स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम सुबह सुरीली में। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म आरोप से। भूपेन हजारिका का संगीत है, माया गोविंद के गीत, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

अगला गीत फिल्म आराधना से, संगीत एसडी वर्मन के हैं, गीत आनंद बख्शी की आवाज़, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: अभी आप सुनेंगे कार्यक्रम में खुला आकाश में कवयित्री सोनम कुमारी झा की स्वरचित कविताएं।
1: मेरी कविता का शीर्षक है रांची। जलप्रपात जहां सिर्फ गिरते नहीं, जलप्रपात जहां सिर्फ गिरते नहीं, वे पहाड़ों की स्मृतियां नदियों तक पहुंचा देते हैं। पत्थरों से टकरा कर भी पानी अपनी कोमलता नहीं छोड़ता। इन्हीं बहती सांसों के पास देवड़ी मंदिर है, जहां पत्थर प्रेम और प्रार्थना एक ही भाषा में बोलते हैं, जहां आस्था शब्दों की मोहताज नहीं, बस मौजूद रहती है। सुबह की रांची ढुसके की खुशबू, सुबह की रांची ढुसके की खुशबू से पहचानी जाती है। चावल और चने का सादा स्वाद जो थाली से पहले मन तक पहुंचता है, यह भोजन नहीं घर की याद है। फिर पहाड़ी मंदिर की सीढ़ियाँ, फिर पहाड़ी मंदिर की सीढ़ियाँ, जहाँ चढ़ते चढ़ते शहर छोटा होता जाता है और मन हल्का। ऊपर से रांची एक नक्शा नहीं एक अनुभूति लगती है, ऊपर से रांची एक नक्शा नहीं एक अनुभूति लगती है। रांची इसलिए खास नहीं कि वह ऊंची है, रांची इसलिए खास नहीं कि वह ऊंची है, बल्कि इसलिए कि वह गहरी है, पानी में, आस्था में और अपने लोगों के सहज स्वभाव में। अब मेरी अगली कविता है उसकी आंखें। उसकी आंखें, जब भी मैं उसकी आंखों में उतरती हूँ, मुझे लगता है कि मैं किसी उजले अंधेरे में धीरे धीरे तैर रही हूँ, जहाँ गहराई भी रोशनी है और रोशनी भी शांति। उसकी आंखें ऐसी लगती हैं जैसे किसी प्रार्थना ने खुद को दो मोतियों में बांध लिया हो। उसमें एक नमी है और वह दुख की नहीं, वह तो किसी दिव्य स्पर्श की बची हुई आभा है। मैं उसे छूने का साहस कभी नहीं करती, मैं उसे छूने का साहस कभी नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुछ चीज़ें स्पर्श से नहीं, सिर्फ निहारने से पूरी होती है। उसकी पलकों का उठना गिरना मेरे भीतर कोई ऐसा दीप जलाता है जो बिना ज्योति के ही उजाला देता है। कभी कभी मुझे लगता है मेरी अपनी आत्मा उसकी आँखों में अपना प्रतिबिंब ढूंढ लेती है, जैसे वह जानती हो, जैसे वह जानती हो कि मेरा प्रेम पवित्र है, निर्मल है और बिल्कुल उसी तरह स्वार्थहीन है, जैसे किसी भक्त का मौन प्रण। अपने ईश्वर से उसकी आंखें मेरे लिए सिर्फ सुंदर नहीं, उसकी आंखें मेरे लिए सिर्फ सुंदर नहीं, एक दरवाजा है जहां मैं खुद को भी पा लेती हूं और उसे भी पा लेती हूं। अगला शीर्षक, सर्द सुबह का प्रेम दीपक। उसने मेरे माथे को सर्द होठों से ऐसे चूमा, उसने मेरे माथे को सर्द होठों से ऐसे चूमा, मानो हिम रात्रि में कोई तपता हुआ मंत्र धीरे से मेरे भीतर रख दिया हो। कपकपाती सुबह में वह इस तरह मेरे माथे को छू गया जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सदियों की जमी ठंड से मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया हो। उसके हृदय शॉल की बुनाई इतनी गजिन है, इतनी गजिन है, जैसे ठंडी सुबह में अचानक धूप का स्पर्श उतर आए। उसकी हथेलियों का स्पर्श मानो गुलाबी सूरज की किरणें। मेरे जीवन में सदैव का व्रत लेकर उतरी हूँ। उसकी वे गहरी आंखें जैसे मेरे भीतर के अंधेरों में अचानक दिव्य चांद प्रकट हो जाए और मैं उसी उजाले में अपना नाम पढ़ती जाऊँ। थक गई हूँ इस जगपथ पर चलकर, अब तुम्हारे ही भीतर एक शांत आश्रम बनाकर विश्राम चाहती हूँ, जहाँ प्रेम प्रार्थना की तरह बहे और मैं स्वयं को तुम में विश्राम कराती रहूँ। अगला शीर्षक है प्रेम। प्रेम ना गुलाबी गीत रचता है, ना रस्मियों से सपनों के धागे बुनता है। वह तो एक मौन प्रकाश है, वह तो एक मौन प्रकाश है जिसकी लौ तुम्हारे भीतर बिना आवाज के जलती रहती है। उसके होने ना होने के सूक्ष्म अंतराल में भी, उसके होने ना होने के सूक्ष्म अंतराल में भी वह धड़कता है जैसे शांत सरोवर में किसी अदृश्य चांद का प्रतिबिंब, जो टूटता भी है और फिर स्वयं ही पूर्ण हो जाता है। प्रेम सोचा नहीं जाता, प्रेम सोचा नहीं जाता, वह तो अचानक उतरता है, जैसे किसी प्राचीन मंदिर में शिवलिंग के सामने आंसू पलकों की बांध तोड़ स्वयं को अर्पित कर दे, जैसे उसकी आंखों में झांकने से पहले, जैसे उसकी आंखों में झांकने से पहले तुम्हारा साहस अपने ही भीतर की गहराई से कपकपा उठे, फिर पलकें पिघलकर नजरों को नजरों से एक अनकहा आलिंगन दे दे, फिर आंसू मंत्रों के बीच शब्दों से ज्यादा बोले, और तुम जानो कि जप का सबसे पवित्र हिस्सा कभी कभी मौन हो जाता है, और तुम जानो कि जप का सबसे पवित्र हिस्सा कभी कभी मौन हो जाता है, फिर शिकायत भी उसी से, समर्पण भी उसी से, और अंततः तुम अपने भीतर की नदी बनकर उसके विशाल सागर में धीरे धीरे विलीन हो जाओ, और अंततः तुम अपने भीतर की नदी बनकर उसके विशाल सागर में धीरे धीरे विलीन हो जाओ। अगला शीर्षक है स्वयं की तलाश। कई बार खुद को तलाशते हुए मैं अपने ही भीतर किसी दीप शिखा की कांपती लौ सी दिखी, धीमी कोमल और अपने अस्तित्व में अडिग। हाँ मैं यही थी। कई बार खुद से मिलते हुए मैं किसी प्राचीन मंदिर की सीढ़ियों सी लगी, जहाँ हर पग पर एक अनचीखा दर्द और एक अनसुना राग ठहरा था, और लगा नहीं मैं यह नहीं। कई बार खुद को तोड़ते हुए मैं मिट्टी की उर्वर देह की तरह बिखरी, पर उसी टूटन से एक नया बीज अंकुराया और समझ आया कि टूटना भी एक साधना है। कई बार खुद को जोड़ते हुए मैं अपने अंदर किसी शंख की अदृश्य धड़कन सुनती रही, ऊपर से शांत और भीतर से एक उफनता सागर, अपना अर्थ खोजता हुआ। वह कौन सा रास्ता है जो मुझे मेरे भीतर के नदी स्रोत तक ले जाता है, जहां जल मैं हूँ, गहराई मैं हूँ और तट भी मैं हूँ। पर इतना जानती हूँ कि यह यात्रा मेरी जन्म जन्मांतर की है और इसे मुझे ही पार करना है। ठहरो, मेरा हाथ मत पकड़ो, मैं अपने ही भीतर की आकाश गंगा से अपना हाथ खुद चुन लूंगी, वही मुझे दिशा देगी। ठहरो, तुम मुझे सहारा मत दो, एक स्त्री का मन अपने ही भीतर ही शक्ति का गुप्त स्रोत लिए रहता है, मैं उसी से सहारा लूंगी, उसी से उठूंगी। अगला शीर्षक है डोरबेल। डोरबेल की आवाज से लौट आती है मम्मी में मम्मी। सुबह बच्चे स्कूल निकल जाते हैं, उनके छोटे छोटे कदमों के साथ उसकी सारी सजगता भी भविष्य की ओर चल देती है। दरवाजा बंद होते ही घर में एक हल्का सा सन्नाटा उतर आता है, और उसी सन्नाटे में उसे कुछ पल मिलते हैं जो उसके अपने होते हैं। बहुत समय बाद वह बैठती है और मन में एक पुरानी खिड़की खुल जाती है, जहां परंपरा की उंगली थामे वह अब तक चलती आई है, और सामने आधुनिकता की राह उसे नए सपनों की ओर बुलाती।

0: करती है। इन दोनों राहों के बीच उसे अपने ही पांव के निशान ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि यही संतुलन एक स्त्री को ही सबसे अधिक साधना पड़ता है। वह रैक में रखे सपनों की धूल झाड़ती है, जैसे कोई पुराना फूलदान फिर पानी मांग रहा हो। दिन के उन शांत घंटों में वह खुद से मिलती है, अपनी रुचियों को खोलती है, कुछ नया रचती है और भीतर छिपी उस स्त्री को धीरे धीरे फिर पहचानती है। वह सोचती है थोड़ा थोड़ा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ूं, आत्मसम्मान की रोशनी अपनी ही हथेली पर धरूं और एक दिन दृढ़ होकर अपने पैरों पर चलूं। पर उसके मन में एक हल्का सा डर भी पलता है, बच्चों की राहें कहीं अधूरी ना रह जाएं, उनके भविष्य की नींव में उनके किसी कदम की छाया ना पड़ जाए। वह डर उसे रोकता नहीं, बल्कि उसे और सजग बनाता है। और फिर शाम की हवा में डोरबेल बजती है, टन टन, एक छोटी सी परिचित आहट। वह मुस्कुराती है। यह सिर्फ घंटी नहीं, उसके बच्चों के लौटने की खुशबू है। उनकी भूख, उनकी हंसी, उनकी कॉपियों की महक और उसकी दुनिया का पूरा उजाला। उसी क्षण वह अपने सपनों को धीरे से समेट लेती है, त्याग से नहीं बल्कि उस गहरे अपनापन से जो माँ को और माँ बना देता है। दिन में जो स्त्री खुद को ढूंढ रही थी, डोरबेल की आवाज से वह स्त्री फिर मम्मी बन जाती है, डोरबेल, और लौट आती है मम्मी में मम्मी। अगला शीर्षक है प्रीत बांधकर। कैसे रखोगे तुम मेरे हिस्से की प्रीत बांधकर, कैसे रखोगे तुम मेरे हिस्से की प्रीत बांधकर, मेरी उंगलियों का पनघट स्पर्श जैसे दोपहर की नाजुक हवा बांध तोड़कर तुम्हारे भीतर स्नेह सरिता बन बह जाएगा। कैसे थाम लोगे तुम मेरे हिस्से का चांद बांधकर, मेरी आंखों की चंदन चिरैया उस पर पंख फड़फड़ाती ही उसे पिघला देगी। वह श्वेत सहत सा तुम्हारी आत्मा में उतरकर जम जाएगा। कैसे सहेजोगे तुम मेरे हिस्से की धूप बांधकर, मेरी सांसों की गर्म सुनहरी घुंघरू उसे छूते ही वह तुम्हारी छाती के बरामदे तक स्वर्ण प्रसार बन फैल जाएगा। कैसे रोक सकोगे तुम मेरे हिस्से का सावन बांधकर, मेरे हृदय मयूर की नील गर्जना जैसे उसे छुएगी वह घुमर घुमर नाचकर तुम्हारे भीतर नीर नर्तन करने लगेगा। कैसे थामोगे तुम मेरे हिस्से की प्रीत बांधकर, वह प्रेम निर्झर भी है, नर्तन भी है, शबनम भी है, शाश्वत भी है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खुला आकाश, कवयित्री सोनम झा की स्वरचित कविताएं।

0: चिड़ियाघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी।
3: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की यह भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
5: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रूपये प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रूपये प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रूपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
6: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन द अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
3: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार यह आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
7: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
3: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा कर्नाटक मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान गुजरात हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
8: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमरीका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है।

0: on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे नमस्कार प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में आकाशवाणी पर देशवासियों से करेंगे संवाद। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की हजारीबाग में दिशा की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा। स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश। राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन में मंथन तेज। झामुमो कांग्रेस के बीच राज्यसभा उम्मीदवार पर चर्चा। हेमंत सोरेन से फिर मिले तेलंगाना के डिप्टी सीएम। आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। साहिबगंज के युवक समेत 8 संदिग्ध गिरफ्तार। और आरडीसीए महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज। रातूरोड 11 और रॉकमिल्स क्रिकेट एकेडमी के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। हजारीबाग समाहरणालय सभागार में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य व्यवस्था के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जिले में प्रशासनिक स्तर पर नई टीम का गठन किया गया है और उप विकास आयुक्त को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
2: तो दिशा कमेटी के माध्यम से ये तय किया है कि मेडिकल कॉलेज में डीडीसी को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनको दिया जाए ताकि उनके देखरेख में जो भी अव्यवस्था है उसको ठीक किया जाए। सभी माननीय सदस्य ने स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बताया है कि हर छोटी छोटी चीज की ओर उन्होंने ध्यान दिया है। उम्मीद कर सकते हैं कि शायद बेहतर करेंगे। ऐसे जो एक्सपीरियंस रहा है हजारीबाग का बहुत अच्छा तो नहीं रहा है।
1: बैठक में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना प्राथमिकता होनी चाहिए और इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

0: स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अपने पूरी तरह से बीमार है, एक भी पैरामीटर पे वो खरा नहीं उतरा। पीएचडी का वही हालत है, बिजली विभाग का वही हालत है। कहीं वैसी देखिएगा तो राज्य सरकार जो है ये बैसाखी पर है, मोटा मोटी यही हम लोग कह सकते हैं।
1: झारखंड में 18 जून को राज्यसभा की दो सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और वाम दलों के बीच उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी है। इसी सिलसिले में तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि गठबंधन के सभी दलों से बातचीत की जाएगी। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता मैपिंग की प्रगति और उससे जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर और बीएलए 2 के साथ समन्वय स्थापित कर मतदाता मैपिंग कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।

0: दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक बड़े बहुराज्य अभियान के तहत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में झारखंड के साहिबगंज निवासी नीतीश पासवान समेत कुल 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित 29 और 30 मई की रात कई राज्यों के सुरक्षा कार्यालयों और पुलिस कर्मियों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल ATIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन दिवस के अवसर पर रांची में चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो थीम पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने की। इस अवसर पर पहली बार मासिक धर्म में प्रवेश करने वाली किशोरियों को हाइजीन और पोषण किट प्रदान किया गया।
1: महामारी किसी तरह का कोई उसको सामाजिक गलत सोचना नहीं है, वो एक नेचुरल फेनोमेना है। सभी कस्तूरबा बालिका को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत एक एक वो इंसिनरेटर भी दिए हैं ताकि नैपकिन डिस्पोजल के लिए वो उपयोगी रहे और जो सभी यहाँ बालिकाओं के ट्रेनिंग भी दिए है।
0: रांची और गुमला पुलिस की संयुक्त टीम के समक्ष झांगुर ग्रुप के प्रमुख और 5 लाख रुपए के इनामी अपराधी रामदेव उरांव ने अपने दो सहयोगियों प्रसाद उरांव और सुभाष उरांव के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस के अनुसार रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गठित विशेष टीम ने रांची गुमला सीमा क्षेत्र में कार्रवाई की। इस दौरान तीनों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया गया। बताया गया है कि वे झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुख्य धारा में लौटना चाहते थे। गिरिडीह जिले के नवडीहा पुलिस ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से लाखों रुपए मूल्य की नकली शराब जब्त की है। खोरी महुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान 61 पेटी तैयार नकली विदेशी शराब, 15 लीटर स्प्रिट, बड़ी संख्या में खाली बोतलें बरामद की गईं। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में आज वज्रपात के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, बोकारो, लोहरदगा, गुमला, धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी और सिमडेगा जिलों में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात की आशंका है।
2: जो लगातार थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है उसके वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट जो है वो देखी जा रही है, तो हमारा अनुमान ये है कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, जिसको देखते हुए कई मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन के लिए जो है अलर्ट भी जारी किए गए हैं। हवा की गति जो है वो भी काफी तेज रह सकती है, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा रह सकती है, चेतावनी भी जारी की गई है।
0: रांची जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित RDCA महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज रातू रोड 11 और रॉक मिल्स क्रिकेट एकेडमी के बीच खेला जाएगा। यह मैच रांची के शाखा मैदान सेक्टर 2 में सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा। टूर्नामेंट का पुरस्कार वितरण समारोह दोपहर 1 बजे आयोजित किया जाएगा। रांची जिला क्रिकेट संघ ने खेल प्रेमियों को फाइनल मुकाबला देखने के लिए आमंत्रित किया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार 9 आईएसआई के संदिग्धों की गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा, देश में धमाकों की आतंकी साजिश नाकाम, साहिबगंज के युवक समेत 8 गिरफ्तार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पहली झारखंड T20 की नीलामी पूरी, ईशान से महंगे बिके रॉबिनमेंट। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, राज्यसभा चुनाव के लिए मंथन तेज। दैनिक जागरण और रांची एक्सप्रेस की लीड है, वैभव सूर्यवंशी को

झारखंड सरकार बनाएगी स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में आकाशवाणी पर देशवासियों से करेंगे संवाद। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की हजारीबाग में दिशा की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश। राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन में मंथन तेज, झामुमो कांग्रेस के बीच राज्यसभा उम्मीदवार पर चर्चा, हेमंत सोरेन से फिर मिले तेलंगाना के डिप्टी सीएम। आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, साहिबगंज के युवक समेत 8 संदिग्ध गिरफ्तार। और आरडीसीए महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज रातू रोड 11 और रॉकमिल्स क्रिकेट एकेडमी के बीच होगी, खिताबी भिड़ंत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉव पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मैं सिल्वा आपके साथ। श्रोताओं, आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, समवेत गान शिक्षा। असमीज भाषा में बोल है ए माटीरे, गीतकार है सतीश दास।

0: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हैं ना असमिया भाषा गीत?
1: जी हाँ।
0: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का, प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे।

0: ना हुआ,
1: ना हुआ,
0: आगे ना
1: जी।
0: अच्छा ठीक है, अब गाना सिखाना शुरू करते हैं। स्वर दीजिए जरा।

ऐसे कोनो ना हुआ खून, ऐसे बोलना एक बार, और दूसरे ना हुआ दूसरे में ऐसे लंबा कर लेना खून दौर से लो, एक दो तीन।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद गान शिक्षा, गीतकार थे सतीश दास।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम रसरंजन। रसरंजन में आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत। आइए सुनते हैं पहला गीत, फिल्म हमराज से, संगीत रवि के हैं, गीत साहिल लुधियानवी के, सुर महेंद्र कपूर के।

आइए सुनते हैं अगला गीत। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत आर डी वर्मन के है, आवाज किशोर कुमार आशा भोसले की। फिल्म का नाम है सीता और गीता।

0: अब वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है, तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
2: अच्छा।
1: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: पर्सनल लोन ऑफर
6: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
5: फ्री ट्रिप टू दुबई
6: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
7: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
6: तो क्या करूँ?
7: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
6: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
7: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
8: ये देख कैसे।
9: हैप्पी बर्थडे भाई।
8: दीखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर
9: हमेशा शॉपिंग।
8: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
10: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
11: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
8: आई नो ना।
11: RBI कहता है,
12: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
13: अंतराल के बाद फिर से स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम रस रंजन में। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म गुमनाम से। शंकर जयकिशन के संगीत है, हसरत जयपुरी के गीत, आवाज लता मंगेशकर की।

आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है यादों की बारात, मजरू सुल्तानपुरी के गीत और धुन आर डी वर्मन के।

0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। गिटार पर राग नट भैरव, अलाप और जोड़ के बाद दोनों गते प्रस्तुत है। दोनों ही गते तीन ताल में निबद्ध है। कलाकार है जीएन वर्मा, तबले पर संगत कर रहे हैं श्यामानंद झा और हारमोनियम पर श्यामा प्रसाद नियोगी।
1: प्रस्तुत है संगीत का विशेष कार्यक्रम झारखंड में हिंदुस्तानी संगीत शैली के विविध आयाम। इस सांगीतिक आयोजन की छठी कड़ी में आज आप सुनेंगे जीएन उर्मा का गिटार वादन राग नट भैरव में।
2: गिटार तत्व यानी तार से बने वाद्य यंत्र के रूप में संगीत में जगह पाता है। गिटार के दो रूप हैं, स्पैनिश और हवाइन। हिंदुस्तानी संगीत में हवाइन गिटार ने जगह बनाई। इसे कक्षवी वीणा या त्रितंत्री वीणा का परिवर्तित रूप बताया जाता है। एक अन्य मत के अनुसार इसकी उत्पत्ति विदेशों में हुई।
1: राग नट भैरव की उत्पत्ति दो अलग अलग रागों के मिलने से होती है। वस्तुतः राग नट भैरव के पूर्वांग में राग नट का तथा उत्तरांग में भैरव का प्रभाव रहता है। यह भैरव थाट से उत्पन्न राग है। इसकी जाति

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। कलाकार था जीएन उर्मा, तबले पर संगत कर रहे थे श्यामानंद झा और हारमोनियम पर श्यामा प्रसाद नियोगी।

0: बच्चों, जल है धरती की मुस्कान, जल से खिलता खेत खलिहान, नदियां झरने ताल तलैया, जल से सजती दुनिया की जीवन की नैया।
1: हाँ बच्चों, बूंद बूंद की कीमत जानो, पानी को तुम व्यर्थ न मानो। आज अगर जल बचाओगे तभी सुंदर भविष्य पाओगे, क्योंकि जल है तो कल है।
0: हाँ बच्चों, जल यानी पानी हमारे जीवन की सबसे अनमोल चीज है। इसके बिना कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, खेत खलिहान जीवित नहीं रह सकता। आप देख रहे हैं ना, अभी गर्मी में कितनी प्यास लगती है, इसलिए कहा गया है जल ही जीवन है।
1: बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। बच्चों, आप भी महसूस करते होंगे कि हमेशा मन करता है कि ठंडा पानी हम पिए, चाहे खेल कर आते हों या पढ़ाई करते हों, इसलिए अपने साथ पानी जरूर रखें।
0: हाँ बच्चों, और देखा जाए तो बिना जल के जीवन संभव नहीं है। हम हर रोज पानी का उपयोग करते हैं, चाहे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, स्नान करने के लिए, या घर की साफ सफाई या बागवानी के लिए। पानी का उपयोग सभी जगह है।
1: बच्चों, हमारे किसान जब खेतों में फसल या सब्जियां लगाते हैं तो उन्हें हमेशा पानी की आवश्यकता होती है। वो अपनी क्यारियों में बर्बाद जल को भी उपयोग में लाते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत उसमें लगी होती है।
0: हाँ बच्चों, भैया ने बिल्कुल सही बात समझाया। आप गौर करेंगे तब देखेंगे पानी से धरती हरी भरी और सुंदर दिखाई देती है। पानी की कमी से बाग बगीचे भी मुरझा जाते हैं। इसलिए आप सब पानी की बर्बादी बिल्कुल मत कीजिएगा बच्चों। कहीं भी नल को खुला मत छोड़िएगा। आप चाहे तो पानी की बर्बादी को बचा सकते हैं बच्चों, तो शुरुआत कीजिए अपने घर से और आज से। जैसे ब्रश करते वक्त नल को बंद रखिए, अपनी साइकिल या आप स्कूटी को धोते हैं तो बाल्टी में एक मग डालकर धोएं, यानी कि टैप वाटर का इस्तेमाल ना करें, इससे कई लीटर पानी यूं ही बह जाता है।
1: और दूसरों को भी जल बचाने के लिए प्रेरित करें बच्चों। घरेलू उपयोग में इस्तेमाल किया हुआ जल को अपने गमले में डाल सकते हैं। वाटर फिल्टर से व्यर्थ निकले हुए जल को एक जगह जमा करके उसे भी पेड़ पौधे में डाल दें। देखिएगा, जल मिलते ही वो भी लहलहा उठेंगे।
0: घर के किसी भी नल से पानी टपक रहा हो तो अपने माता पिता को उसकी जानकारी दें। वर्षा जब भी हो तो उसे कैसे संचय करना है, इसके बारे में भी आप जानें।
1: यही तो जागरूक बच्चे की पहचान है बच्चों, है ना? तो आप लोग भी जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए।
0: बच्चों, गर्मी बहुत पड़ रही है, तेज धूप, पसीना और थकान, तो इससे बचने के लिए आपको अपने शरीर को खास ध्यान रखना होगा।
1: तो बच्चों, आप लोगों ने दीदी का इशारा समझ लिया होगा, है ना, कि सुबह सुबह हमें उठ जाना चाहिए और योग और व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें, है ना?
0: हाँ बच्चों, क्योंकि मुझे पता है आप सब थोड़ा आलस से घिर गए हैं, स्कूल भी बंद है, तो क्यों ना छुट्टियों का आनंद लीजिए। देखिएगा सारा आलस कैसे छूमंतर हो जाएगा। बस सुबह उठिए और हल्का व्यायाम और योग का अभ्यास कीजिए।
1: हाँ बच्चों, प्राणायाम करने से शरीर को ताजगी मिलती है। सूर्य नमस्कार करना सीख लें तो शरीर मजबूत और लचीला भी बनता है।
0: और बच्चों, जब आप खेलेंगे तो उससे शरीर भी सक्रिय रहेगा, साथ ही खेलने से आपके नए दोस्त भी लेंगे, यानी कि हर दिन एक नए दोस्त आपसे जुड़ते चले जाएंगे।
1: बच्चों, एक बात और, अगर आप योग या प्राणायाम की शुरुआत करते हैं तो इसकी शुरुआत आसान तरीके से सीखें या करें, जैसे ताड़ासन शरीर को सीधा और मजबूत बनाता है। प्राणायाम मन को शांत और ऊर्जावान रखता है, इसलिए योग प्राणायाम अवश्य करें।
0: लेकिन बच्चों, कुछ सावधानियां भी बरतें। अभी गर्मी का मौसम है इसलिए खूब पानी पिएं, तरबूज, खीरा, नारियल पानी जैसे फल को खाएं। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात है कि फास्ट फूड, जंक फूड से बचें, ज्यादा ठंडी चीजें भी आप न खाएं।
1: अभी गर्मी का मौसम है बच्चों, और धूप में निकलते वक्त छाता, टोपी और पानी की बोतल अपने साथ रखें। शाम को ही आप बाहर खेलने जाएं, दोपहर में धूप में न निकलें, और हाँ, मोबाइल भी कम चलाएं। परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ वक्त बिताएं। गर्मी की छुट्टी यादगार बन जाएगी। मनपसंद कार्य कीजिए, संगीत सुनिए, पेंटिंग बनाइए और नया आर्ट सीखने की कोशिश कीजिए, साथ ही आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, है ना? तो दीदी बातें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन उससे पहले हम बच्चों का थोड़ा मनोरंजन भी करवा दें तो कैसा रहेगा? तो चलिए बच्चों को सुनाते हैं ये बाल गीत।

0: भैया हमने बच्चों को बाल गीत सुनवा दिया और अब बारी है कि हम बच्चों के मुख से कुछ सुनेंगे।
1: तो चलिए बच्चे भी तैयार हैं, उनसे सुन लेते हैं।
2: क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम मानवी कुमारी है।
2: मानवी, आज अपने दोस्तों को आप क्या सुनाएंगी?
3: आज मैं अपने दोस्तों को बारिश पर एक कविता सुनाऊंगी। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप टिप टिप बूंदा बांदी, फिर आई घंघोर गरजती बारिश के संग आंधी। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर, गाय उठकर खड़ी हो गई, झबरू दौड़ा भीतर। राज मिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट, और होड़ी पर आंधी कर दी टूटी फूटी खाट। हो गए चोड़म चोड़ा सारे, धूप में सूखे कपड़े, इधर उधर उड़ते फिरते थे मंगलू कैसे पकड़े। चाची ने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए सारे, पलंग के नीचे जा लेटी बिजली के डर के मारे। धन्यवाद।
2: वाह, बहुत अच्छी कविता। आपका नाम क्या है और आप अपने दोस्तों को क्या सुनाएंगे?
4: मेरा नाम अमन कुमार गुप्ता है, मैं कक्षा चौथी में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको सवाली राम कविता सुनाने जा रहा हूँ। बबलू बस करते सवाल है, क्या उत्तर दे बुरा हाल है। बबलू तीन बरस के बच्चे, मगर अकेल के तनिक न कच्चे। नई चीज कोई दिख जाती, पूछे कैसे काम है। आती मिट्टी में सोंदापन क्यों है, मिर्चों में तीखापन क्यों है। मेघा जल बरसाते कैसे, इंद्रधनुष दिख जाते।
2: बहुत सुंदर कविता। आप क्या सुनाएंगी? पहले तो आप अपना नाम बताइए।
5: मेरा नाम अन्विशा श्रीवास्तव है, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। आलू

0: है, धन्यवाद।
1: बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। आपका नाम क्या है?
0: मेरा नाम आकांक्षा है।
1: आप क्या सुनाएंगी?
0: मैं अपने दोस्तों को एक कविता सुनाना चाहूंगी। सूरज निकला, धूप खिल गई, माँ मुझको भूख लग गई, ची ची ची ची ची ची कहाँ उड़ गई मम्मी जी। छोटी नन्ही चिड़िया हूँ, माँ तेरी मैं गुड़िया हूँ, जल्दी से अब आ जाओ, खाना मुझे खिला जाओ, चुपके से मैं सो जाऊंगी, ची ची नहीं मचाऊंगी।
1: वाह, चीची नहीं मचाऊंगी, चुपके से सो जाऊंगी। बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता। आप अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम शाश्वत चौधरी है, मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। मैं आज आप सभी के सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उस कविता का शीर्षक है याद तुम्हारी आती है। ये कविता रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। ये एक बहुत ही सुंदर कविता है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली रहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोक कर लाती है, जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब चांद शान से उगता है और दिशा दिशा धुल जाती है, जब ओस के रूप में हरी घास चमकीले मोती पाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। झरने जब झर झर झरते हैं, नदियां मस्ती में बहती हैं, जब देश देश की बातें वे

0: का, दुश्मनों को सबक सिखाना, तुम ना कभी पीठ दिखाना। रंग सफेद है शांति का, प्रेम भाईचारे सद्भाव का। घृणा हिंसा डुबे से बचना, विश्व शांति का दूत तुम बनना। रंग हरा भरी धरा का, प्रतीक प्रदूषण रहत धरती का। पर्यावरण को तुम सवारना, मित्रता से उससे प्रण निभाना।
1: क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम खुशी है।
1: खुशी, आप किस कक्षा में पढ़ती हैं?
2: मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ।
1: खुशी, आज आप अपने दोस्तों को क्या सुनाएंगी?
2: मैं आज अपने दोस्तों को एक कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है भारतीय संविधान और उसके कवि हैं राम वृक्ष कुमार। कोटि कोटि कंठों से निकली एक यही स्वर धारा है, सबसे न्यारा सबसे प्यारा सुसंविधान हमारा है। शत शत नवल प्रणाम तुम्हें, एक तुम ही सहारा है। बहते दरिया में नावों का सुंदर एक किनारा है। समता का अधिकार दिया ये शिक्षा का उजियारा है। नारी को सम्मान दिलाकर उज्जवल भविष्य संवारा है। ना कोई राजा कोई प्रजा, लोकतंत्र अति प्यारा है। दुनिया में गुणगान तुम्हारा, नीति बड़ा ही न्यारा है। जीव जंतु पशु पक्षी का भी जीवन तेरे द्वारा है। हर पन्नों के धाराओं से मिट गया अंधियारा है। देश का गौरव गरिमा है तू, काशी चर्च गुरुद्वारा है। संविधान का पन्ना पन्ना तेरा और हमारा है। भीमराव की चली लेखनी दूर हुआ अंधियारा है। सबसे न्यारा सबसे प्यारा सुसंविधान हमारा है।
3: वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई दीदी, तो अब जानकारी की बातें भी होनी चाहिए।
4: बिल्कुल भैया, और बच्चों को आज हम बताएंगे कि एक पेड़ के कितने फायदे हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ हमारे लिए कितने फायदेमंद हैं? पेड़ ही तो हैं जो हम सबको शुद्ध हवा, भोजन, दवा, फल, कागज के साथ साथ स्वस्थ जीवन भी देते हैं।
1: हाँ बच्चों, पेड़ हमें प्राण वायु देता है। जब बहुत गर्मी पड़ती है और आप छायादार वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो देखिएगा, गर्मी और धूप का एहसास कम हो जाता है।
4: बिल्कुल, और बच्चों इतना ही नहीं, ये बारिश को भी बुलाते हैं, और जब बारिश ज्यादा होने लगे तो मिट्टी को बहने से भी बचाते हैं, साथ ही पर्यावरण की शोभा को भी बढ़ाते हैं। पेड़ पौधे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर इसके बदले ऑक्सीजन भी देते हैं।
1: हाँ बच्चों, अगर आप ध्यान से सोचेंगे ना तो देखिएगा, पेड़ पौधों का हर अंग प्रकृति को संतुलित करने में अपना योगदान देता है। जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां, टहनियां, शाखाएं वातावरण में मौजूद अनावश्यक शोर यानी ध्वनि प्रदूषण को भी रोकता है।
4: तो देखा ना बच्चों, एक पेड़ और फायदे अनेक हैं इसके। और भैया, हमारे बढ़ते बच्चों के लिए एक बहुत जरूरी बात है, बचपन जीवन का सबसे सुंदर समय होता है, इसलिए अच्छे काम करने चाहिए। अभी हमने बताया कि योग, प्राणायाम कीजिए, जल को बर्बाद होने से बचाइए, गर्मी की छुट्टी का सदुपयोग कीजिए, यानी अपने आसपास कोई भी आप पौधा लगा सकते हैं। और हाँ बच्चों, पौधा लगाकर उसे छोड़ ना दें, बल्कि उसकी देख रेख भी कीजिए।
1: बच्चों, इस उम्र में पढ़ाई, खेलकूद और अच्छे संस्कारों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि संगति का असर जीवन भर साथ रहता है। इसलिए दोस्त बनाते समय थोड़ा ध्यान रखें। कभी कभी ऐसे बच्चों से भी आपकी दोस्ती हो जाती है जिन्हें गलत चीजों की लत हो।
4: हाँ बच्चों, समय रहते ही आप उनसे अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी दोस्तों के साथ भी ना बोलने का सीखें।
1: बच्चों, आप हमेशा याद रखें, आप अपने माता पिता के लिए खास हैं, इसलिए नशा इंसान की सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है। इससे स्वास्थ्य और भविष्य दोनों प्रभावित होता है। अच्छी आदतें जीवन बनाती हैं और बुरी आदतें जीवन बिगाड़ देती हैं।
4: तो भैया, हमने बच्चों के साथ इतनी सारी बातें कर ली, और अब समय है कि हम अपने बच्चों को एक बाल कथा सुनाएं।
1: तो चलिए बच्चों, आज हम आपको सुनाते हैं सेक चिल्ली की कहानी, सेक चिल्ली की खीर। बच्चों, सेक चिल्ली पूरा बेवकूफ था और हमेशा बेवकूफी भरी बातें करता था। सेक चिल्ली की माँ उसकी बेवकूफी भरी बातों से बहुत परेशान रहती थी। एक बार सेक चिल्ली ने अपनी माँ से पूछा, माँ लोग मरते कैसे हैं? अब माँ सोचने लगी कि इस बेवकूफ को कैसे समझाया जाए कि लोग कैसे मरते हैं। माँ ने कहा, बस आंखें बंद हो जाती है और लोग मर जाते हैं। सेक चिल्ली ने सोचा कि उसे एक बार मरकर देखना चाहिए। उसने गाँव के बाहर जाकर एक गड्ढा खोदा और उसमें

0: आंखें बंद करके लेट गया।
1: रात होने पर उस रास्ते से दो चोर गुजरे। एक चोर ने दूसरे से कहा कि हमारे साथ एक साथी और होता तो कितना अच्छा होता। एक घर के आगे रहता, दूसरा घर के पीछे रहता और तीसरा आराम से घर के अंदर चोरी करता। शेख चिल्ली यह बात सुन रहा था। वह अचानक बोल पड़ा, भैया मैं तो मर चुका हूँ, अगर जिंदा होता तो तुम्हारी मदद कर देता। चोर समझ गए कि यह बिल्कुल बेवकूफ आदमी है।
0: एक चोर शेख चिल्ली से बोला, भाई जरा गड्ढे से बाहर निकलकर हमारी मदद तो कर दो, थोड़ी देर बाद आकर फिर मर जाना, मरने की ऐसी भी क्या जल्दी है। शेख चिल्ली को गड्ढे में पड़े पड़े बहुत भूख लगने लगी थी और ठंड भी। उसने सोचा कि चलो चोरों की मदद ही कर दी जाए। तीनों ने मिलकर यह तय किया कि शेख चिल्ली अंदर चोरी करने जाएगा, एक चोर घर के आगे खड़ा रहेगा, ध्यान रखेगा और दूसरा चोर घर के पीछे से ध्यान रखेगा।
1: शेख चिल्ली को तो बहुत अधिक भूख लगी थी, इसलिए वो चोरी करने के बजाय घर में कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने लगा। रसोई में शेख चिल्ली को दूध, चीनी और चावल रखे मिल गए। अरे वाह, क्यों न खीर बनाकर खाई जाए, शेख चिल्ली ने सोचा और खीर बनानी शुरू कर दी। रसोई में ही एक बुढ़िया ठंड से सिकुड़कर सोई हुई थी। जैसे ही बुढ़िया को चूल्हे से आंच लगने शुरू हुई तो गर्मी महसूस होने पर सही से खुलकर सोने के लिए उसने अपने हाथ फैला दिए।
0: शेख चिल्ली ने सोचा कि ये बुढ़िया खीर मांग रही है। शेख चिल्ली बोला, अरे बुढ़िया मैं इतनी सारी खीर बना रहा हूँ, सारा अकेले थोड़ी ना खा जाऊंगा। अरे शांति रख, तुझे भी खिलाऊंगा। लेकिन बुढ़िया को जैसे जैसे सेक लगती रही वो और ज्यादा फैल कर सोने लगी। उसने हाथ और भी ज्यादा फैला दिए। शेख चिल्ली को लगा कि यह बुढ़िया खीर के लिए हाथ फैला रही है। उसने झुंझलाकर गरम गरम खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दी। बुढ़िया का हाथ जल गया। चीखती चिल्लाती बुढ़िया एकदम हड़बड़ा कर उठ गई और शेख चिल्ली पकड़ा गया। शेख चिल्ली बोला, अरे अरे मुझे पकड़कर क्या करोगे, असली चोर तो बाहर है, मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैं अपने लिए खीर बना रहा था। इस तरह शेख चिल्ली ने अपने साथ साथ असली चोरों को भी पकड़वा दिया। तो कैसी लगी बच्चों कहानी? अच्छी कहानी थी ना? तो कहानी तो बच्चों ने सुन ली दीदी, और अब हम क्या बच्चों को बताने वाले हैं?
1: भैया आज हम अपने बच्चों को बताएंगे एक प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में, और वो हैं गुरविंदर वीर सिंह, जो एथलीट हैं।
0: बच्चों आज हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने गरीबी, कठिनाइयों और संसाधनों की कमी के बावजूद अपने सपनों को टूटने नहीं दिया।
1: यह कहानी है पंजाब के तेज धावक गुरविंदर सिंह की, जिन्होंने अपनी मेहनत और हौसले से पूरे देश का नाम रोशन किया।
0: एक साधारण परिवार में जन्मे गुरविंदर सिंह बचपन से ही दौड़ने के शौकीन थे। जब दूसरे बच्चे खेलते खेलते थक जाते थे तब गुरविंदर और तेज दौड़ने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे उनका ये शौक उनका सपना बन गया।
1: लेकिन बच्चों सपने देखना आसान होता है, उन्हें पूरा करना कठिन। गुरविंदर वीर के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, घर में सिर्फ एक ही कमाने वाला था। कई बार उनके पास अच्छे जूते पहनने तक के पैसे नहीं होते थे। कभी सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती तो उनके कोच के दोस्त मदद करते, कभी प्रतियोगिता में जाने के पैसे नहीं होते तो समाज के लोग मदद के लिए आगे आ जाते।
0: लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद गुरविंदर वीर ने हार नहीं मानी। साल 2021 में उन्होंने पटियाला में हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ केवल 10.27 सेकंड में पूरी करके गोल्ड मेडल जीत लिया।
1: वे राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने से बस थोड़े से अंतर से चूक गए, लेकिन उनका हौसला और मजबूत हो गया। फिर भुवनेश्वर में हुए फेडरेशन कप में उन्होंने 10.35 सेकंड का समय निकालकर फिर से गोल्ड मेडल जीता।
0: दो दिन में लगातार तीन रेस दौड़ने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी बच्चों। रिकवरी के लिए उन्होंने सिर्फ इडली खाई और फिर पोडियम पर पहुंचकर देश का नाम रोशन किया। बच्चों सोचिए, जिस खिलाड़ी के पास हाईटेक जिम नहीं, फिजियो नहीं, महंगे ट्रेनर नहीं, फिर भी वो गोल्ड मेडल जीत रहा है, उसकी मेहनत कितनी बड़ी होगी। गुरविंदर कहते हैं कि उनके माता पिता कभी उस पर दबाव नहीं डालते। वे हमेशा कहते हैं, हम थोड़ा कम खा लेंगे, कम पहन लेंगे, लेकिन तुम अपने सपनों को पूरा करो। और यही परिवार का विश्वास उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है।
1: दो साल तक चोट और फिटनेस की समस्या के कारण वे खेल नहीं

0: पाए, लेकिन उनके परिवार ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, अभी हमारा समय नहीं आया, लेकिन एक दिन जरूर आएगा।
1: बच्चों, गुरविंदर वीर सिंह हमें सिखाते हैं कि अगर इरादे मजबूत हो तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। सफलता केवल सुविधाओं से नहीं मिलती बच्चों, सफलता मिलती है मेहनत से, अनुशासन से, धैर्य और आत्मविश्वास से। अगर आपके पास बड़ा सपना है तो छोटी परेशानियों से नहीं डरना चाहिए।
0: तो बच्चों, आज से हम यह भी संकल्प लें कि हम कठिनाइयों से घबराएंगे नहीं, पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों को पूरा करेंगे, क्योंकि संघर्ष की रेस जीतने वाले ही एक दिन जीवन के असली विजेता बनते हैं। तो बच्चों, प्रेरक व्यक्तित्व गुरविंदर वीर सिंह, जिनकी कहानी हमें मेहनत, संघर्ष और सपनों पर विश्वास करना सिखाती है।
1: तो बच्चों, ये जानकारी थी गुरविंदर वीर सिंह की, और अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है बच्चों। लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुति नूतन प्रसाद की थी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ जानकारियों के साथ, कुछ कविताओं के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा।
0: जय हिंद बच्चों।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको बताएं कि अगला प्रोग्राम जोहार रांची हम सुनेंगे कुछ ही पालों में।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हो रहे हैं और इस वक्त हम लेकर आते हैं खास आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम जोहार रांची। तो बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे कुछ ही पलों में।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: स्वागत है, अभिनंदन है आपका आपकी अपनी प्रोग्राम जोहार रांची में। और आज के इस प्रोग्राम के सफ़र में एक बार फिर आपकी हम सफ़र है आपकी दोस्त शिल्पी
7: और मैं साथ में सिल्वा। दोस्तों कहते हैं ना कि आसमान की इच्छा रख और जमीन की तलाश कर, तेरे अंदर सब कुछ है बस खुद पर विश्वास रख।
6: बिल्कुल, और विश्वास के साथ साथ उम्मीद का दामन भी थामे रखना है, क्योंकि कई बार जब हमें ऐसा लगने लगता है ना कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया, ऐसे में ईश्वर हमें कोई चमत्कार दिखा देता है और अपनी रहमत बरसा देता है।
7: तो इसे विश्वास और उम्मीद का दामन थामे चल पड़ते हैं आज के हमारे एक और सफर पर। और कहते हैं
6: जोहार।

0: वैसे तो कैलेंडर की हर तारीख कुछ खास होती है, लेकिन 31 मई का इतिहास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को अंगीकार किए जाने की वजह से अपनी खास अहमियत रखता है। सन 1921 में गांधी जी ने आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृत और संशोधित किया था।
1: सन 1867 में आज के ही दिन मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई और सन 1969 में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण दी गई।
0: सन 1964 में बम्बई में इलेक्ट्रिक ट्राम आज के दिन अंतिम बार चली थी और सन 1977 में आज ही के दिन भारतीय सेना के एक दल ने पहली बार विश्व के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा पर चढ़ाई की थी।
1: सन 2008 में 31 मई को ही विश्व के सबसे तेज धावक उसेन वोल्ट ने 100 मीटर दौड़ 9.72 सेकंड में पूरी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। सन 2007 में ही सैप व्लैटर तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष बने।
0: सन 2010 में भारत में मान्यता प्राप्त हर प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का कानून बनाया गया था आज ही के दिन।
1: सन 1907 में आज के ही दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहली टैक्सी सेवा शुरू की गई।
0: बातें जब आज की तारीख की अहमियत की हो रही है तो आपको बताते चलें कि दुनिया भर में तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष आज के दिन यानी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है।
1: तंबाकू से होने वाले नुकसान को देखते हुए 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने एक प्रस्ताव द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का फैसला लिया ताकि धूम्रपान के सेवन में कमी और स्वास्थ्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सके
0: और साथ ही साथ हम अपनी जिंदगी से प्यार भी कर सकें।

0: जोहार रांची में अब उन मशहूर शख्सियतों की बातें जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया में कदम रखा। तो सबसे पहले आपको बताएं कि सन 1577 में मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूर जहां का जन्म हुआ था।
1: सन 1756 में एबे फारिया का जन्म हुआ। दुनिया का ऐसा पहला व्यक्ति जिसने सम्मोहन की कला को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया।
0: सन 1725 में भारत की वीरांगनाओं में से एक अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ था। अहिल्याबाई को एक दार्शनिक रानी के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने कलकत्ता से बनारस तक की सड़कें बनवाई, इन्होंने कई प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया और समाज कल्याण के लिए कई काम किए।
1: सन 1843 में मराठी रंगमंच में क्रांति लाने वाले प्रसिद्ध नाटककार अण्णा साहेब किर्लोस्कर का जन्म हुआ और सन 1927 में भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीत निदेशक वनराज भाटिया का जन्म हुआ था।
0: सन 1942 में आउटलुक के संस्थापक और प्रसिद्ध पत्रकार विनोद मेहता का जन्म हुआ था और सन 1925 में हिंदी फिल्मों के शीर्ष निर्देशक, निर्माता और पटकथाकारों में से एक राज खोसला का भी जन्म हुआ था आज ही के दिन।
1: आज ही के दिन कुछ महान हस्तियों का निधन भी हुआ, जिनमें सन 1988 में भारत के प्रसिद्ध राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, साहित्यकार और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा का निधन हुआ।
0: सन 2003 में प्रसिद्ध संगीतकार अनिल बिस्वास का निधन हुआ और सन 2009 में अंग्रेजी और मलयालम की प्रसिद्ध लेखिका कमला दास ने अंतिम सांसें ली।
1: सन 1998 की बात करें तो जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ विचित्र नारायण शर्मा का निधन हुआ। सन 1999 में मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा का निधन हुआ।
0: सन 2022 में प्रसिद्ध भारतीय पार्श्वगायक केके ने इस दुनिया को अलविदा कहा। केके ने हिंदी में 250 से भी ज्यादा गाने गाए और उनके भावपूर्ण गायन ने उन्हें भरपूर प्रसिद्धि दिलाई।

0: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जोहार रांची, और जोहार रांची में बातें करें अगर मौसम के मिजाज की, तो आपने भी महसूस किया होगा कि आज की सुबह हल्की ठंडी हवाओं और बादलों की नरम चादर के साथ हुई।
1: आज भी आसमान में धूप और बादलों की आंख मिचौली दिन भर देखने को मिल सकती है।
0: और मौसम विभाग की माने तो दोपहर बाद कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है और आंधी की भी संभावनाएं बताई गई हैं।
1: बातें करें अगर आज की तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
0: आज हवाओं में नमी और बारिश की संभावना की वजह से मौसम सुहावना महसूस हो रहा है,
1: लेकिन अगर घर से बाहर जाना भी हो तो सावधानी जरूर बरतें। खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे तूफानी मौसम के दौरान रुकने से बचें।
0: मौसम कभी भी अपना मिजाज बदल सकता है, खासकर शाम के वक्त तेज हवा, गरज और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है।
1: सचमुच इन दिनों धूप और बारिश के साथ साथ पवन भी कुछ दीवानी सी है।

0: और आखिर में चलते चलते बस ये कहना चाहेंगे कि अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र, हर सफ़र में हम सफ़र नहीं होते।
1: हम सफ़र ना सही, उनकी यादें और उनकी दिखाए रास्ते हमें कई बार मंजिल का रास्ता बता ही देते हैं। तो आप भी हर पल आगे बढ़ते रहे मंजिल की ओर।
0: इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वक्त हो चला है जोहार राज्य के पन्नों को यहीं समेटने का। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें।
1: और फिलहाल हमें दे इजाजत
0: जोहार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 10:55 होने को है। थोड़ी ही देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात हमसे साझा करेंगे। कृपया इस विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य

0: बुरा बन सकता है।
1: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
2: कोई बोले राम राम।
1: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
5: चले
6: ले, आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
8: पर्सनल लोन ऑफर
9: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
8: फ्री ट्रिप टू दुबई,
9: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
10: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
9: तो क्या करूं?
10: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
9: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
10: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
11: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही

0: झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूं एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूं। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहां से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा भी मेरे को भी लेके जाया करो आप अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह वाह, बड़ी शानदार बात है भी आपकी तो।
3: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी। मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
0: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
3: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
0: अनिमेश जी,
1: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूं तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहां अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
0: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
1: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर वीर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहां भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहां भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
0: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
3: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
0: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की

0: मदद करना है। ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे

साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी बलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं।

इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी

0: बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी एक साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत

0: सफलताम् अगच्छत्। देशस्य शिक्षा क्षेत्रे सांस्कृतिक गौरवस्य च संवर्धने अस्य विद्यालय समूहस्य भूमिका अतीव प्रशंसनीयास्ति। अहं तेन सम्बद्धेभ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः हार्दिकाः शुभकामनाः वितरामि, तथा च तेषां छात्राणामपि विशेषतया प्रशंसां करोमि ये स्वेषां वीर सैनिकानां कृते योगदानं कृतवन्तः। सखायः, भारतस्य प्रत्येकस्मिन् ग्रामे प्रत्येकस्मिन् नगरे किञ्चित् एतादृशं कार्यं प्रवर्तते यत् अस्मान् प्रेरयति। कतिपयेषु अवसरेषु एतेषां प्रयत्नानां व्यापकः प्रचारः न भवति, किन्तु यदा वयं तान् ज्ञातुम् आरभामहे तदा विश्वासोऽयम् अधिकं दृढो भवति यत् देशः स्वजनानां शक्त्या अग्रे गच्छति। मम भवद्भ्यः आग्रहः अस्ति, स्वं परितः एतादृशान् प्रयत्नान् अवश्यं पश्यन्तु। ये जनाः समाजहिताय उत्तमानि कार्याणि कुर्वन्ति तानि परिचिनुत, तेषां प्रशंसां कुरुत, तेभ्यः शिक्षाम् आप्नोतु। शक्यते चेत् स्वयमपि कस्यचित् सत्कार्यस्य अङ्गं भवतु। आगामि मासे मन की बात कार्यक्रमे अन्याभिः प्रेरणादायिनीभिः गाथाभिः सह पुनरपि भवद्भिः सह सम्बद्धो भविष्यामि। बहु धन्यवादाः, नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। 12:08 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।
3: बहनों नमस्कार। सुनहरे कल के लिए आज से तैयारी, और इसकी शुरुआत हम स्वस्थ और स्वच्छता को अपनाकर कर सकते हैं। बहनों रोजाना की तरह 12 हम फिर हाजिर है यह गृहलक्ष्मी कार्यक्रम के लेकर। मैं महजबीन, और आज हमारे साथ है एक और प्यारी सखी
4: खुशबू। नमस्कार बहनों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। बहनों स्वच्छता जो सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है, और सभी जानते हैं कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, और ये हम बहनों का कर्तव्य भी होता है, क्योंकि हम अपने घरों को भी साफ रखें और आसपास के भी सफाई रखें, क्योंकि जहां गंदगी होती है वहां पर बीमारियां होती है। और स्वच्छता को हम तब अपनाते हैं जब हम बीमारियों से घिर जाते हैं, लेकिन अगर हम स्वच्छता को पहले से अपनाएं तो बीमारियों से दूर रह सकते हैं।
3: और हमारे महात्मा गांधी जी का कथन भी था कि स्वच्छता राजनीति के स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। उनका यह कथन समाज में स्वच्छता को महत्व को रेखांकित करता है, यानी कि हम देखें कि उनकी बात को अगर हम अपनाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से जिंदगी को जी सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जोर दिया है कि हमें खुले में शौच के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और पुरानी आदतों को बदलना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सेवा के जो उद्घोष के साथ इस अभियान की शुरुआत की गई है, यानी कि हम जो शुरुआत है ना अपने घर से कर सकते हैं अपने समाज को बेहतर करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री जी का कहना है उसको हमें फॉलो करना चाहिए।
4: बिल्कुल, क्योंकि साफ सफाई की आदत हमें परिवार के सभी सदस्यों में भी डालनी है, और इसकी शुरुआत जैसा कि मेजबीन ने भी कहा हमें अपने घर से ही करनी चाहिए, तभी हम अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रख सकते हैं, क्योंकि स्वच्छता हमारे जीवन का आधार है जो हमें स्वास्थ्य और खुशहाली देती है। साफ सफाई केवल बाहरी चमक नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली की नींव होती है। वैसे मेजबीन ने बहुत अच्छी बातें बताई कि स्वच्छता की आदत हम सभी में होती है, लेकिन बस उसे हमें ज़रूरत है उसे अपने जीवन में अमल करने की, जो क्योंकि ये हमें बीमारियों से दूर रखता है।
3: और जैसे तुमने कहा कि इसकी आदत होनी चाहिए, यह बीमारियों को दूर भी भगाता है। गंदगी केवल बीमारियों को जन्म ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित भी करती है। नियमित साफ सफाई की आदत बड़ी बीमारियों को दूर भी भगाती है, साथ ही साथ हमारी आदत पर्यावरण को शुद्ध भी रखता है।
4: बहनों एक बात और है कि साफ सुथरे व्यक्ति अपने आप को तथा आसपास के वातावरण में भी सकारात्मकता डालता है, साथ ही साथ उनमें एक गजब का आत्मविश्वास होता है। और आपने भी ये महसूस किया होगा कि साफ सुथरे व्यक्तित्व के पास ना हम सभी खींचे चले जाते हैं, तो इसलिए हमें अपने लिए भी और अपने आसपास की सफाई को ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारे परिवार के सदस्य भी साफ सुथरे रहे और बीमारियों से दूर रहे। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जहाँ कहीं भी हो वहाँ सफाई का ध्यान रखें।
3: बहनों स्वच्छता और स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक है।

0: सफाई अपना कर ही हम बीमारियों से जो दूर हो सकते हैं उसे पास भटकने नहीं देंगे। सामाजिक कल्याण तभी हो सकता है जब हम जागरूक हों। हमें जिंदगी के पास जो भी गंदगी है उसे भटकने नहीं देना है, इसका ख्याल रखना है।
1: बिल्कुल बहनों, बातें तो और भी होंगी लेकिन और भी बहुत सारी बातें होंगी लेकिन अभी मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: तीनों कॉलेज में
5: डोंट वरी,
4: फीस तो देखो।
6: क्या हाल है? क्या हुआ?
5: फीस की टेंशन।
6: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहा है? मिठाई।
7: RBI कहता है
8: तरह से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। सखियों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। और महजबीन, अब आगे कार्यक्रम में क्या है?
9: अब हम सुनवाएंगे एक बातचीत, मादक पदार्थ प्रजनन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और आज की हमारी मेहमान है डॉक्टर पीहू, और इनसे बातचीत कर रही है हमारी रेडियो सखी खुशबू।
10: सखियों, आज के आधुनिक समय में मादक पदार्थों का सेवन समाज के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है। शराब, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा तथा अन्य नशीले पदार्थ न केवल व्यक्ति के मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही साथ ये प्रजनन स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए एक खतरा सा बनती जा रही है। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातें कर रही हैं डॉक्टर पीहू। पीहू जी, आपका हमारे गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
11: धन्यवाद खुशबू जी। मैं डॉक्टर पीहू, अभी मैं सरकारी अस्पताल में कार्यरत हूँ
10: जी। पीहू जी, आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, तो आपको क्या लगता है कि मादक पदार्थों का सेवन प्रजनन स्वास्थ्य पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है?
11: बहुत सही कहा खुशबू जी आपने, जैसा कि आपने पहले ही बोला है कि ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव डालता है। तो आज इस सेगमेंट में हम इसे थोड़ा सा डिटेल और थोड़ा मेडिकल टच के साथ समझेंगे कि ये कैसे प्रभाव डालता है। तो जैसा आपका क्वेश्चन है कि ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को किस तरह अफेक्ट कर रहा है
10: जी,
11: तो हम पहले अगर मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो जो भी मादक पदार्थ है या नशीले पदार्थ है वो सीमेन की क्वालिटी खराब करते हैं। कैसे खराब करते हैं? इनसे स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी ये कम हो जाता है। तीसरी अगर हम बात करें तो इनके कारण एबनॉर्मल स्पर्म्स बनते हैं और साथ ही DNA डैमेज भी काफी बढ़ जाता है। इसके अलावा ये एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो कि इरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं मेल में, उसे भी प्रभावित करता है। तो शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो मादक पदार्थ और नशा करने से ये इम्पोटेंसी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है। उसी तरह अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो फीमेल में भी सेम ये इनफर्टिलिटी करता है। कैसे करता है? सबसे पहले तो ये AMH के लेवल को कम करता है। AMH क्या है? एंटी मलेरियन हार्मोन।

0: ये बाधा उत्पन्न करते हैं। अब हो सकता है फेलोपियन ट्यूब अगर ना समझ पाए तो फेलोपियन ट्यूब एक नली होती है जो कि अंडाशय और बच्चेदानी को कनेक्ट करती है। तो इस तरह ये स्पर्म में भी सीलिया को डैमेज कर रहा है और फेलोपियन ट्यूब में भी सीलिया डैमेज कर रहा है। तभी आजकल हम मैरिड कपल्स में ऐसा देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी के रेट्स काफी ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। तो इस तरह एडिक्शन हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स, इन सब पे बुरा प्रभाव डालता है। और अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो इसकी वजह से कंसीव करने में दिक्कत आती है और बहुत बार तो हम देखते हैं कि कंसीव हो जाने के बाद भी एबॉर्शन के रिस्क या फिर एबनॉर्मल बच्चे पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये डीएनए डैमेज बढ़ा देता है।
1: जी, नशीले पदार्थों के सेवन से शरीर को नुकसान पहुंचता है, और यदि महिला गर्भवती हो तो उन्हें कौन-कौन से खतरे हो सकते हैं?
0: देखिए, अगर महिला गर्भवती है और वो मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ इनका सेवन करती है या पहले से करती आ रही है, तो इनसे होने वाले खतरों को मैं दो सेगमेंट में डिस्कस करूंगी। एक तो माँ को क्या खतरा हो सकता है, दूसरा उसके अंदर पलने वाले बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है। तो पहले अगर हम माँ की बात करें तो माँ में ये प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, प्लेसेंटल जो माँ को बच्चे से कनेक्ट करता है। इसके वजह से प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग इश्यूज बढ़ जाते हैं। दूसरा तो मैंने बताया है पहले ही कि सीलिया डैमेज करेगा फेलोपियन ट्यूब में। तो इसके कारण एक तो पहले ही बताया जैसे एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, दूसरा प्रेगनेंसी में क्या करता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? जो प्रेगनेंसी आपका बच्चेदानी से बाहर डेवलप हो रहा है, मतलब बच्चा बच्चेदानी में इम्प्लांट ना होकर वो कहीं और इम्प्लांट हो गया, तो ये वाली दिक्कत भी हमें बहुत देखने को मिल रही है। अब अगर बच्चे की बात करें कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम होती है, तो जो फीटस डेवलप हो रहा है उसमें ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण मिसकैरेज के चांसेस या प्री मेच्योर बर्थ के चांसेस, लो बर्थ वेट मतलब वजन कम होना या प्रॉपर ग्रोथ ना हो पाना, इन सब के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो हमें देखने को मिलती है कि अगर बच्चा पैदा हो भी गया तो एक साल तक ऐसा रिस्क रहता है कि अचानक उसकी डेथ हो जाएगी, तो इसे हम बोलेंगे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, इस नाम से जानते हैं। प्लस लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन होते हैं बच्चों को, जैसे कि उनको लंग से रिलेटेड दिक्कत जिसकी वजह से सांस जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और उनका ब्रेन भी डैमेज होता है जिससे लर्निंग डिफिकल्टीज और उनके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं।
1: जी पीहू जी, आपने बहुत सारी बातें हमें बताई कि किस तरह से शरीर में मादक पदार्थों के सेवन से हानि पहुंचती है। तो ऐसे में मादक पदार्थों से होने वाली बीमारियों और मानसिक समस्याओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: बहुत सही सवाल पूछा आपने खुशबू जी, कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जैसा अफेक्ट कर रहा है जो हमने पहले बात किया है, इसके साथ साथ ये और भी बीमारियों और मानसिक समस्याओं को उत्पन्न करता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी यहाँ पे
1: जी
0: कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, मुझे लगता है कि समाज में अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि स्मोकिंग से तो लंग कैंसर ही होता है ना?
1: जी
0: लेकिन ऐसा नहीं है, स्मोकिंग से सिर्फ लंग कैंसर नहीं होते हैं, स्मोकिंग से अधिकांश गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर्स होते हैं, मतलब पेट से रिलेटेड कैंसर्स, जैसे कि कोलोन के कैंसर, आपके लिवर के कैंसर, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, जो कि अभी बहुत ही तेजी से फैल रहा है। तो
1: जी
0: इन सब की जड़ें भी वहीं से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं कि इनमें जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं या इनके वजह से होने वाले जो डीएनए डैमेज होते हैं, इन सब के वजह से आज कैंसर हमारे समाज में गंभीर समस्या का रूप ले चुका है।
1: जी
0: सिर्फ
1: हाँ
0: कैंसर ही नहीं, ये हार्ट को भी अफेक्ट करता है। आजकल आए दिन हमें न्यूज में ऐसा सुनने को मिल रहा है

0: एक यंग इंसान है और उसमें हार्ट अटैक हो गया, तो ये सब इन्हीं से लिंक है। इसके अलावा आजकल ज्यादातर तो लोगों में पेट से संबंधित समस्याएं, जैसे लीवर से संबंधित समस्याएं होती हैं, उसका भी रीजन यही है कि प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो खराब हो गया है, क्योंकि इसका इफेक्ट एंजाइम्स पे भी पड़ता है, इसके वजह से मोटापा बढ़ता है, और मोटापा बढ़ने के बाद तो फिर तमाम सारी तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
1: जी
0: और इतना ही नहीं, ये हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी को भी खराब करता है। इसके अलावा ये लोगों में एजिंग प्रोसेस, मतलब बुढ़ापा जल्दी करवाता है,
1: जी
0: क्योंकि इससे क्या होता है, कोलेजन डैमेज होते हैं हमारे। ये तो हमने बात किया है शारीरिक समस्या, बट ये एक हमने बात किया प्रजनन समस्या, शारीरिक समस्या। अब इसके अलावा ये मानसिक समस्या भी बहुत सारी उत्पन्न करते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, स्ट्रेस, मतलब टेंशन बहुत होते हैं लोगों को, डिप्रेशन, एंजाइटी, आजकल बहुत सारी तमाम तरह के साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हमें लोगों में देखने को मिल रहे हैं। और इन सब का नतीजा ये होता है कि सुसाइड रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं। अब हमारे श्रोताओं को लगेगा कि इससे तो टेंशन दूर होती है, तभी लोग नशा करते हैं। ये एक साइकिल चलता है, एक जिसे हम विशेष साइकिल बोल सकते हैं, कि टेंशन होता है तो नशा करते हैं, और फिर नशा करते हैं तो टेंशन और बढ़ता है।
1: जी, इतने सारे नुकसान हैं नशीले पदार्थों के सेवन के, फिर
0: जी
1: भी
0: बिल्कुल।
1: युवाओं में नशे की बढ़ती आदत का मुख्य कारण आपको क्या लगता है?
0: देखिए, कारण तो बहुत ही सारे हैं, और अगर हम गिनने चले तो लिस्ट बहुत ही लंबी हो जाएगी, पर अगर मैं मुख्य कारण की बात करूं तो सबसे पहला जो शुरुआत होता है, जैसा मुझे लगता है कि ये फ्रेंड सर्कल से स्टार्ट होता है, या फिर अगर परिवार में ऐसा माहौल है, या आपके वर्क प्लेस पे ऐसा माहौल है तो उससे भी इसकी शुरुआत होती है। और जो लोग हाई फाई पार्टीज अटेंड करते हैं उनमें ये सब इजीली एक्सेसिबल होता है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि युवा एक या दो बार तो मस्ती मस्ती में, हंसी मजाक में ये ट्राई करते हैं, और आगे चलकर उन्हें उनकी लत लग जाती है, क्योंकि ये तो एडिक्टिव होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, जो कि आजकल जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, या फिर जॉब्स है, या रिलेशनशिप्स है, तो इनसे जो भी स्ट्रेस क्रिएट होता है, इससे थोड़े टाइम के राहत के लिए भी लोग इसका सहारा लेते हैं, जिससे कि उनको अच्छा फील होता है। इसे हम यूफोरिया बोलते हैं, पर ये बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है, और इसका नतीजा ये निकल कर आता है कि एडिक्शन होता है उनको, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और इतने सारे रीजन के अलावा, या फिर आजकल युवाओं में ऐसा बहुत प्रचलन बढ़ गया है स्टेटस सिंबल, या फिर
1: जी,
0: कूल बनना है, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
1: पीहू जी, नशे करने के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन
0: हाँ
1: इसे
0: जी।
1: रोकने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं या क्या प्रयास कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, इसमें अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो है परिवार और स्कूल का।
1: जी
0: बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, हम उसे एडिक्शन से होने वाले शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स, हेल्थ इश्यूज, ये अच्छे से बताएं और बार बार दोहराएं। इसके अलावा घर में भी ऐसा माहौल बिल्कुल ना रखें, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं फाइनली वही सीखते हैं, और उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है इस पर भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। तो इस प्रकार से जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इनका बिहेव थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए, जिसके कारण अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे डरने के बजाय बेझिझक शेयर कर सकें, जिससे उन्हें सही गाइडेंस मिलेगी। प्लस स्ट्रेस से कैसे डील करना है, हमें उन्हें ये सिखाना पड़ेगा, जिससे कि वो एडिक्शन की तरफ ना जाए। तो अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो जो मोरल एजुकेशन है, मतलब संस्कार, प्लस स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसे बचाने के लिए। तो इसमें मैं तीन पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूंगी। सबसे पहला नॉलेज अबाउट द साइड इफेक्ट, दूसरा लर्न टू डील विद द स्ट्रेस एंड टेंशन, थर्ड शेयरिंग द प्रॉब्लम्स।
1: जी, अंततः यह कहा जा सकता है कि मादक पदार्थ प्रजनन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक है। स्वस्थ शरीर और सुखी जीवन के लिए नशे से दूर रहना ही सबसे अच्छा उपाय है। हमें स्वयं भी जागरूक होना चाहिए और दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना चाहिए। पीहू जी, आप हमारे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में आई, अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद खुशबू जी, आपको भी और आपकी आकाशवाणी टीम को भी कि मुझे आपने अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया।
2: बहनों, अभी आप सुन रहे थे ये बातचीत मादक पदार्थ प्रजनन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। हमारी आज की मेहमान थी डॉक्टर पीहू और इनसे बातचीत कर रही थी हमारी रेडियो सखी खुशबू। खुशबू, आगे हम अपनी बहनों को महिला सुरक्षा के बारे में कुछ जानकारी देंगे।
3: बिल्कुल, क्योंकि महिला सुरक्षा समाज के विकास और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है, और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना समाज के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। सभी महिलाओं को साथ ही साथ अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी भी होनी चाहिए,
2: और डिजिटल और हेल्पलाइन नंबर के सहायता से भी आपातकालीन स्थिति में हमारी जो हम महिलाएं हैं 101 पर हम कॉल कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर आप ज़रूर नोट कर ले, 1091। और सभी सखियों से यही कहना है कि आप बेझिझक अपनी सहायता इनसे प्राप्त कर सकती हैं।
3: और ये हेल्पलाइन नंबर 1091 हमेशा 24 घंटे खुली रहती हैं। आप किसी भी आपात स्थिति में इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकती हैं और सहायता प्राप्त कर सकती हैं। सखियों, आपसे बातें करने का तो बहुत मन है, लेकिन अब घड़ी की सुई हमें इजाजत नहीं दे रही है। अब हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की, और अब अपनी दो सखियों खुशबू
2: और महजबीन को दे इजाजत। नमस्कार।
4: गृहलक्ष्मी, अभी आप सुन रहे थे बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं आंचलिक लोकगीतों का कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मैथिली लोकगीत। कलाकार हैं मीरा मिश्रा और साथी।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 12:45 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं खड़िया लोकगीत। कलाकार हैं रेजीना लकड़ा और साथी।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है, आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं जहां से आप सुन सकेंगे समाचार। समाचार हम क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज

0: धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक चार मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi says that the government is continuously making efforts to preserve priceless heritage sites in India. He informed about an important discovery made in Malhar, Chhattisgarh, under the Gyan Bharatam Abhiyan. Addressing the nation in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashwani today, Mr. Modi said that three rare copper plates have been found there related to Maharishi Balarjun of the Panduvanshi dynasty of the 6th and 7th centuries.
0: Gyan Bharatam Abhiyan ke tahat Chhattisgarh ke Malhar mein bhi एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
2: The Prime Minister also mentioned his recent visit to the Netherlands, where in a special ceremony ancient copper plates from the Chola period were returned to India. Mr. Modi said people are sharing joy and expressing pride, and the Tamil community around the world is also particularly enthusiastic about this. Prime Minister Modi urged the people of the country to take utmost care during the prevailing hot weather and follow the guidelines issued by various government departments in this regard.
0: इस समय देश के ज्यादातर

0: हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: In his Mann Ki Baat program, the Prime Minister talked about the recently held National Senior Athletics Federation competition in Ranchi, Jharkhand, where nearly 800 athletes participated. He congratulated Gurinder Veer Singh, Vishal TK, Tejaswin Shankar, Dev Meena and Kuldeep Kumar for breaking 4 national records in different events. In his address, Prime Minister Modi also appreciated the efforts of Saji Valasheril of Aluva in Keralam, who runs a swimming club with no fees in which more than 15,000 people have learned to swim. 3 persons lost their lives after a commercial building collapsed near Saket metro station in South Delhi last evening. 5 persons are undergoing treatment at the hospital, while 3 have been discharged after receiving treatment. Meanwhile, Chief Minister of Delhi Rekha Gupta visited the incident site in South Delhi and reviewed the ongoing relief and rescue operations. In a social media post, the CMO informed that rescue teams have been continuously engaged in operations since last night. Admiral Krishna Swaminathan today assumed charge as the 27th Chief of the Naval Staff. He succeeds Admiral Dinesh K. Tripathi. Addressing the media after taking over command, Admiral Swaminathan said that the Indian Navy remains vigilant in safeguarding the nation's interest and is actively deployed in a regional security environment that continues to be challenging, complex, unpredictable and uncertain. Chief of Defence Staff CDS Lieutenant General N.S. Rajasubramani has said that innovation in thought and action would drive the development of military capabilities. Addressing the media after assuming charge as the country's new CDS, General Subramani emphasized that greater collaboration among the armed forces, industry, academia, startups, and the research ecosystem would be the key enabler of modernization. U.S. President Donald Trump has said the United States isn't close to reaching a nuclear agreement with Iran, but warned that military action remains an option if negotiations fail. In an interview with a private news channel at the White House, Trump said his administration's priority is ensuring that Iran never obtains a nuclear weapon. And in IPL cricket, Gujarat Titans will be up against defending champions Royal Challengers Bengaluru in the final of the 2026 season in Ahmedabad at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
2: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 होने को हैं। ये वक्त है प्रादेशिक समाचार का।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में रांची की राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का किया जिक्र, गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर से बातचीत कर दी बधाई। CUET यूजी तकनीकी दिक्कत पर NTA ने जताया खेत, 3,765 अभ्यर्थियों के लिए पुनर्परीक्षा की तैयारी, NTA जल्द करेगा नई तारीख की घोषणा। रांची के जलाशयों और नदियों से अतिक्रमण हटाने का दिया गया निर्देश, हरमू नदी, कांके और धुरवा डैम पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज। कल से महंगी होगी बस यात्रा, रांची हजारीबाग समेत कई रूटों पर 30% तक बढ़ा किराया, यात्रियों के साथ माल ढुलाई पर भी पड़ेगा असर। और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज शाम होगा IPL का फाइनल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस में होगी खिताबी जंग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में देश भर के करीब 800 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने विभिन्न स्पर्धाओं में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ियों गुरविंदर सिंह और विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को बधाई दी।
0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800

0: एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 100 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ियों गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर से बातचीत भी की। खिलाड़ियों ने अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा किए।
2: संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले।
3: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूं। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं सर, एंड अभी मैं ओडिशा से खेलता हूं। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
2: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
4: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मौजूदा गर्मी के मौसम में विशेष सावधानी बरतने और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आज आकाशवाणी के मासिक कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए और तेज धूप में बाहर निकलते समय सतर्क रहना चाहिए।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG के दौरान हुई तकनीकी गड़बड़ी को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने छात्रों और अभिभावकों से माफी मांगी है। NTA के अनुसार 30 मई को आयोजित परीक्षा की पहली पाली में कुछ परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण परीक्षा समय पर शुरू नहीं हो सकी। एजेंसी ने बताया है कि इस समस्या से प्रभावित कुल 3,765 अभ्यर्थियों को पुनर्परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। पुनर्परीक्षा की तिथि और प्रभावित उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। रांची जिले में जल सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में प्रमुख जलाशयों और नदियों को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में हरमू नदी के जलग्रहण क्षेत्र, कांके डैम, थुरवा डैम और अन्य प्रमुख जलाशयों के आसपास से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर अतिक्रमण की सूची तैयार करने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया डीएनडी न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक हैंडल @AIR न्यूज _Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से आयोजित झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा आज राज्य भर के 94 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा में 45,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। राजधानी रांची में सबसे अधिक 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए आयोजित यह परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू हुई और दोपहर 12 बजे तक चली। कोडरमा जिले में 1 जून से बस यात्रा महंगी हो जाएगी। जिला बस ऑनर्स एसोसिएशन ने डीजल, टायर, मोटर पार्ट्स और टोल टैक्स की बढ़ती लागत को देखते हुए बस किराए में

15 से 30% तक बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। झुमरी तलैया में आयोजित एसोसिएशन की बैठक में यह फैसला लिया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने बताया कि बढ़ी हुई दरें 1 जून से लागू होंगी। इससे झुमरी तलैया से रांची, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, चतरा, नवादा और रजौली सहित विभिन्न मार्गों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक किराया देना होगा।

0: प्राप्ति भी ठीक ही। सूचना पर थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया था जिसमें लगभग 8 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है और बियर की भी बरामद की गई, साथ ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।
1: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,70,000 रुपये प्रति किलो है। बोकारो जिले के बीएसएल की एलएच कॉलोनी में एक घर में भीषण आग लगने से दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मिली जानकारी के अनुसार घर में रखा मिट्टी तेल का एक ड्रम आग की चपेट में आ गया, जिसके बाद आग तेजी से फैलकर पूरे घर में फैल गई। भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम के थाईलैंड दौरे के लिए झारखंड के युवा खिलाड़ी आदर्श राज को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने विश्वास जताया कि आदर्श राज के नेतृत्व में भारतीय टीम थाईलैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन करेगी और देश का नाम रोशन करेगी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले यह खिताबी मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में रांची की राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का किया जिक्र, गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर से बातचीत कर दी बधाई। CUET UG तकनीकी दिक्कत पर NTA ने जताया खेद, 3,765 अभ्यर्थियों के लिए पुनर्परीक्षा की तैयारी, NTA जल्द करेगा नई तारीख की घोषणा। रांची के जलाशयों और नदियों से अतिक्रमण हटाने का दिया गया निर्देश, हरमू नदी, कांके और धुरवा डैम पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज। कल से महंगी होगी बस यात्रा, रांची हजारीबाग समेत कई रूटों पर 30% तक बढ़ा किराया, यात्रियों के साथ माल ढुलाई पर भी पड़ेगा असर। और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज शाम होगा आईपीएल का फाइनल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस में होगी खिताबी जंग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 1:20 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कजरी। कलाकार हैं सिद्धेश्वरी देवी।

जब तुझिया में रामाय जब आवे जब तुझिया में रामाय जब तुझिया

उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:45 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की गाई चंद गजलें। आइए सबसे पहले सुनते हैं फयाज हाशमी की लिखी गजल। मौसिकार हैं निसार बज़मी, फनकार हैं आशा भोसले। तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोकें तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, आज जाने की जिद ना करो।

ये दर्द की तन्हाइयाँ, ये दश्त का वीरा सफ़र, हम लोग तो उकता गए अपनी सुना आवारगी, ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। आइए सुनते हैं मौसी नकवी की लिखी गज़ल। मौसीकार हैं गुलाम अली और फ़नकार हैं आशा भोसले।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 2 बजने को है, आइए एक बार फिर आपको दिल्ली लिए चलते हैं मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब। चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की तीन पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।

0: से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
0: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
0: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
0: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें

0: डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रूपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रूपये प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती है। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
2: नेवी, एयरफोर्स,
3: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
2: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
1: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएब उल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई

0: 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हो चुके हैं और ये वक्त है फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों के कार्यक्रम जय भारती का। जय भारती कार्यक्रम में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं जावेद अख्तर का लिखा गीत उदित नारायण की आवाज़ में। इस गीत की धुन बनाई है जतिन ललित ने और फिल्म का नाम है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ जी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: प्रदीप
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती। और जय भारती कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं रोजा फिल्म से हरिहरन और केएस चित्रा को। गीत के बोल लिखे हैं पीएस मिश्रा ने, क्षमा कीजिएगा पीके मिश्रा ने, और धुन बनाई है एआर रहमान ने।

अनकही, यह फिल्म का नाम। और आइए सुनते हैं इस फिल्म से श्रेया घोषाल को। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन बनाई है प्रीतम ने।

आइए अब सुनते हैं गुलजार का लिखा गीत आरती मुखर्जी की आवाज़ में। इस गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने और फिल्म का नाम है मासूम।

सागर, आइए सुनते हैं इस फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:55 होने को है और ये वक्त है प्रादेशिक समाचार का।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक सौंधी होती है।
2: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता की भी चर्चा की। इसमें लगभग 800 एथलीटों ने भाग लिया था। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल देशव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। अभियान के शुभारंभ से पहले श्री चौहान ने झारखंड समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस अभियान में उनकी भागीदारी के लिए बात की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पर कल हुए हमले की निंदा की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री सोरेन ने कहा है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हिंसा और हमले के लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। दुमका स्थित सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के सभी स्नातकोत्तर विभागों, अंगीभूत और संबद्ध महाविद्यालयों में 1 जून से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। इसके तहत 20 जून तक विश्वविद्यालय और उसके अधीन संचालित सभी स्नातकोत्तर विभागों तथा महाविद्यालयों में नियमित शैक्षणिक और पठन पाठन संबंधी गतिविधियां स्थगित रहेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC अपनी बढ़ती डिजिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक क्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रही है। कंपनी रणनीतिक निवेश के जरिए या स्वयं नई इकाई स्थापित कर फिनटेक कारोबार शुरू करने के विकल्पों पर विचार कर रही है। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक R. दुरईस्वामी ने यह बात कही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार मौसम में सुधार होने तक केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रामगढ़ जिले के उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत के निर्देश पर बीती रात रामगढ़ उपकारा का औचक निरीक्षण किया गया। हालांकि इस दौरान उपकारा परिसर से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। जामताड़ा जिले के करमाटांड थाना क्षेत्र से पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर DSP अमित रविदास ने बताया कि इन साइबर अपराधियों के पास से 10 मोबाइल और 10 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं।
3: ग्राम पिंडारी से 2 व्यक्तियों को रंगे हाथ साइबर अपराध करते हुए पकड़ा गया। साथ ही साथ ग्राम बरमुंडी में छापेमारी के क्रम में एक और व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई। तीनों व्यक्तियों के पास से कुल 10 मोबाइल और 10 सिम कार्ड भी प्राप्त हुए हैं।
1: हॉकी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए अंडर 18 एशिया कप के पूल ए के अपने दूसरे मैच में आज कोरिया को 3-1 से पराजित कर दिया। भारत की तरफ से नौशीन नाज, श्रुति कुमारी और किरण एक्का ने गोल किए। मलेशिया और कोरिया के खिलाफ जीत के बाद भारत अब पूल ए तालिका में 6 अंकों के साथ शीर्ष पर है। वह 2 जून को पूल ए के अपने अंतिम मैच में सिंगापुर के खिलाफ जीत का सिलसिला बरकरार रखने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 3 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सौदागर फिल्म से लता मंगेशकर को। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: फौज चुनौती को

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 3:10 होने को है। आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां से आप सुन सकेंगे पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 3:21 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रोग्राम रांची मेलोडीज़।

आकाशवाणी रांची पर वक्त हो चला है उस खूबसूरत सफर का जिसे हम कहते हैं रांची मेलोडीज। और आज की मेलोडीज में सुरों एहसासों के साथ आपके साथ है आपकी दोस्त शिल्पी। हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई बल्कि भावनाओं को पर्दे पर जीवंत कर दिया। एक ऐसे ही विलक्षण निर्देशक थे राज खोसला, जिन्होंने आज ही के दिन सन 1925 में जन्म लिया था। राज खोसला की फिल्मों में भावनाओं की गहराई साफ दिखाई देती है। वर्ष 1964 में आई फिल्म वो कौन थी ने रहस्य और संगीत का ऐसा संगम प्रस्तुत किया कि आज भी उसकी चर्चा होती है। और इस फिल्म के जिक्र के साथ ही होठों पर आता है वो गीत जिसे सुनकर प्रेम का हर रंग जीवंत हो उठता है।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रांची मेलोडीज़, और आज की रांची मेलोडीज़ में पर्दे के पीछे के उस जादूगर की कहानी जिन्हें हम राज खोसला के नाम से जानते हैं। राज खोसला की फिल्मों में रहस्य था, रोमांस था, दर्द था, संगीत था, और उनसे भी बढ़कर इंसानी रिश्तों की गहरी समझ थी। उनकी फिल्मों के गीत आज भी सुनने वाले के दिलों में उसी तरह बसे हुए हैं जैसे दशकों पहले थे। 1966 में आई उनकी फिल्म मेरा साया ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। फिल्म की कहानी जितनी सशक्त थी वैसा ही उसका संगीत था, अद्भुत। आज भी सुनकर उतना ही कर्णप्रिय लगता है इस फिल्म का गीत।

राज खोसला जानते थे कि कैमरा भावनाओं को कैसे पढ़ता है। उनकी फिल्मों में नायिका सिर्फ एक किरदार नहीं होती थी, बल्कि कहानी की आत्मा होती थी। सन 1969 में उनकी फिल्म आई दो रास्ते, पारिवारिक मूल्यों और रिश्तों की खूबसूरत कहानी। उतनी ही खूबसूरत और जीवन की सच्चाई को सरलता से शब्दों में उतारते उसके गीत थे, जो आज भी सुनकर मधुर लगते हैं।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जोहार रांची, और जोहार रांची में आज हम सुन रहे हैं निर्देशक राज खोसला की फिल्मों के मेलोडियस गाने। राज खोसला की फिल्मों में संगीतकार और गीतकारों को अपनी कला दिखाने का भरपूर मौका मिलता था। शायद यही वजह है कि उनकी फिल्मों के गीत समय की कसौटी पर खरे उतरे। उनकी एक बेहद ही शानदार फिल्म आई मैं तुलसी तेरे आंगन की, जिसने रिश्तों की जटिलताओं को बड़ी संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया, और इस फिल्म का शीर्षक गीत तो अपने आप में एक भावनात्मक दस्तावेज है।

राज खोसला ने सामाजिक विषयों को भी बड़े सलीके से पर्दे पर उतारा। उनकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ साथ जीवन के मूल्य भी दिखाई देते थे। संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होता था उनकी फिल्मों में, बल्कि कहानी का सबसे खूबसूरत किरदार होता था। बादलों की तरह उमड़ते जज्बात और आंखों में छिपे अनकहे एहसास, ऐसा ही एक यादगार नगमा।

राज खोसला सिर्फ एक निर्देशक नहीं थे, बल्कि वे तो भावनाओं के चित्रकार थे। उन्होंने रहस्य को रोमांस से, संगीत को कहानी से और संवेदनाओं को सिनेमा से इस तरह जोड़ा कि उनकी फिल्में आज भी नई पीढ़ी को आकर्षित करती हैं। उनकी फिल्म CID ने हिंदी सिनेमा में थ्रिलर फिल्मों की नई पहचान बनाई और साथ ही इस फिल्म ने दिए कुछ सदाबहार गीत। और उस दौर के गीत आज भी इसलिए जिंदा हैं क्योंकि उसमें सादगी थी, सच्चाई थी और दिल से निकले हुए जज्बात थे।

राज खोसला ने करीब 3 दशकों तक हिंदी सिनेमा को ऐसे गीत दिए जिनके गीत आज भी रेडियो, मंच और दिलों में गूंजते हैं, क्योंकि दर्द और प्यार जब सुरों में ढलता है तो वो हर दिल की कहानी बन जाता है। राज खोसला की फिल्मों के गीतों का जिक्र हो रहा हो और उस गीत को भूल जाएं हम कैसे भला, जो आज भी बेहद ही कर्णप्रिय लगता है। जब सुरों में भीगी हो तन्हाई और आंखों में उमड़ आए यादों के बादल, तब दिल से निकलता है नैनों में बदरा छाए।

आज की रांची मेलोडीज़ में बस इतना ही। अगली बार कुछ और खूबसूरत गीतों और किस्सों के साथ होंगे आपसे मुखातिब। तब तक के लिए अपनी दोस्त शिल्पी को दीजिए इजाज़त।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम रांची मेलोडीज। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल देशव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गाँव तक पहुँचाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पर कल हुए हमले की निंदा की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री सोरेन ने कहा है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हिंसा और हमले के लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। दुमका स्थित सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के सभी स्नातकोत्तर विभागों, अंगीभूत और संबद्ध महाविद्यालयों में 1 जून से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। इसके तहत 20 जून तक विश्वविद्यालयों और इसके अधीन संचालित सभी स्नातकोत्तर विभागों तथा महाविद्यालयों में नियमित शैक्षणिक और पठन पाठन संबंधी गतिविधियां स्थगित रहेंगी। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC अपनी बढ़ती डिजिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक क्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रही है। कंपनी रणनीतिक निवेश के जरिए या स्वयं नई इकाई स्थापित कर फिनटेक कारोबार शुरू करने के विकल्पों पर विचार कर रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार मौसम में सुधार होने तक केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए अंडर-18 एशिया कप के पूल ए के अपने दूसरे मैच में आज कोरिया को 3-1 से पराजित कर दिया। मलेशिया और कोरिया के खिलाफ जीत के बाद भारत अब पूल ए तालिका में 6 अंकों के साथ शीर्ष पर है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:02 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं बाल श्रोताओं का कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा हम सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: बच्चों, जल है धरती की मुस्कान, जल से खिलता खेत खलिहान, नदियां झरने ताल तलैया, जल से सजती दुनिया की जीवन की नैया।
1: हाँ बच्चों, बूंद बूंद की कीमत जानो, पानी को तुम व्यर्थ न मानो। आज अगर जल बचाओगे तभी सुंदर भविष्य पाओगे, क्योंकि जल है तो कल है।
0: हाँ बच्चों, जल यानी पानी हमारे जीवन की सबसे अनमोल चीज है। इसके बिना कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, खेत खलिहान जीवित नहीं रह सकता। आप देख रहे हैं ना, अभी गर्मी में कितनी प्यास लगती है, इसलिए कहा गया है जल ही जीवन है।
1: बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। बच्चों, आप भी महसूस करते होंगे कि हमेशा मन करता है कि ठंडा पानी हम पिएं, चाहे खेल कर आते हों या पढ़ाई करते हों, इसलिए अपने साथ पानी जरूर रखें।
0: हाँ बच्चों, और देखा जाए तो बिना जल के जीवन संभव नहीं है। हम हर रोज पानी का उपयोग करते हैं, चाहे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, स्नान करने के लिए, या घर की साफ सफाई या बागवानी के लिए। पानी का उपयोग सभी जगह है।
1: बच्चों, हमारे किसान जब खेतों में फसल या सब्जियां लगाते हैं तो उन्हें हमेशा पानी की आवश्यकता होती है। वो अपनी क्यारियों में बर्बाद जल को भी उपयोग में लाते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत उसमें लगी होती है।
0: हाँ बच्चों, भैया

0: बिल्कुल सही बात समझाया। आप गौर करेंगे तब देखेंगे पानी से धरती हरी भरी और सुंदर दिखाई देती है। पानी की कमी से बाग बगीचे भी मुरझा जाते हैं। इसलिए आप सब पानी की बर्बादी बिल्कुल मत कीजिएगा बच्चों, कहीं भी नल को खुला मत छोड़िएगा। आप चाहे तो पानी की बर्बादी को बचा सकते हैं बच्चों, तो शुरुआत कीजिए अपने घर से और आज से। जैसे ब्रश करते वक्त नल को बंद रखिए, अपनी साइकिल या आप स्कूटी को धोते हैं तो बाल्टी में एक मग डालकर धोएं, यानी कि टैप वाटर का इस्तेमाल ना करें, इससे कई लीटर पानी यूं ही बह जाता है।
1: और दूसरों को भी जल बचाने के लिए प्रेरित करें बच्चों। घरेलू उपयोग में इस्तेमाल किया हुआ जल को अपने गमले में डाल सकते हैं। वाटर फिल्टर से व्यर्थ निकले हुए जल को एक जगह जमा करके उसे भी पेड़ पौधे में डाल दें। देखिएगा, जल मिलते ही वो भी लहलहा उठेंगे।
0: घर के किसी भी नल से पानी टपक रहा हो तो अपने माता पिता को उसकी जानकारी दें। वर्षा जब भी हो तो उसे कैसे संचय करना है इसके बारे में भी आप जानें।
1: यही तो जागरूक बच्चे की पहचान है बच्चों, है ना? तो आप लोग भी जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए।
0: बच्चों, गर्मी बहुत पड़ रही है, तेज धूप, पसीना और थकान, तो इससे बचने के लिए आपको अपने शरीर को खास ध्यान रखना होगा।
1: तो बच्चों, आप लोगों ने दीदी का इशारा समझ लिया होगा, है ना, कि सुबह सुबह हमें उठ जाना चाहिए और योग और व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें, है ना?
0: हाँ बच्चों, क्योंकि मुझे पता है आप सब थोड़ा आलस से घिर गए हैं, स्कूल भी बंद है, तो क्यों ना छुट्टियों का आनंद लीजिए। देखिएगा सारा आलस कैसे छूमंतर हो जाएगा। बस सुबह उठिए और हल्का व्यायाम और योग का अभ्यास कीजिए।
1: हाँ बच्चों, प्राणायाम करने से शरीर को ताजगी मिलती है। सूर्य नमस्कार करना सीख लें तो शरीर मजबूत और लचीला भी बनता है।
0: और बच्चों, जब आप खेलेंगे तो उससे शरीर भी सक्रिय रहेगा, साथ ही खेलने से आपके नए दोस्त भी लेंगे, यानी कि हर दिन एक नए दोस्त आपसे जुड़ते चले जाएंगे।
1: बच्चों, एक बात और, अगर आप योग या प्राणायाम की शुरुआत करते हैं तो इसकी शुरुआत आसान तरीके से सीखें या करें, जैसे ताड़ासन शरीर को सीधा और मजबूत बनाता है। प्राणायाम मन को शांत और ऊर्जावान रखता है, इसलिए योग प्राणायाम अवश्य करें।
0: लेकिन बच्चों, कुछ सावधानियां भी बरतें। अभी गर्मी का मौसम है इसलिए खूब पानी पिएं, तरबूज, खीरा, नारियल पानी जैसे फल को खाएं। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात है कि फास्ट फूड, जंक फूड से बचें, ज्यादा ठंडी चीजें भी आप न खाएं।
1: अभी गर्मी का मौसम है बच्चों, और धूप में निकलते वक्त छाता, टोपी और पानी की बोतल अपने साथ रखें। शाम को ही आप बाहर खेलने जाएं, दोपहर में धूप में न निकलें। और हाँ, मोबाइल भी कम चलाएं, परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ वक्त बिताएं। गर्मी की छुट्टी यादगार बन जाएगी। मनपसंद कार्य कीजिए, संगीत सुनिए, पेंटिंग बनाइए और नया आर्ट सीखने की कोशिश कीजिए। साथ ही आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, है ना? तो दीदी, बातें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन उससे पहले हम बच्चों का थोड़ा मनोरंजन भी करवा दें तो कैसा रहेगा? तो चलिए बच्चों को सुनाते हैं ये बाल गीत।

0: भैया, हमने बच्चों को बाल गीत सुनवा दिया और अब बारी है कि हम बच्चों के मुख से कुछ सुनेंगे।
1: तो चलिए, बच्चे भी तैयार हैं, उनसे सुन लेते हैं।
2: क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम मानवी कुमारी है।
2: मानवी, आज अपने दोस्तों को आप क्या सुनाएंगी?
3: आज मैं अपने दोस्तों को बारिश पर एक कविता सुनाऊंगी। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप टिप टिप बूंदा बांदी, फिर आई घंघोर गरजती बारिश के संग आंधी। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर, गाय उठकर खड़ी हो गई, झबरू दौड़ा भीतर। राज मिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट, और होड़ी पर आंधी कर दी टूटी फूटी खाट। हो गए चोड़म चोड़ा सारे, धूप में सूखे कपड़े, इधर उधर उड़ते फिरते थे मंगलू कैसे पकड़े। चाची ने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए सारे, पलंग के नीचे

0: ऐसे इंद्रधनुष दीक्षा थी।
1: वाह, बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता। आप क्या सुनाएंगी? पहले तो आप अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम अन्विशा श्रीवास्तव है, मैं 4 क्लास में पढ़ती हूँ।

0: दिए खा रहे थे। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम आकांक्षा है।
1: आप क्या सुनाएंगी?
2: मैं अपने दोस्तों को एक कविता सुनाना चाहूंगी। सूरज निकला, धूप खिल गई, माँ मुझको भूख लग गई, ची ची ची ची ची ची कहाँ उड़ गई मम्मी जी। छोटी नन्ही चिड़िया हूँ, माँ तेरी मैं गुड़िया हूँ, जल्दी से अब आ जाओ, खाना मुझे खिला जाओ, चुपके से मैं सो जाऊंगी, ची ची नहीं मचाऊंगी।
1: वाह, चीची नहीं मचाऊंगी, चुपके से सो जाऊंगी। बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता। आप अपना नाम बताइए।
3: मेरा नाम शाश्वत चौधरी है, मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। मैं आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उस कविता का शीर्षक है याद तुम्हारी आती है। ये कविता रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। ये एक बहुत ही सुंदर कविता है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोक कर लाती है, जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब चांद शान से उगता है और दिशा दिशा धुल जाती है, जब ओस के रूप में हरी घास चमकीले मोती पाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। झरने जब झर झर झरते हैं, नदियाँ मस्ती में बहती है, जब देश देश की बातें वे सागर में जाकर कहती है, जब उतार चांदनी ऊपर से सागर में ज्वार उठाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। धन्यवाद।
4: मेरा नाम श्रेयांश कुमार है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ। उसका नाम है तिरंगा। लहर लहर तिरंगा लहराए, शान आनमान हमारी बराए, रंग केसरी बलिदान का बुलंद नारा ये देश प्रेम का। दुश्मनों को सबक सिखाना, तुम ना कभी पीठ दिखाना, रंग सफेद है शांति का, प्रेम भाईचारे सद्भाव का। घृणा हिंसा द्वेष से बचना, विश्व शांति का दूत तुम बनना, रंग हरा भरी धरा का प्रतीक, प्रदूषण रहत धरती का, पर्यावरण को तुम सवारना, मित्रता से उससे प्रण निभाना।
1: क्या नाम है आपका?
5: मेरा नाम खुशी है।
1: खुशी, आप किस कक्षा में पढ़ती हैं?
5: मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ।
1: खुशी, आज आप अपने दोस्तों को क्या सुनाएंगी?
5: मैं आज अपने दोस्तों को एक कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है भारतीय संविधान और उसके कवि है राम वृक्ष कुमार। कोटि कोटि कंठों से निकली एक यही स्वर धारा है, सबसे न्यारा सबसे प्यारा सुसंविधान हमारा है। शत शत नवल प्रणाम तुम्हें, एक तुम ही सहारा है, बहते दरिया में नावों का सुंदर एक किनारा है। समता का अधिकार दिया ये शिक्षा का उजियारा है, नारी को सम्मान दिलाकर उज्जवल भविष्य संवारा है। ना कोई राजा कोई प्रजा, लोकतंत्र अति प्यारा है, दुनिया में गुणगान तुम्हारा नीति बड़ा ही न्यारा है। जीव जंतु पशु पक्षी का भी जीवन तेरे द्वारा है, हर पन्नों के धाराओं से मिट गया अंधियारा है। देश का गौरव गरिमा है तू, काशी चर्च गुरुद्वारा है, संविधान का पन्ना पन्ना तेरा और हमारा है। भीमराव की चली लेखनी दूर हुआ अंधियारा है, सबसे न्यारा सबसे प्यारा सुसंविधान हमारा है।
1: वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
6: बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई दीदी, तो अब जानकारी की बातें भी होनी चाहिए।
7: बिल्कुल भैया, और बच्चों को आज हम बताएंगे कि एक पेड़ के कितने फायदे हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ हमारे लिए कितने फायदेमंद हैं? पेड़

0: ये तो है जो हम सबको शुद्ध हवा, भोजन, दवा, फल, कागज के साथ साथ स्वस्थ जीवन भी देते हैं।
1: हाँ बच्चों, पेड़ हमें प्राण वायु देता है। जब बहुत गर्मी पड़ती है और आप छायादार वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो देखिएगा, गर्मी और धूप का एहसास कम हो जाता है।
0: बिल्कुल। और बच्चों इतना ही नहीं, ये बारिश को भी बुलाते हैं, और जब बारिश ज्यादा होने लगे तो मिट्टी को बहने से भी बचाते हैं, साथ ही पर्यावरण की शोभा को भी बढ़ाते हैं। पेड़ पौधे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर इसके बदले ऑक्सीजन भी देते हैं।
1: हाँ बच्चों, अगर आप ध्यान से सोचेंगे ना तो देखिएगा, पेड़ पौधों का हर अंग प्रकृति को संतुलित करने में अपना योगदान देता है। जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां, टहनियां, शाखाएं वातावरण में मौजूद अनावश्यक शोर यानी ध्वनि प्रदूषण को भी रोकता है।
0: तो देखा ना बच्चों, एक पेड़ और फायदे अनेक हैं इसके। और भैया, हमारे बढ़ते बच्चों के लिए एक बहुत जरूरी बात है, बचपन जीवन का सबसे सुंदर समय होता है, इसलिए अच्छे काम करने चाहिए। अभी हमने बताया कि योग, प्राणायाम कीजिए, जल को बर्बाद होने से बचाइए, गर्मी की छुट्टी का सदुपयोग कीजिए, यानी अपने आसपास कोई भी आप पौधा लगा सकते हैं। और हाँ बच्चों, पौधा लगाकर उसे छोड़ ना दें, बल्कि उसकी देखरेख भी कीजिए।
1: बच्चों, इस उम्र में पढ़ाई, खेलकूद और अच्छे संस्कारों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि संगति का असर जीवन भर साथ रहता है। इसलिए दोस्त बनाते समय थोड़ा ध्यान रखें। कभी-कभी ऐसे बच्चों से भी आपकी दोस्ती हो जाती है जिन्हें गलत चीजों की लत हो।
0: हाँ बच्चों, समय रहते ही आप उनसे अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि कभी-कभी दोस्तों के साथ भी ना बोलने का सीखें।
1: बच्चों, आप हमेशा याद रखें, आप अपने माता पिता के लिए खास हैं। इसलिए नशा इंसान की सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है। इससे स्वास्थ्य और भविष्य दोनों प्रभावित होता है। अच्छी आदतें जीवन बनाती हैं और बुरी आदतें जीवन बिगाड़ देती हैं।
0: तो भैया, हमने बच्चों के साथ इतनी सारी बातें कर ली, और अब समय है कि हम अपने बच्चों को एक बाल कथा सुनाएं।
1: तो चलिए बच्चों, आज हम आपको सुनाते हैं सेख चिल्ली की कहानी, सेख चिल्ली की खीर। बच्चों, सेख चिल्ली पूरा बेवकूफ था और हमेशा बेवकूफी भरी बातें करता था। सेख चिल्ली की माँ उसकी बेवकूफी भरी बातों से बहुत परेशान रहती थी। एक बार सेख चिल्ली ने अपनी माँ से पूछा, माँ लोग मरते कैसे हैं? अब माँ सोचने लगी कि इस बेवकूफ को कैसे समझाया जाए कि लोग कैसे मरते हैं। माँ ने कहा, बस आंखें बंद हो जाती है और लोग मर जाते हैं। शेख चिल्ली ने सोचा कि उसे एक बार मरकर देखना चाहिए। उसने गांव के बाहर जाकर एक गड्ढा खोदा और उसमें आंखें बंद करके लेट गया।
0: रात होने पर उस रास्ते से दो चोर गुजरे। एक चोर ने दूसरे से कहा कि हमारे साथ एक साथी और होता तो कितना अच्छा होता। एक घर के आगे रहता, दूसरा घर के पीछे रहता, और तीसरा आराम से घर के अंदर चोरी करता। शेख चिल्ली यह बात सुन रहा था। वह अचानक बोल पड़ा, भैया मैं तो मर चुका हूँ, अगर जिंदा होता तो तुम्हारी मदद कर देता। चोर समझ गए कि यह बिल्कुल बेवकूफ आदमी है।
1: एक चोर शेख चिल्ली से बोला, भाई जरा गड्ढे से बाहर निकलकर हमारी मदद तो कर दो, थोड़ी देर बाद आकर फिर मर जाना, मरने की ऐसी भी क्या जल्दी है। शेख चिल्ली को गड्ढे में पड़े पड़े पड़े बहुत भूख लगने लगी थी और ठंड भी। उसने सोचा कि चलो चोरों की मदद ही कर दी जाए। तीनों ने मिलकर यह तय किया कि शेख चिल्ली अंदर चोरी करने जाएगा, एक चोर घर के आगे खड़ा रहेगा, ध्यान रखेगा, और दूसरा चोर घर के पीछे से ध्यान रखेगा।
0: शेख चिल्ली को तो बहुत अधिक भूख लगी थी, इसलिए वो चोरी करने के बजाय घर में कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने लगा। रसोई में शेख चिल्ली को दूध, चीनी और चावल रखे मिल गए। अरे वाह, क्यों ना खीर बनाकर खाई जाए, शेख चिल्ली ने सोचा और खीर बनानी शुरू कर दी। रसोई में ही एक बुढ़िया ठंड से सिकुड़कर सोई हुई थी। जैसे ही बुढ़िया को चूल्हे से आंच लगने शुरू हुई तो गर्मी महसूस होने पर सही से खुलकर सोने के लिए उसने अपने हाथ फैला दिए।
1: शेख चिल्ली ने सोचा कि ये बुढ़िया खीर मांग रही है। शेख चिल्ली बोला, अरे बुढ़िया मैं इतनी सारी खीर बना रहा हूँ, सारा अकेले थोड़ी ना खा जाऊंगा। अरे शांति रख, तुझे भी खिलाऊंगा। लेकिन बुढ़िया को जैसे जैसे सेख लगती रही वो और ज्यादा फैल कर सोने लगी। उसने हाथ और भी ज्यादा फैला दिए। शेख चिल्ली को लगा कि ये बुढ़िया खीर के लिए हाथ फैला रही है। उसने झुंझलाकर गरम गरम खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दी। बुढ़िया का हाथ जल गया। चीखती चिल्लाती बुढ़िया एकदम हड़बड़ा कर उठ गई और सेक चिल्ली पकड़ा गया। सेक चिल्ली बोला, अरे अरे मुझे पकड़कर क्या करोगे, असली चोर तो बाहर है, मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैं अपने लिए खीर बना रहा था। इस तरह सेक चिल्ली ने अपने साथ साथ असली चोरों को भी पकड़वा दिया। तो कैसी लगी बच्चों कहानी? अच्छी कहानी थी ना? तो कहानी तो बच्चों ने सुन ली दीदी, और अब हम क्या बच्चों को बताने वाले हैं?
0: भैया आज हम अपने बच्चों को बताएंगे एक प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में, और वो है गुरविंदर वीर सिंह, जो एथलीट हैं।
1: बच्चों आज हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने गरीबी, कठिनाइयों और संसाधनों की कमी के बावजूद अपने सपनों को टूटने नहीं दिया।
0: यह कहानी है पंजाब के तेज धावक गुरविंदर सिंह की, जिन्होंने अपनी मेहनत और हौसले से पूरे देश का नाम रोशन किया।
1: एक साधारण परिवार में जन्मे गुरविंदर सिंह बचपन से ही दौड़ने के शौकीन थे। जब दूसरे बच्चे खेलते खेलते थक जाते थे तब गुरविंदर और तेज दौड़ने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे उनका ये शौक उनका सपना बन गया।
0: लेकिन बच्चों सपने देखना आसान होता है, उन्हें पूरा करना कठिन। गुरविंदर वीर के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, घर में सिर्फ एक ही कमाने वाला था। कई बार उनके पास अच्छे जूते पहनने तक के पैसे नहीं होते थे। कभी सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती तो उनके कोच के दोस्त मदद करते, कभी प्रतियोगिता में जाने के पैसे नहीं होते तो समाज के लोग मदद के लिए आगे आ जाते।
1: लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद गुरविंदर वीर ने हार नहीं मानी। साल 2021 में उन्होंने पटियाला में हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ केवल 10.27 सेकंड में पूरी करके गोल्ड मेडल जीत लिया।
0: वे राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने से बस थोड़े से अंतर से चूक गए, लेकिन उनका हौसला और मजबूत हो गया। फिर भुवनेश्वर में हुए फेडरेशन कप में उन्होंने 10.35 सेकंड का समय निकालकर फिर से गोल्ड मेडल जीता।
1: दो दिन में लगातार तीन रेस दौड़ने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी बच्चों। रिकवरी के लिए उन्होंने सिर्फ इडली खाई और फिर पोडियम पर पहुंचकर देश का नाम रोशन किया। बच्चों सोचिए, जिस खिलाड़ी के पास हाईटेक जिम नहीं, फिजियो नहीं, महंगे ट्रेनर नहीं, फिर भी वो गोल्ड मेडल जीत रहा है, उसकी मेहनत कितनी बड़ी होगी। गुरविंदर कहते हैं कि उनके माता पिता कभी उस पर दबाव नहीं डालते। वे हमेशा कहते हैं, हम थोड़ा कम खा लेंगे, कम पहन लेंगे, लेकिन तुम अपने सपनों को पूरा करो। और यही परिवार का विश्वास उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है।
0: दो साल तक चोट और फिटनेस की समस्या के कारण वे खेल नहीं पाए, लेकिन उनके परिवार ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, अभी हमारा समय नहीं आया, लेकिन एक दिन जरूर आएगा।
1: बच्चों गुरविंदर वीर सिंह हमें सिखाते हैं कि अगर इरादे मजबूत हो तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। सफलता केवल सुविधाओं से नहीं मिलती बच्चों, सफलता मिलती है मेहनत से, अनुशासन से, धैर्य और आत्मविश्वास से। अगर आपके पास बड़ा सपना है तो छोटी परेशानियों से नहीं डरना चाहिए।
0: तो बच्चों आज से हम यह भी संकल्प लें कि हम कठिनाइयों से घबराएंगे नहीं, पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों को पूरा करेंगे, क्योंकि संघर्ष की रेस जीतने वाले ही एक दिन जीवन के असली विजेता बनते हैं। तो बच्चों प्रेरक व्यक्तित्व गुरविंदर वीर सिंह, जिनकी कहानी हमें मेहनत, संघर्ष और सपनों पर विश्वास करना सिखाती है।
1: तो बच्चों ये जानकारी थी गुरविंदर वीर सिंह की, और अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है बच्चों। लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुति नूतन प्रसाद की थी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ जानकारियों के साथ, कुछ कविताओं के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा।
2: जय हिंद बच्चों।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा, प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:34 हुए हैं। आइए आपको शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा बताते चलें। तो आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम।

पांच बजे का वक्त होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का। 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। 5:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रमिक लोक और 6:00 आप पुनः सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 से आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। 6:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया और 7:00 होगा प्रादेशिक समाचार।

7:11 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल। 7:15 पर हिंदी साप्ताहिक पत्रिका शतदल आप सुन सकेंगे। 7:45 से आप सुनेंगे सांताली समाचार पत्रिका। 8:00 प्रस्तुत होगा कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:15 पर आप सुनेंगे हमारी बेड़िया। 8:30 का समय होगा सुर्खियों में। 8:45 से आप सुनेंगे समाचार संध्या।

तो ये थे अब प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य मुख्य कार्यक्रम की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सांझ सरगम। लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी पूजा और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का शुरुआत हम करते हैं फिल्म दिल का रिश्ता के इस प्यारे से गीत के साथ, आवाज़ें अलका याग्निक की, संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने और शब्द रचना समीर का।

फिल्म अतरंगी से आपने सुना ये प्यारा सा गीत। आवाज़ें थी श्रेया घोषाल की, शब्द रचना इरशाद कामिल का और संगीत से सजाया था हीरल ने। अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म प्रेम रतन धन पायो से, आवाज़ें अमन और विनीत सिंह की, शब्द रचना इरशाद कामिल का और संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने।

अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म फाइटर से, आवाज़ें बेनी दयाल, शिल्पा राव और विशाल और शेखर का। संगीत से सजा है विशाल और शेखर ने, सब दृष्णा कुमार की।

अगला और आखिरी गीत लीजिए, सुनिए फिल्म पठान से, आवाज़ें अरिजीत सिंह, सुकृति कक्कड़ और विशाल और शेखर की, संगीत से सजाया विशाल और शेखर ने सप्तृष्णा कुमार की।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पर कल हुए हमले की निंदा की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री सोरेन ने कहा है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हिंसा और हमले के लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस हमले को गलत बताया है। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC अपनी बढ़ती डिजिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक क्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रहा है। कंपनी रणनीतिक निवेश के जरिए या स्वयं नई इकाई स्थापित कर फिनटेक कारोबार शुरू करने के विकल्पों पर विचार कर रही है। पलामू जिले से पुलिस ने एक आपराधिक गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि ये अपराधी सड़क निर्माण कर रही एक निजी कंपनी के कैंप पर गोलीबारी करने की योजना बना रहे थे। इनके पास से 2 9mm पिस्टल, 2 कारतूस, 6 मिसफायर गोलियां, 1 खाली मैगजीन और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जामताड़ा जिले के कर्माटांड थाना क्षेत्र से पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर DSP अमित रविदास ने बताया कि इन साइबर अपराधियों के पास से 10 मोबाइल और 10 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में 6 जून तक गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने इस दौरान आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। विभाग के अनुसार कल राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों को छोड़कर अधिकतर क्षेत्रों में गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपका दिन अच्छा बीत रहा होगा और आप इस समय अपने परिवार, दोस्तों या अपने कामों के बीच कुछ पल निकाल कर हमारे साथ जुड़े होंगे। दोस्तों, युवानी सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं के विचारों, सपनों, चुनौतियों और भावनाओं को जोड़ने का एक मंच है। दोस्तों, आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त निश्चय,
1: और मैं हूं समृद्धि।
0: हम दोनों की ओर से आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे विषय जिनका संबंध सीधे हमारे जीवन, हमारे स्वास्थ्य और हमारे भविष्य से है। हम कोशिश करेंगे कि बातचीत के माध्यम से कुछ नई बातें जानेंगे और कुछ ज़रूरी संदेश भी साझा करें और कुछ ऐसे विचारों पर चर्चा करें जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगले कुछ मिनटों तक हमारे साथ बने रहिए, अपने विचारों को खुला रखिए और इस खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बनिए। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ा विषय नहीं है बल्कि सपनों, भविष्य और जीवन से जुड़ा विषय है। अगर कोई व्यक्ति जानता हो कि कोई चीज़ उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और फिर भी वह उसे रोज़ इस्तेमाल करे तो आप क्या कहेंगे?

0: मैं कहूंगी कि शायद वह उसकी आदत या लत बन चुकी है।
1: बिल्कुल सही। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक आदत की जो धीरे धीरे लत का रूप ले लेती है, तंबाकू।
0: दोस्तों, हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना होता है।
1: और अक्सर लोग तंबाकू का नाम सुनते ही सिर्फ सिगरेट के बारे में सोचते हैं।
0: लेकिन तंबाकू सिर्फ सिगरेट में ही नहीं होता है, ये गुटखा, खैनी, बीड़ी, हुक्का और कई अन्य रूपों में इसका सेवन किया जाता है।
1: और कई बार लोग यह सोचकर शुरू करते हैं कि बस एक बार ट्राई कर लेते हैं।
0: लेकिन दोस्तों, यही एक बार धीरे धीरे आदत में बदल सकती है।
1: कॉलेज हो, ऑफिस हो या दोस्तों की महफिल, कई बार साथियों का दबाव भी युवाओं को इसकी ओर आकर्षित करता है।
0: बिल्कुल सही कहा। कई युवा सिर्फ इसलिए शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वे ज्यादा मैच्योर या कूल दिखेंगे।
1: लेकिन सच तो ये है कि आत्मविश्वास किसी सिगरेट के पैकेट में नहीं मिलती।
0: बिल्कुल, आत्मविश्वास मिलता है अपनी मेहनत से, अपनी उपलब्धियों से और अपने व्यक्तित्व से।
1: दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि धूम्रपान करने वाला व्यक्ति अकेला सिर्फ प्रभावित नहीं होता,
0: उसके आसपास मौजूद लोग भी धुएं के प्रभाव का सामना करते हैं
1: यानी कि एक व्यक्ति की आदत का असर पूरे परिवार पर पड़ सकता है।
0: और सोचिए, जो पैसे तंबाकू पर खर्च होते हैं, वही पैसे किसी किताब, किसी कौशल, किसी शौक या किसी जरूरतमंद के काम आ सकते हैं।
1: बिल्कुल। और कभी-कभी हम छोटी-छोटी आदतों के पीछे अपने बड़े-बड़े सपनों को भी नुकसान कर बैठते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ना चाहता है तो उसका समर्थन कीजिए।
1: क्योंकि किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए हौसला और सहयोग दोनों की जरूरत होती है।
0: तो आइए, इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: क्योंकि दोस्तों, स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी पूंजी है।
0: और इसी संदेश के साथ बढ़ते हैं अपने अगले विषय की ओर।
1: मगर दोस्तों, अगले विषय की ओर बढ़ने से पहले आइए लेते हैं हम एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस की यात्रा
1: आई एम हियर। तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: खो गया इंतजाम।
6: किसका? गुड्डी की फीस का।
5: दिखा।
6: 20,000 का लोन तुरंत?
5: पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
7: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है नशे से बचे युवा। युवावस्था जीवन का वह समय है जब सपने सबसे बड़े होते हैं और ऊर्जा सबसे ज्यादा।
9: लेकिन यही उम्र ऐसी भी होती है जब सही और गलत रास्ते के बीच हमें चुनाव करना पड़ता है।
8: आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, संगत का असर।
9: बिल्कुल सही कहा निश्चय, अच्छी संगत हमें आगे बढ़ाती है और गलत संगत कभी कभी हमें ऐसे रास्ते पर ले जाती है जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता है।
8: इन्हीं रास्तों में से एक है नशे का रास्ता।
9: दोस्तों नशा किसी भी रूप में हो, वो धीरे धीरे व्यक्ति की सोच, व्यवहार और जीवन को प्रभावित करता है।
8: लेकिन एक सवाल है, आखिर युवा नशे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं?
9: दोस्तों कई कारण हो सकते हैं, जिज्ञासा, दोस्तों का दबाव, तनाव, अकेलापन या फिर ये सोच कि इससे परेशानियां कम हो जाएंगी।
8: लेकिन सच्चाई यह है कि नशा किसी समस्या का समाधान नहीं है।
9: समस्या कुछ समय के लिए छिप सकती है लेकिन खत्म नहीं होती है,
8: बल्कि कई बार नई समस्याएं पैदा हो जाती हैं।
9: जरा सोचिए, एक विद्यार्थी जो अपने करियर के लिए मेहनत कर सकता है, अगर वो नशे की आदत में पड़ जाए तो उसका ध्यान भटक सकता है।
8: बिल्कुल भटक सकता है। और एक खिलाड़ी, एक कलाकार, एक गायक, एक लेखक, हर किसी को अपनी प्रतिभा निखारने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है
9: और नशा उस अनुशासन को कमजोर कर देता है।
8: दोस्तों जीतने में
9: जीवन में तनाव आना बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन तनाव से लड़ने के लिए हमारे पास बहुत से सकारात्मक तरीके होते हैं,
8: जैसे खेलकूद,
9: संगीत,
8: पढ़ाई लिखाई और नई चीजें सीखना।
9: बिल्कुल, परिवार और दोस्तों से खुलकर बात करना आज के युवा देश की बड़ी ताकत है।
8: और आज का युवा वैज्ञानिक भी है, कलाकार भी है, खिलाड़ी भी है और भविष्य का नेतृत्व करता भी है।
9: बिल्कुल सही कहा। इसलिए जरूरी है कि युवा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दें
8: और अपने सपनों को इतना बड़ा बनाइए कि नई नशे जैसी चीज छोटी लगने लगे।
9: बिल्कुल। और दोस्तों अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि गलत रास्ते आपको आकर्षित कर ही ना सके।
8: आइए दोस्तों हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि नशे से दूर रहेंगे,
9: स्वस्थ जीवन अपनाएंगे और अपने मित्रों को भी जागरूक करेंगे।
8: बिल्कुल।
9: दोस्तों इसी के साथ लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, सुनते हैं ये गाना।

0: दोस्तों, जीवन बहुत खूबसूरत है। इसमें सपने हैं, रिश्ते हैं, खुशियां हैं और आगे बढ़ने के अनगिनत अवसर हैं। लेकिन नशा धीरे धीरे इन सभी खुशियों को हमसे दूर कर देता है।
1: शुरुआत भले ही मजाक या शौक से होती है, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बनकर इंसान की सेहत, सोच और भविष्य तीनों पर बहुत बुरा असर डालने लगती है।
0: बिल्कुल, नशा सिर्फ शरीर को ही कमज़ोर नहीं करता दोस्तों, बल्कि हमारे रिश्तों, कॉन्फिडेंस और लाइफ गोल्स को भी अफेक्ट करता है।
1: एक हेल्दी और पॉजिटिव लाइफस्टाइल हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और खेल, संगीत, कला, पढ़ाई और अच्छे दोस्त, ये सब चीज़ हमें सही दिशा में भी ले जाती है।
0: बिल्कुल, यूथ की असली ताकत उनकी सोच, उनका पैशन और उनके सपने होते हैं, ना कि कोई नशा।
1: कई बार लोग तनाव, अकेलापन या गलत संगति की वजह से नशे की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन याद रखें दोस्तों, हर समस्या का समाधान नशा नहीं होता।
0: सही गाइडेंस, फैमिली का साथ और खुद पर कॉन्फिडेंस हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकता है।
1: शुरुआत है जागरूकता की और सही फैसले लेने की, क्योंकि एक सही निर्णय पूरी ज़िंदगी बदल सकता है दोस्तों, और एक गलत स्टेप हमारे फ्यूचर को अंधेरे में भी डाल सकता है।
0: इसलिए दोस्तों, नशे को कहें ना और ज़िंदगी को पूरे दिल से कहें हाँ। दोस्तों, आगे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की हमारी बातचीत ने आपको कुछ नए विचार दिए होंगे और हमारे विषय से जुड़े संदेश आप तक अवश्य पहुंचे होंगे। जीवन में स्वस्थ रहना, सही निर्णय लेना और अपने सपनों की दिशा में लगातार आगे बढ़ना हम सब की जिम्मेदारी है। दोस्तों, याद रखिए, छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़ी बदलावों की शुरुआत करती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सकारात्मक सोच रखिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक बनाइए।
1: और दोस्तों, बातें तो और भी करनी थी आपसे, लेकिन समय हो चला आपसे विदा लेने का। इजाजत दीजिए अपनी दोस्त समृद्धि।
0: और मुझे निश्चय,
1: नमस्कार।

0: श्रमिक साथियों नमस्कार, जोहार, स्वागत है कार्यक्रम श्रमिक लोक में, जिसे लेकर हाजिर हैं हम। स्वीकार कीजिए हमारा सप्रेम नमस्कार। मैं आरती और मेरे साथ है रंजना।
1: और मेरी तरफ से भी सभी श्रमिक साथियों को प्रेम भरा नमस्कार। और साथियों, आज रविवार है और आप भी वीकेंड एंजॉय तो जरूर कर रहे होंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको जागरूक करें, ढेर सारी जानकारियों के साथ रूबरू कराएं और मनोरंजन के लिए प्यारे से गीत तो लेकर हम आते ही हैं।
0: बिल्कुल रंजना, मैं समझ गई जागरूक करने का तात्पर्य तुम्हारा क्या है।
1: हाँ।
0: साथियों, आज यानी 31 मई को हम हर वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं, जिससे लोगों को यह समझ आए कि तंबाकू का सेवन कितना हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए।
1: बहुत ही अच्छी बात बताई आपने आरती। साथियों, ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि झारखंड के तकरीबन 5% स्कूल जाने वाले बच्चे किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। यह आंकड़ा इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि तकनीक युग में युवा तेजी से इसके गिरफ्त में आ रहे हैं।
0: बिल्कुल साथियों, ये बहुत ही चिंता का विषय है और हम सभी के लिए, क्योंकि रंजना हमने देखा था कि पहले लड़के ही ज्यादा तंबाकू का, लेकिन आज के दौर में लड़कियां भी उसी तरह से सिगरेट पी रही हैं और उसी तरह से नशा कर रही, तो ये सचमुच में हम सभी के लिए बहुत ही दुख की बात है कि हमारी जो युवा वर्ग है कहाँ जा रहे हैं। तो साथियों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 का थीम है आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला। इसका उद्देश्य तंबाकू और निकोटीन वाले पदार्थ से बच्चों और किशोरों को दूर करना है।
1: हाँ साथियों, और विशेषज्ञों के अनुसार निकोटीन और तंबाकू की लत महज आदत नहीं बल्कि एक गंभीर निर्भरता है जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से अपने गिरफ्त में ले लेती है। तंबाकू मस्तिष्क में ऐसे रसायनों को प्रभावित करता है जो सेवन करने वाले तनाव से राहत दिलाने की भावना पैदा करता है। इसीलिए साथियों, हमें अपने युवा वर्ग को बचाना है।
0: हाँ, और इनके अंदर ये मतलब मनगढ़ंत बातें हैं, और जब उनकी लत, क्योंकि ऐसे भी कहते हैं ना कि एडिक्शन, आप किसी भी चीज के लत में जाते हैं तो आपको वो क्षणिक सुख तो देता है, लेकिन उसके जो बाद के दुष्परिणाम है वो बहुत ही खराब होते हैं, जो सिर्फ छलावा है, जाहिर सी बात है। दूसरी तरफ तम्बाकू का जो लत है ना, वैसे व्यक्ति को कैंसर या दूसरी गंभीर बीमारी की ओर धकेलता है जो जानलेवा भी है। तो साथियों, आंकड़ों के अनुसार हम देखेंगे ना कि तंबाकू का सेवन करने वाले 18 से 24 वर्ष की आयु वर्ग सबसे ज्यादा है, जो मैंने पहले भी कहा कि अब तो युवा छोड़ दे, युवतियां भी इसमें खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।
1: इसलिए साथियों, हमें ये ध्यान रखना है और हमें अपने युवा वर्ग को इसलिए बचाना है कि वही हमारी कल की भावी पीढ़ी है, और हमें ये भी उन्हें बताना है और उनके साथ हमें हमेशा, बच्चों के साथ आप अपना शेयर करें, उनको किसी भी गलत लत को देखते हैं तो आप उनसे, उनको कहे दूरी बनाने के लिए, ये इस तरह की आदत को आपको छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे। और आज साथियों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हम सभी यह संकल्प ले कि तंबाकू से लोगों को दूर रखें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
0: बिल्कुल, और नशा मुक्ति केंद्र भी है रंजना। हाँ। जैसा तुमने बताया।
1: हाँ।
0: तो बहुत बार हमने ये भी देखा और मैं खुद भी इसमें बहुत काम की हूँ, तो बहुत सारे युवा जो मतलब एक मतलब बहुत सारे पैकेट्स पी लेते हैं और उसके बाद वो चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि वो इतने आदि हो चुके होते हैं। तो साथियों, इसके लिए आप अपने बच्चे या जो भी युवा वर्ग के हैं आप उसे नशा मुक्ति केंद्र में ले जाएं। इसके लिए दवाइयां आती हैं, आप उसे दवा खिलाएं और उससे इसकी जो लत है उसे दूर करें, उसे छुड़वा दें। और स्वास्थ्य की जब बात कहती हो ना, तो कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और यह कथन तब सत्यापित होता है जब आप बीमार होते हैं, है ना। तो अपने आप को स्वस्थ एवं निरोगी रखना है तो मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ऐसे पोषक तत्वों को अपने डाइट में जरूर शामिल करें।
1: हाँ, मोटे अनाज में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम होता है। फाइबर से ये भरपूर होने के कारण यह कब्ज और अपच की समस्या को दूर करता है। वहीं रागी और बाजरा जो है ना, वो आयरन के बेहतरीन स्रोत हैं जो शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं। और ये भी कहते हैं आरती ना, कि बहुत सारे होते हैं लोग कि उनके पास इसका उपलब्ध नहीं होता है ये सब अनाज, लेकिन गांव घरों में यह बहुत ही आसानी से मिलता है।
0: रागी, नहीं, ऐसा नहीं है रंजिता, आप किसी भी परचून की दुकान में जहाँ से आप राशन लेते हैं वहाँ पे हर चीज उपलब्ध है, बहुत आसानी से आपको मिल जाती है।
1: जो ग्रामीण महिला होती है ना उनको लगता है कि बाजरा ये बहुत सस्ती होती है थोड़ी, इसलिए इसके महत्व को लोग नहीं समझते हैं, लेकिन आज के समय में जो महिलाएं हैं, कम एज की जो लड़कियां हैं, उनको आयरन की बहुत कमी हो जाती है। तो इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास भी नहीं जाना है, आप बाजरा का सेवन करें, रागी का सेवन करें और देखें आपके हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल साथियों, मोटे अनाजों का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है तो जिससे ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता, यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित रखता है।
1: और हमारे साथियों, बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि पहले के लोग स्वस्थ जीवन बिताते थे, इसका रहस्य था उनका खान पान जिसमें मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, ये सब
0: सामा और कांगनी
1: ये सब एकदम महत्वपूर्ण उनके लिए, उनके शरीर, उनके थाली में ये हर दिन परोसा जाता
0: था। बिल्कुल, और आधुनिक जीवन शैली और बदलते खान पान की वजह से आज रोगों के अंदर ज्यादा बीमारियां पनप रही है। तो अब वक्त आ गया है सचेत होने का, अपनी जीवन शैली और खान पान को फिर से पहले की तरह करें और स्वस्थ रहें, खुश रहें। और खुश रहने की बात हो गई तो फिर चलो जल्दी से एक गीत सुनवा दो हमारे साथियों को।

0: ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: तो भाई, गीत तो बहुत ही प्यारा था रंजना। अब आगे बताओ, हमारे साथी को क्या सुनवा रही हो?
4: आगे हमारे कार्यक्रम में है साथियों, हर दिन हम आपको नई नई जानकारियों के साथ कभी भेंट वार्ता सुनाते हैं, कभी वार्ता सुनाते हैं। तो आज हम आपको भेंट वार्ता सुनाएंगे महिलाएं स्वावलंबन की ओर। भेंट वार्ताकार हैं दीप शिखा और भेंटकर्ता कुमारी आरती।
5: श्रमिक साथियों नमस्कार, और आज हम आपको एक ऐसी महिला, युवा महिला से रूबरू करवाते हैं जो लोगों को कैसे स्वावलंबी बनाना है, उन्हें कैसे आत्मनिर्भर बनाना है, इसके लिए वो बहुत कार्य करती हैं। तो हमारे साथ हैं दीपशिखा। तो वक्त को जाया ना करते हुए हम दीपशिखा से बातें करते हैं। तो दीपशिखा, आपका बहुत स्वागत है, नमस्कार।
6: नमस्कार, धन्यवाद।
5: दीपशिखा, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका कार्य है क्या?
6: जी, हम लोग कार्य करते हैं इस समाज के लिए, और हमारा काम चलता है जितने लोग, जो लोग नौकरी वगैरह की तलाश में हैं, उन महिलाओं के लिए भी, जो लोग एक उनको सशक्त बनाने के लिए हम काम करते हैं, और साथ में हम लोग बच्चों के बीच में भी काफी सारे काम करते हैं, जैसे उनको ट्यूशन पढ़ाना और फ्री में ट्यूशन पढ़ाना, और हम बताते हैं लोगों को कि कैसे वो अपना एक कोई भी व्यापार जो है शुरुआत कर सकते हैं।
5: मतलब ये बहुत अच्छी बात है दीपशिखा, कि जो हमारा भावी भविष्य है, हमारा आने वाला भविष्य है, उसे आप और अच्छे से प्रोत्साहित करती हैं, उन्हें शिक्षा दे रही हैं ताकि वो आगे बढ़ के अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें। तो ये मैं जानना चाहूंगी कि जैसे महिलाओं को भी आप प्रशिक्षण देती हैं, तो वो क्या होता है और किस तरह से वो आगे अपने लिए कुछ कार्य कर पाती हैं?
6: तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि महिला जो एक होती है, वो एक बहुत सारे काम जो है वो संभालना जानती हैं। उनको हम लोग अगर इंग्लिश में कहेंगे तो उनको एक गुड मैनेजर्स कहा जाता है। तो वो घर का काम तो बहुत ही अच्छे से संभाल लेती हैं, लेकिन साथ में अगर बाहर का भी काम मिले तो वो भी वो कर पाती हैं अच्छे से। लेकिन समस्या यहाँ पे हो जाती है कि उनको मौका ज्यादा बाहर नहीं मिल पाता है। आज के समय में अगर ज्यादा पढ़ी लिखी है तो उन्हें नौकरी मिल जाता है, लेकिन अगर ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, सिर्फ घर का काम जानती है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो उन महिलाओं के लिए हमने खास तौर पे हम कराते हैं सिलाई सेंटर, हमने शुरू किया, जिसमें हमने सिलाई सेंटर में उन्हें जो भी सिलाई होता है शुरुआत से लेके वो हम सिखाते हैं। तो कोई भी एक महिला जो है वो एक घर पे ही जो है अपना काम जो है इसके बाद वो शुरू कर सकती है। उन्हें बस एक मशीन लगा देना है, और देखिए कपड़े का शौक तो ऐसा चीज है जो कभी खत्म होएगा नहीं। तो वो अपने आस पड़ोस में जितने लोग होते हैं उस उनसे वो जो है वो ऑर्डर ले सकती हैं और कुछ बना सकती हैं। तो हम लोग इस चीज के लिए ऐसी महिलाओं को फ्री में हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं कि वो लोग अपने पाँव पे खड़े हो सके, अपना अपने हाथ में उनका पैसा जो है वो आ सके। जैसे मैं कही कि वो एक अच्छे मैनेजर्स होते हैं, तो उनको पैसा भी मैनेज करना बहुत अच्छा आता है, राइट? तो ये हम उन्हें एक बात सिखाते हैं। और ये तो हम बहुत ही बेसिक लेवल में हम एक सिलाई सिखाते हैं, लेकिन और भी आज की युवा पीढ़ी जो है उनको फैशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उनके लिए हम बुटीक का जो ट्रेनिंग है वो देते हैं। अब आप देखिएगा कि जो फैशन डिजाइनिंग एक पढ़ाई होती है वो काफी महंगी होती है। उसके लिए लोगों को बहुत लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है, और फिर एक ढंग की नौकरी भी नहीं मिलती। लेकिन हमने शुरू किया, बहुत ही कम रकम लेते हैं हम, और उसमें हम उन्हें बुटीक का जो हाई लेवल होता है वो हम सिखाते हैं, और उससे वो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े बना रहे हैं, और वो लोग अपना बिजनेस जो है व्यापार शुरू करने पाई हैं ये लोग।
5: तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बार जैसा कि आपने भी बताया कि बहुत ही महंगी पढ़ाई होती है उसकी, लेकिन वैसे भी बहुत युवा हैं, युवतियां हैं जो कि चाहती हैं कि इसमें अपने करियर को बनाना, तो उनके पास पैसों की कमी हो तो वो आपके पास आ सकती हैं। तो दीपशिका, मैं ये जानना चाहूंगी कि आप तक पहुंचने के लिए अगर हमारे जो श्रमिक साथी सुन रहे हैं तो वो कैसे पहुंचेंगे?
6: हमारे काफी सारा वेबसाइट में हम लोग हैं, और ये नाम जो प्रोजेक्ट का नाम है वो लेनी पॉल के नाम से है, और वो अगर वो ढूंढते हैं वेबसाइट्स वगैरह में भी वो देख सकते हैं, या हमारा पर्सनल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो
5: दीपशिका जी चूंकि हमारे जो श्रमिक हैं वो भी पुरुष साथी भी हैं, तो पुरुषों के लिए भी क्या आपके पास कुछ योजनाएं हैं और आप उन्हें भी स्वावलंबी बनाने के लिए कुछ कार्य करती हैं?
6: जी बिल्कुल, हम लोग करते हैं इस चीज के लिए, हम लोग बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप हम लोग कराते हैं, और उसमें हम बुलाते हैं सरकार से जो लोग हैं, लोग जो इस सारा, देखिए सरकार में क्या है ना, बहुत सारी योजनाएं हैं जो आज के समय पे एक नया व्यापार शुरू करने वालों के लिए दी जाती है, बहुत सारी सब्सिडी है, बहुत सारे पॉलिसीज हैं जो आम जनता को नहीं मालूम है इसके विषय में, तो उसके लिए हम एक वर्कशॉप कराते हैं जिसमें जितने पुरुष हैं वो आते हैं, उन्हें हम बताते हैं, जैसे सरकार से डीसी हो गए या डीडीसी हो गए, इन सब लोगों को हम आमंत्रित करते हैं कि वो आकर बताएं। एमएसएमई एक बहुत ही फेमस हम सरकार की एक योजना है जो स्मॉल बिजनेस के नाम से जाना जाता है, उसके लोगों को हम बुलाते हैं और वो बताते हैं और सिखाते हैं कि कैसे आप एक व्यापार शुरू करेंगे तो आपको सरकार किस प्रकार से मदद करेगी,
5: मतलब सब्सिडी देके उन्हें लोन भी देती है, और अगर उनके पास पैसे की कमी होती है तो उन्हें पैसे मुहैया कराती है। तो ये सारी योजनाएं हैं जो हमारे जो साथी हैं उन्हें जानने की आवश्यकता है, जिसके बारे में आप बताती हैं, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से भी हम अपने जो श्रमिक साथी उन्हें उनसे जरूर कहना चाहेंगे कि साथियों आप इसकी जानकारी अवश्य लें, जैसा कि दीपशिका ने हमें बताया। दीपशिका, बहुत बार ऐसा होता है कि जो विशेषकर अगर महिलाओं की बात करें तो वो अपना ज्यादातर समय तो बच्चों को बड़ा करने में निकालती हैं, और जब वो बाहर निकलती उस वक्त उनकी उम्र काफी निकल जाती है, तो आपने कहा कि आप प्रशिक्षण देती हैं। इसके अलावा अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो क्या वहां पे भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिससे कि आप उन्हें स्वावलंबी बना सकती हैं?
6: जी, हम लोग खास तौर पे वो काम हम कराना चाहते हैं महिलाओं से, या उनको हम उठाना चाहते हैं जो वो कर पाए। आमतौर पे जो लोग हैं महिला श्रमिक होती हैं वो लोग ईटा पत्थर उठाने का काम करती हैं, लेकिन उससे ऊंचा लेवल जो है, हम लोग अभी इस समय पे हम लोग सिलाई का ही करना चाह रहे हैं, तो अलग अलग गांव में भी हम कोशिश करते हैं कि उन्हें सिखाएं। अभी हाल फिलहाल में
5: कुछ आर्ट वर्क हो गया, पेंटिंग हो गया, सोहराई पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग।

0: ऐसे भी बहुत सारी
1: जी,
0: चीजें
1: उसकी
0: हैं।
1: भी हम एक वर्कशॉप देते हैं। इसका अभी तो हम लोग एक ही शहर में कर रहे हैं, लेकिन हमारी योजना है कि हम और गांव गांव में भी जाके बहुत सारी मुरार पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट का जैसे बताएं, कपड़े में पेंटिंग कैसे करना है, वो सारा कुछ भी जो है उसका भी हम वर्कशॉप यहाँ पे कराते हैं। फिर प्लस कागज वगैरह जो न्यूज़पेपर होता है उसको आप कैसे इस्तेमाल करके कुछ एक अच्छा एक सामान बना सकते हैं, रिसाइकिल करना जिसे हम कहते हैं, उसकी भी जो है हम ट्रेनिंग दिया देते हैं।
0: जी, ये बहुत अच्छी बात है। तो इससे हमारे साथी जरूर जुड़ेंगे, और चलते चलते हमारे श्रमिक साथियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं कहना चाहूंगी सभी लोगों के लिए कि आज के समय पे अपने पांव में खड़े रहना बहुत ही जरूरी है। ये मायने नहीं रखता कि आपकी उम्र क्या हो रही है और आप कितने ज्यादा उम्र के हैं या कम उम्र के हैं, अपने आप को हमेशा उत्साहित करते रहें और जरूर आप कोई ना कोई काम करें और अपने पांव में जरूर खड़े हों।
0: ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों का जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। उन्हें लगता है कि अब आगे क्या होगा। तो साथियों, आपको थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम हैं आपके साथ, हमारी सरकार आपके साथ है। बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसा कि दीपशिखा भी हैं, वो कार्य कर रही हैं इस पर। तो इससे आप जरूर अपने आप को अवगत कराएं और जागरूक बने और अपने आप को स्वावलंबी बनाएं। दीपशिखा, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई जिससे कि हमें बहुत कुछ मालूम हुआ। तो आपने हमें अपना वक्त दिया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
2: ये बातें तो बहुत अच्छी बताई। और रंजना कहते हैं ना कि अगर हम आत्मनिर्भर बनना चाहें तो रास्ते बहुत सारे हैं, बस जरूरत है उस पर चलने की
1: चलने की।
2: और उसे आत्मसात करने की। और भाई अब मौसम थोड़ा सा कभी धूप कभी छांव, कल
1: छाव है,
2: बारिश हो गई तो बड़ा
1: बड़ा
2: अच्छा सा
1: सुहाना
2: लगा।
1: मौसम
2: हाँ
1: हो
2: तो
1: गया था।
2: चलो एक
1: हाँ
2: गीत सुन लेते हैं, फिर बातें आगे भी होंगी।

0: जब वादियों की बात आती है ना रंजना,
1: हाँ
0: तो सचमुच में कहते हैं कि प्रकृति ने हमें बहुत
1: बहुत
0: कुछ
1: कुछ
0: दिया
1: दिया
0: है
1: है।
0: और प्रकृति की रक्षा करना हम सबकी अहम
1: बहुत
0: जिम्मेदारी है।
1: जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी है। और पता है आरती, मैं जब टहलने जाती हूँ ना, तो एक रास्ते में मुझे गुलमोहर का पेड़ दिखता है जो लाल फूलों से लदा हुआ रहता है। उसे देखकर पता है इतना दिल को सुकून मिलता है ना, कि वो दुनिया की किसी महंगी गाड़ी या एसी रूम में भी नहीं मिल सकता। लेकिन मैं तभी एक सवाल आता है हमारे दिमाग में कि क्या हम आने वाली पीढ़ी को ये सुकून दे पाएंगे?
0: ये बहुत अच्छी बात कही तुमने, क्योंकि इस प्रकृति के नुकसान पहुंचाने में सबसे बड़ा हमारा हाथ होती है। हम बिना सोचे समझे पेड़ों को अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, उसकी पानी बेवजह पर बहा रहे हैं, गाड़ी का इंजन रेड लाइट पर भी चालू रखते हैं, या राह चलते प्लास्टिक और रैपर सड़क पर फेंक देते हैं। और तब हम भूल जाते हैं कि प्रकृति की रक्षा हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, जो हम नहीं कर रहे
1: नहीं
0: हैं।
1: कर रहे हैं सचमुच, ये किसी एक सरकारी विभाग का नहीं है साथियों। अगर हम प्रकृति से रोज कुछ ले रहे हैं, ऑक्सीजन है, पानी, भोजन, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम इसे कुछ वापस भी दें?
0: इसके लिए हम रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाकर प्रकृति को बचा सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपने घर में किचन के कचरे से खाद बनाकर पौधों में डाल सकते हैं, साथ ही घर में पानी बचाने के लिए जितनी भी बाल्टी है उसका इस्तेमाल करें। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो
1: हाँ,
0: हमें करनी है।
1: छोटी बात है लेकिन असर बहुत बड़ा है ना? और अगर हम सिर्फ इतना कर ले कि अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाएं और उसकी जिम्मेदारी ले, या फिर हम बाजार जाते समय कपड़े का थैला साथ में रखें, तो आधी समस्याएं तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं।
0: बिल्कुल, और ये मैं करती हूँ पता है
1: हाँ,
0: रंजना, और
1: चलो।
0: मुझे खुद में भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि प्रकृति तो हर हाल में हमें बचाना है। धरती हमारी माँ है और माँ की रक्षा करना बच्चों का फर्ज होता है। तो आज ही से एक छोटा कदम उठाइए और प्रकृति के संरक्षण में अपना भी सहयोग दीजिए। हाँ
1: और अब कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं अपने साथियों
0: बिल्कुल
1: को।
0: बिल्कुल।
1: साथियों, कौशल प्रशिक्षण प्रगति का आधार है। आज का युवा बहुत स्मार्ट है, एम्बिशियस है और कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन क्या सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रियां हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकती है?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे देश की प्रगति हो या आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ, कौशल प्रशिक्षण को जो है ना चाबी है उसकी सफलता के बंद दरवाजे खोलती है। और एक दौर था जब सिर्फ जितनी भी ट्रेडिशनल नौकरियां होती थी, लेकिन आज डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, ऐसे डेटा एनालिसिस लेकर एडवांस फोटोग्राफी और कॉरपोरेट तक हर क्षेत्र में हुनर की अलग ही बात होती है।
1: और साथियों, अगर आपके हाथों में हुनर है तो आप कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। हुनरमंद बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। साथियों, आप अपनी डिग्री के साथ साथ हर साल कम से कम एक नई स्किल जरूर सीखें। तो
0: और
1: हम
0: सरकार को भी चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं ना, तो उसका फायदा उठाए, और खुद को अपग्रेड करना ही प्रगति का एकमात्र रास्ता है। तो साथियों, आप आगे बढ़े निकले, और इस जितने भी सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण है कौशल के लिए, उस पे अपना इनरोलमेंट कराएं और जरूर सीखें। और देखो, अब इतनी सारी बातें हमने
1: बातें
0: कर
1: करने
0: ली
1: के
0: है,
1: बाद
0: बातें और भी बहुत
1: बहुत
0: कुछ है
1: थी,
0: करने के लिए, लेकिन जो हमारी जो घड़ी की सुई ना वो
1: समय का
0: दस
1: पता ही नहीं चलता है कि हमारा समय भी समाप्त होने
0: मिनट
1: वाला है।
0: तो चलो, इस वादे के साथ कि हम अपने साथियों से फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी दोस्त आरती और
1: रंजना को दें इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडिया वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। हजारीबाग से सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्ष देश के विकास और आत्मनिर्भरता के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत में आज सांसद ने कहा कि विभिन्न केंद्रीय योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है। खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा और खूंटी के विधायक राम सूर्य मुंडा ने आज मुरहू स्थित एक आवासीय विद्यालय परिसर में 50 शैया वाले छात्रावास निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सांसद ने बताया कि कल्याण विभाग की ओर से लगभग 2,25,00,000 रुपए की राशि से इस छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज परीक्षा केंद्र पर आज बीएड, एमएड और बीपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान कई अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि दस्तावेज जांच में देरी के कारण वे समय पर परीक्षा कक्ष तक नहीं पहुंच सके और उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया गया। छात्रों ने परीक्षा संचालन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर गुमला सदर अस्पताल परिसर में आज जिले के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने तंबाकू नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जन जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार करने वाले रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बोकारो जिले में 25 वर्षीय एक महिला की कथित हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने आज बताया कि महिला ने 2 पड़ोसियों के बीच हुए विवाद को शांत कराने का प्रयास किया था, जिस दौरान उसके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई, जिसके बाद एक अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। जामताड़ा के गांधी मैदान में चल रहे 20वीं राज्य स्तरीय 3 दिवसीय बालिका खो खो प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में आज रांची की टीम ने प्रतियोगिता जीत ली। इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों की 18 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मुकाबले में रांची ने रामगढ़ को हराया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: रेडियो सुनवैया सौ भाई बहन के सीमा बहन बटले जोहार और रिंकी बहन राउर के भी जोहार।
1: सब सुनवैया भाई बहन मन के जोहार और सीमा दीदी राउर के भी जोहार।
0: कहूँ का हाल चाल है?
1: हाल चाल तो वैसे है दीदी, तनी गर्मी से थोड़ा निजात है, तनी बरखा बरसत है तो कुछ दो चार दिन में राहत बुझाते।
0: एकदम ठीक कहली, बहुत बेस बात बताली। कहे कि दो चार दिन पहले तो ऐसा स्थिति रहे कि कहल नहीं जात रहे,
1: एकदम सही कहली,
0: एकदम पूरा पसीना पसीना हो जात रहे काम करते करते, और दो तीन बार नहाए पड़ जात रहे।
1: एकदम सही कहती, मैंने नहाए कर कोई फायदा ना।
0: हाँ, और गच वृक्ष में भी हवा एकदम कुछ नहीं बुझात
1: कुछ
0: रहे
1: बुझाते।
0: और कहूँ तो एकदम घरों में चैन नहीं, बाहर में भी चैन नहीं मिला।
1: शहर बढ़ ले तो कहूँ कि इतना फैक्ट्री इतना ऊंच ऊंच मकान सब बन जाए कि मैंने कहीं तनी मनी पेड़ पौधा कर जे तनी मनी नामो निशान है जे मैंने अपन शौक से लगाते हैं उकर हवा रे पावो।
0: हाँ,
1: ये बात
0: तो
1: है।
0: रिंकी बहन ऐसा बुझालक कि भाई पेड़ पौधा जे कटते जाते सेकर से हमरे के ग्लोबल वार्मिंग होते जाते बढ़ते जाते, और
1: एकदम
0: उकर
1: सही
0: से
1: बात
0: ही
1: है,
0: हमरे मने ई मौसम कर जे कुप्रभाव है उके झेलक पड़त
1: बात
0: है
1: सही
0: ने।
1: कहते दीदी। एकदम
0: हाँ
1: गांव बट ले जाए ले तनी मने खेत खलिहान है, पेड़ पौधा लागल है, फल वृक्ष लागल है तो तनी हवादार बुझाते। लेकिन गांव में भी अब जैसे अब शहर से बढ़ते बढ़ते सब कुछ मने वातावरण वहां भी बदल जा है।
0: बदल जा है, लेकिन गांव देहात के बात कर ली रिंकी बहन तो एगो बात हमके याद आ गेलक कि गांव बटले जा रही ने तो देख ली कि गच्छ मन में भी और नीचे जमीन में भी एक ठो बक्सा बनाए करके लकड़ी के एक एक ठो कुछ कुछ दूरी में लागल
1: अच्छा, हम भी
0: राखल
1: बुझाते
0: रहे।
1: रहे और बात कर रहे थे कि मधुमक्खी पालन करी। बात
0: एकदम
1: सही
0: एकदम
1: एकदम
0: सुपट
1: कहली।
0: समझ ली हमार बात। तो देख ली कि बक्सा मने राखल रहे, तो भाई हम सोच ली कि का के खेती होलक है कि का हके, तो बाद में पूछ ले पता चला कि तो मधुपालन कर एक ठो मतलब तरीका
1: तरीका
0: हके।
1: है।
0: हाँ, और देख के बड़ा अच्छा लागलक। तो ये मधुपालन जे किसान भाई बहन मने करत हैं उकर से तो कम लागत में कचिया भी
1: बढ़िया, हाँ
0: बढ़िया
1: बढ़िया
0: आवत है।
1: कचिया भी मिलते और मैंने खेती में भी घर से लाभ होते हैं हमरे
0: एकदम
1: मन के।
0: एकदम, तो मधुपालन के हमरे मने एक ठो अच्छा व्यवसाय के रूप में अपनाए सकत ही है ना।
1: एकदम सही बात कही। और जैसे कि अब बात कही मधुपालन कर तो कर से जे हमरे मन के मधु मिली तो मिठास तो कर में रहबे करी।
0: रहबे करी
1: और
0: रहबे करी।
1: आइज कर जे दौर है यहाँ एगो अभी एगो बीमारी का नाम सग मने हर दो चार घर छोड़ के रौरे सुनब है कि उके मधुमेह भेजा
0: हाँ,
1: है उके भेज।
0: मधुमेह है। हाँ।
1: तो मने कहीं ना कहीं अगर मिठास प्रेमी आदमी अगर मीठा खाए का आदमी तो तनी मनी अगर घर घर कर मधु मिलत है तो उकर से भी लाभ है।
0: लाभ है। अच्छा, मधु खाएक में भी रोटी साथे चाहे जैसे भी खाओ
1: जैसे भी है
0: बढ़िया है, औषधि के रूप में भी हमरे मने खा
1: हाँ
0: सकीला।
1: खाए। एकदम
0: तो
1: सही बात
0: हाँ,
1: कहली,
0: तो ये मधु के हमरे मने औषधि के रूप में दवा के रूप में भी प्रयोग कर सकीला
1: बात सही
0: है
1: है।
0: ना।
1: और बहुत सारा जैसे आयुर्वेदिक दवाई है जो होम्योपैथिक दवाई होकर मैं मधु के मिलाए के खाए
0: एकदम एकदम।
1: कहना तो मैंने ऊपर से बगरा सर्दी खांसी भेजा है तो ऊकर में तनी कुन सीतोपलादी चाहे गोलमरीच के मिला के खा लूं तो ऊकर से भी राहत मिलेला।
0: एकदम। और कहल जाला कि अगर खाली पेट में मधु के एक चम्मच पानी में घोर देव और नींबू डाल के पियब तो इकर तो पूरा एकदम जे अपन शरीर के जे संतुलन है वो
1: हाँ
0: बढ़िया रहेला और शरीर भी बढ़िया मानल जाले इकर
1: एकदम
0: शरीर
1: सही बात
0: खातिर
1: कह
0: भी
1: ली
0: है
1: दीदी।
0: ना।
1: तो मैंने मधुमक्खी पालन से बहुत तरह कर फायदा हो सकेला, कम पूंजी में व्यवसाय भी शुरू करल जा सकेला।
0: एकदम एकदम।
1: संगे संगे कर से मोम और रायल जैसन पराग का जो उत्पादन होवेला ओकर से अतिरिक्त कमाई
0: हाँ
1: होवेला।
0: हाँ और इनकी बहन एक तो बात है कि मधुपालन तो हमरे मने खेती के साथे साथे कर सकीला
1: एकदम
0: नहीं,
1: सही बात
0: खेती
1: है।
0: भी कर सकीला और
1: संगे संगे ओकर
0: उकर
1: काम
0: भी।
1: व्यवसाय भी
0: हाँ,
1: कर
0: तो
1: सकीला।
0: दोनों काम हो सकेला
1: हाँ तो
0: नहीं।
1: मैंने जे आदमी अगर जैसे खेती बाड़ी में निपुण है वो कर बढ़िया से खेती करे पा रहे थे लेकिन अगर बराबर तरीका से नहीं उकर में संभाले पा रहे थे तो कोई घर वैया आदमी खेती में लागल है उकरे घर कर कोई आदमी मधुपालन में लागल है।
0: एकदम।
1: तो मैंने एक ठाव से दो तरह कर व्यवसाय शुरू हो सकेला और आमदनी कर भी बढ़िया जरिया हो
0: हाँ
1: सकेला।
0: हाँ बाजार में देखू ने कि शहद जे रहेला है ना जे ओरिजिनल कहल जाला से कितना महंगा और अच्छा पैसा
1: अच्छा पैसा
0: देवेला
1: में देवेला
0: है ना। तो मधुपालन के हमरे मने एक व्यवसाय के रूप में अपना सकत
1: अपनाए
0: ही है ना।
1: सकेले। बहुत बढ़िया बात कर ली दीदी कि मैंने घर में पेड़ पौधा कर संगे संगे और तरह तरह कर
0: अच्छा
1: मुनाफा
0: रिंग
1: भी कमाए सकेले
0: हाँ
1: घर में
0: रिंग
1: लगाए के।
0: रिंकी बहन रावरे मोम के बात करत रही,
1: हाँ
0: तो जे छत्ता है उकरे से ने मोम
1: हाँ हाँ
0: बनायल जाए
1: ओकरे
0: ना।
1: से बनाएला
0: हाँ, तो इकरो से हमरे मने पैसा कमा
1: पैसा कमाए
0: सकेला ना,
1: सकेला
0: इकरो से तो
1: एकदम।
0: कैगो चीज
1: कई
0: बनेला।
1: चीज बनेला,
0: हाँ।
1: मोमबत्ती है आइज कर बेरा में तो खैर मोमबत्ती लेकिन गांव घर में आइज भी ओकर बहुत उपयोग है।
0: हाँ। तो मधुपालन करे के हमरे मने शुरू भी कर सकीला अगर मन में बात है तो, और साथे साथे ये भी हमरे मन के तनी ध्यान रखे के कि मधुपालन जब करब तो हमरे मन के कुछ सावधानी भी बरते के है ने,
1: हाँ
0: काहे कि मधु तो जानबे करीले
1: हाँ
0: कि कितना काम
1: लेकिन
0: करे
1: कोई
0: लगे
1: भी
0: ने।
1: चीज शुरू करे के तो उधर से उधर में तनिक उन सतर्कता हमरे मन के बरते
0: बरते
1: चाहिए।
0: के काहे कि
1: आओ
0: मधु
1: आजकल तो देखो दीदी सरकार बर से बहुत तरह कर ऐसा योजना चलावल जाए जेकर में जाकर और प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकीला और बढ़िया से बढ़िया कैसे
0: एकदम
1: उधर में
0: एकदम
1: सुधार लान के उधर बढ़िया तरीके से उत्पादन कर सकीला, तो
0: हाँ
1: उधर
0: हाँ
1: बारे में भी बतावल जाए।
0: एकदम। तो हर चीज के आज के तारीख में देखूँ तो वैज्ञानिक ढंग से हमरे मने उकर
1: हाँ
0: फायदा ले
1: ले
0: सकीले है ना।
1: सकीला।
0: तो बात विचार तो होते रहे रिंकी बहिन कुछ,
1: हाँ तो आज
0: हाँ
1: कार्यक्रम में का का जुगाड़ है दीदी?
0: कुछ रीझ रंग भी कर लेवल जाए है ना।
1: चलो एकदम
0: तो सबसे पहले हमरे मने चलू सुनब एक ठो नागपुरी में कृषि गीत, जानकी
1: देव की देवदास विश्वकर्मा और संगीमन कर गावल।
0: हाँ देवदास विश्वकर्मा और संगीमन के गावल।

0: बा दीदी बहुत नगद गीत रहे।
1: मन तो एकदम हरियर हो गेल रिंकी बहन।
0: खेती बाड़ी के बारे में साग बुन लो, मैंने साग तो एगो ऐसा बढ़िया चीज है कि हर मौसम में खा।
1: देखो गीत में छोटकी ननद के चर्चा है ना, ननद जैसा रिश्ता तो कह के ना कि कितना रंगीन रिश्ता है,
0: रंगीन रिश्ता है, खट्टा मीठा रिश्ता है। तो बहुत बेस गीत रहे देवदास विश्वकर्मा और संगी मनकर गावल। और अब आज जानकारी में हमरे का जानकारी करब दीदी?
1: एखन हमरे मने एक जानकारी करब कि रागी प्रसंस्करण के द्वारा हमरे मने स्वास्थ्य में लाभ, स्वास्थ्य के लाभ कैसे कर सकीला, और इकर बारे में जे विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर विशाखा सिंह, भेंट कर ले हैं इसके लाल।
2: किसान साथियों जोहार नमस्कार। किसान साथियों मोटे अनाज की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी का भी आह्वान है कि मोटे अनाज का हम अधिक से अधिक उपयोग करें। और इस मोटे अनाज में जो सबसे अमूल्य है वो है रागी, या जिसे हम लोग मड़ुआ भी कहते हैं। इसमें पौष्टिक अनाज है और इसमें काफ़ी पोषक तत्व हैं और स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा अच्छा ही इसको माना जाता है। तो इस रागी से हम बहुत तरह की खाद्य पदार्थ बना सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं और बहुत सारे छोटा छोटा हम इसके लिए उद्यमिता विकास करके अपना आय भी हम बढ़ा सकते हैं। तो रागी का प्रसंस्करण कैसे करें, कौन कौन सी खाद्य पदार्थें बनाएं, जैसे बिस्कुट लड्डू ये भी बना सकते हैं, और स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर विशाखा सिंह। डॉक्टर विशाखा सिंह जी स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद।
2: विशाखा सिंह जी, रागी हमारे लिए कितना आजकल उपयोगी हो गया है?
3: वैसे तो सभी मोटे अनाज बहुत उपयोगी हैं, पोषण की दृष्टि से सभी में बहुत अच्छा मूल्य है, सबका पोषक मूल्य बहुत अच्छा है अन्य अनाजों के तुलना में, परंतु उसके अंदर भी रागी को ज़्यादा महत्व दिया गया है और झारखंड में तो रागी का प्रोडक्शन ज़्यादा है। और यहाँ जैसे कि कोई भी मोटा अनाज के लिए, उपज के लिए कोई ड्रॉट टॉलरेंस है, ज़्यादा इनपुट की ज़रूरत नहीं होती है, तो उस हिसाब से झारखंड में भी बहुत सारे मोटा अनाज का प्रोडक्शन होता है, रागी उसमें एक इम्पॉर्टेंट है। और रागी का प्रसंस्करण आवश्यक इसलिए है क्योंकि नेचर की तरफ से, प्रकृति की देन है कि रागी के छिलके में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कीड़े मकोड़े से उनको बचाए, क्योंकि उनको रफ होता है, उसको बहुत केयर की ज़रूरत नहीं होती है, तो प्रकृति उसको, उसके बॉडी में ऐसी चीज़ होती है कि उसको बाकी डैमेज नहीं होने दे, इसलिए उनके छिलके में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, उनको एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर बोलते हैं, जिससे कि उसको कोई कीड़ा या कोई फ्लाइज उसको ज़्यादा हार्म नहीं करे और वो इजीली ग्रो कर पाए। इसके लिए जब हम उसको अपनी डाइट में लेते हैं तो हमें प्रसंस्करण करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है वो हमारे लिए भी दिक्कत करता है, मतलब हमें भी कुछ पोषक तत्व तो जो रागी के अंदर में अवेलेबल है लेकिन वो हमारे शरीर को मिलने से रोकता है, तो उसके लिए हमें उसके छिलके को हटाना पड़ता है, या उसको सबसे बेहतर तरीका है कि कोई भी चीज़ बनाने के लिए रागी का हम ज़्यादातर पाउडर बना के ही इस्तेमाल करते हैं किसी भी रूप में अगर करें तो रागी को जब हम खाने में इस्तेमाल करने के पहले उसको ग्रेन को 7 से 8 घंटे तक पानी में भिगा के रखें और उसके बाद उसको सुखाएं, उसको फिर उसके बाद उसका मिलिंग कराएं या पिसाएं, उसको जो भी उत्पाद बनाना है वो बनाएं, लेकिन पहला प्रोसेस है कि उसको 7 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगा के रखें। ये गर्मियों में है, सर्दियों में आप पूरी रात भी भिगा सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, अगर इसको भिगाए बिना, रागी या कोई भी मोटा अनाज को अगर भिगाए बिना हम उपयोग में ला रहे हैं, मतलब कि उस 100% जो उसका पोषक मूल्य है उसका फ़ायदा हमको नहीं मिल पा रहा है। तो पहला प्रसंस्करण तो हमें यही स्टेप हो गया कि हमें पहले उसको भिगा के ही इस्तेमाल करना है, इसका यही पर्पज़ है कि उसका जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो इनएक्टिवेट हो जाता है भिगाने के बाद, उसका बहुत सारी उसकी जो हमें पोषक तत्व मिलने से रोकता है वो भिगाने की वजह से इनएक्टिवेट हो जाता है। फिर अगर हम उसको भूनते हैं या कुछ और बनाते हैं, फ्राई करते हैं, कोई भी रूप में इस्तेमाल करते हैं तो और इनएक्टिवेट हो जाता है, तो इतना ही इनफ है, इस ना करने से हो जाएगा
2: जी। इस प्रसंस्करण के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं मैडम, तो यदि कोई चाहता है, हमारे साथ ही कोई महिला साथी चाहती है कि इसका एक प्रसंस्करण का हम इकाई लगा लें, छोटे स्तर पर लगा लें, उद्योग स्थापित कर लें, तो किन किन चीज़ों की इसमें आवश्यकता हो जाती है, लागत कितना है, ताकि मांग तो बढ़ती जा रही है इसकी, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा है।
3: तो जैसा अगर उनको किन्हीं को लगाना है तो पहले सबसे पहले तो उनके पास ये होना चाहिए कि उनके पास रॉ मटेरियल हो पर्याप्त और वो सही सोर्स से मिले। अगर हमारा जो की कच्चा जो माल है जैसे कि वही अगर हमें सही नहीं होगा तो हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी दिक्कत होगी, और एक वो इंश्योर करना है। दूसरी चीज़ है कि उनको सही ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी किन्हीं को भी, क्योंकि देखिए आता भी है फिर भी ट्रेनिंग अगर रहेगी तो वो जस्टिफाइड रहेगा कि इन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग लिया है और इसलिए वो बिजनेस में जा रहे हैं। तो ट्रेनिंग लेने के लिए बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट का, जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से ले सकते हैं, या फिर फिक्सी करके फूड मिनिस्ट्री का एक पोर्टल है जिसमें मास्टर ट्रेनर्स होते हैं जो मोटे अनाज पे ही ट्रेनिंग देते, बहुत प्रकार की चीज़ों पे ट्रेनिंग देते हैं, और वो हर शहर में मास्टर ट्रेनर होते हैं। तो ऑनलाइन में करा के अगर कोई ट्रेनिंग हो रही है तो वहां भी उस वेन्यू में भी जाके कर सकते हैं। दूसरे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च का जो ICR का है हैदराबाद में, उनका ऑनलाइन ट्रेनिंग हमेशा होता रहता है, तो उनके पोर्टल पे विजिट करने से भी ऑनलाइन में भी जो दीदी लोग कर सकते हैं वो ऑनलाइन से

0: जानकारी हो जाता है, फिर उससे अगर हम मार्केट में प्रोडक्ट लाते हैं तो उसका एक्सेप्टेबिलिटी मीन्स
1: जी अपने घर में भी एक छोटी इकाई लगा सकते हैं
0: जी जी जी,
1: जी कि हाँ। हम हमारी महिलाएं और माताएं और बहनें वो चाहती हैं कि जहां हैं
0: हाँ।
1: वो अपने घर में भी छोटी सी इकाई कम लागत में लगा सकते हैं
0: जी, शुरुआत इसी से कर सकते हैं, घर से शुरुआत करें, घर के लोग पहले खाएं, उसके बाद आसपास में अगर एक्सेप्ट होता है जरूर होगा, उसके बाद फिर मार्केट में आए। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि हम इकट्ठे बहुत सारा उत्पाद नहीं बना के और फेल होने का चांसेस नहीं रहता है। घर से शुरू करें, उसमें घर की चीजें इस्तेमाल, जैसे मिक्सर ग्राइंडर या चक्की पीसने वाली, जो घर की चीजों से बना के और लोग एकदम बेसिक लेवल पे हम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत डिजाइन करने का जरूरत नहीं है, एक साथ बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। इसके लिए स्वयं सहायता समूह या FPO के में भी समूह बना के FPO के लोग भी मिलकर भी कर सकते हैं। और स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए तो बहुत सारी स्कीम्स भी हैं झारखंड गवर्नमेंट की, जो अगर उसमें अगर प्रोसेसिंग में जाना चाहें मड़ुआ का, खासकर मड़ुआ के लिए ही बहुत सारे स्कीम्स हैं, तो उसके थ्रू भी उनको बहुत फायदा मिलता है।
1: मतलब घर में भी आपके हर घरों में मिक्सी होता है, ग्राइंडर होता है, वहाँ भी छोटे स्तर पर आप ये कर सकते हैं,
0: कुछ बहुत अलग चीज
1: नहीं, आसपास के इलाकों में भी इसका आप सप्लाई कर सकते हैं
0: जी। आप कुकर में बिस्किट बना सकते हैं, आप फ्राई कर सकते हैं कढ़ाई में, तो घर की चीजों से भी बना सकते हैं। जब आपका मार्केट थोड़ा पकड़ में आ जाए फिर आप ओवन खरीदिए या कोई आगे की चीजें लीजिए।
1: शुरुआती स्तर पर हम ये काम शुरू कर सकते हैं, यदि हम अचानक सोचेंगे कि बड़े स्तर पर कर लें, पहले थोड़े थोड़े शनि शनि रुपए घर पे ही एक छोटे से पैसे लगाकर कम खर्च पे ही हम ये कार्य शुरू कर सकते हैं। मैडम ये किस मौसम में किस समय इस पर हम ज्यादा ध्यान दें रागी के लिए, कि उस समय हम इस तरह की जो उसके प्रसंस्करण है, चाहे बिस्कुट है चाहे लड्डू है या अन्य खाद्य पदार्थ है, वो हम बना सकते हैं।
0: मौसम में तो जैसे हर मोटे अनाज में हर अनाज का सीजन होता है, लेकिन रागी मतलब हर अनाज का एक प्रकृति है कि वो गर्म करती है ठंडी करती है। तो जैसे हम लोग भी तिल वगैरह खाते हैं तो ठंडी में खाते हैं और गर्मी में सत्तू पीते हैं, तो उसी तरीके से मोटे अनाज में भी ज्वार खाते हैं तो उसको हम ठंडी में खाते हैं और गर्मी में जौ खाते हैं, जौ का सत्तू लेते हैं। लेकिन रागी ऐसी चीज है कि उसको हम 12 महीने खा सकते हैं, वो न्यूट्रल है, उसका तासीर कोई ना गर्म है ना ठंडा है, और पचने में भी बाकी मोटे अनाज की तुलना में ये थोड़ी सॉफ्ट है तो जल्दी पच भी जाती है, तो इसका हम 12 महीने में कर सकते हैं। और अगर घर में इस वक्त करना चाहें तो जो मिलेट मैन ऑफ इंडिया बताते हैं कि आमली के रूप में इसको खा सकते हैं, इसका दो फायदा है, एक तो वो ठंडक देता है आमली जो बनाते हैं, और दूसरी चीज है कि हमारे पेट में कुछ अच्छे माइक्रोब्स होते हैं, कुछ जो हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, हमारे दिमाग को तेज करते हैं, शरीर के सारे चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है उनका रहना शरीर में, तो वो उसको बढ़ाता है। जो फायदा हमें दही खाने से होता है वही फायदा मड़ुआ का आमली खाने से होता है। तो इसको बनाने के लिए जितना भी हम एक कटोरी अगर मड़ुआ ले रहे हैं तो उसका 7 गुना पानी में उसको रात में भिगा दें और पूरी रात भीगा रहे, मिट्टी के बर्तन में हो तो ज़्यादा बेहतर है। सुबह में उसको उसी पानी में उबाल लें और थोड़ा सा उबालने के बाद फिर से ढक के रख दें और उसको अगले शाम को खाएं, मतलब 10 घंटा भी गाएं फिर उबालने के बाद 10 घंटे छोड़ दें और फिर उसको खा लें, या तो सब्जी से खाएं या कुछ चीज़ से, लेकिन वो जो पानी और मड़ुआ डालेंगे उसके में कोई नमक चटनी कुछ नहीं डालना है, वो प्लेन ही उबालें और वो थोड़ा सा मतलब दाल की तरह थोड़ा पानी पानी सा रहेगा, तो उसके साथ अगर हम अचार से खाएं, सब्जी से खाएं, चटनी से खाएं, जो भी, लेकिन ये ठंडक भी देगा और पेट को वो सारे जो दही से जो फायदे होते हैं वो फायदा भी मिलेगा।
1: सरकार की भी बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है रागी प्रसंस्करण से संबंधित, तो कौन कौन सी स्कीम है और कोई व्यक्ति चाहता है कि कृषि विज्ञान केंद्र से भी संपर्क करे तो कैसे करे?
0: कृषि विज्ञान केंद्र में तो अभी मोटा अनाज प्रसंस्करण इकाई स्थापित हो चुका है जो पिछले साल 5 मई को हुआ था, तो अभी बहुत सारी मशीनें हैं प्रसंस्करण से संबंधित, जो जिसका वहां पे एक तो ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं किसान भाई बहन, और दूसरी चीज है कि अगर उनके पास मोटा अनाज है या रागी है तो रागी लेके आ सकते हैं, यहाँ पे मशीनों का इस्तेमाल करके अपना उत्पाद बना के यहाँ पे उनको मार्केट लिंकेज के बारे में भी बताया जाएगा, वो जाके मार्केट में सेल कर सकते हैं हमारी मशीनों यहाँ पे जो कृषि विज्ञान केंद्र में उस मशीनों को इस्तेमाल करके, और वो कुछ चार्जेस होंगे जो मशीन का बेसिक चार्जेस होता है वो देना पड़ेगा। उससे उनको ये सुविधा मिलेगी कि वो खुद इकट्ठे बड़ी मशीन ना खरीदें, वो पहले हमारे यहाँ आके मशीन को इस्तेमाल करके ये जान जाएंगे कि किसको कैसे चलाना है और कितना कैपेसिटी का होना जरूरी है, क्या ध्यान रखने चाहिए। यहाँ पे गाइडेंस भी मिलेगा कि मशीन रन कैसे करना है। तो एक तो वो है, दूसरे गवर्नमेंट कल्टिवेशन के लिए झारखंड गवर्नमेंट मिलेट मिशन प्रोग्राम के अंदर में 1 एकड़ पे 3,000 का प्रोत्साहन

0: मनी एक तरीके से दे रहे हैं, जिसमें से कि मैक्सिमम वो 15,000 दे सकते हैं, मतलब 5 एकड़ अगर किसान लगा रहे हैं मड़ुआ तो उनको 15,000 रुपए का एक तरीके से इंसेंटिव दिया जा रहा है, उनको प्रोत्साहन के लिए दिया जा रहा है। और अगर कोई स्वयं सहायता समूह या FPO के थ्रू उद्यमिता के लिए कोई मतलब उद्योग खोल रहा है छोटे स्तर पे, तो 10 लाख तक का अगर प्रोजेक्ट है तो लगभग 35% तक जो मशीन है उस पर सब्सिडी मिलेगी। और मार्केटिंग के लिए भी सरकार का बहुत अच्छा पहल है कि जो स्कूलों में मिड डे मील होता है या जो राशन बिकता है उसमें भी मड़ुआ से बने हुए उत्पाद जैसे लड्डू वगैरह दिया जा रहा है, तो मिड डे मील में भी अगर स्वयं सहायता समूह से मैं दीदी लोग मिलके और स्कूल में बात करें तो वहाँ पे मिड डे मील में भी लड्डू दिया जाता है, तो उनको गाँव में ही मार्केट भी मिल जाएगा।
1: तो स्वास्थ्य के लिए रागी काफ़ी अच्छा है और रागी को प्रोसेस करके बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं और ये रागी का मांग दिन प्रतिदिन बढ़ता भी जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विशाखा सिंह, बड़ी अच्छी आपने बातचीत की रागी प्रसंस्करण के बारे में आप इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो बहुत नगद जानकारी रहे कि रागी प्रसंस्करण द्वारा स्वास्थ्य में कातरी लाभ लेवल जा सकेला।
3: बहुत नगद जानकारी दे रहे हैं हमरे मन के और हमरे के इकर से बहुत फायदा भी हुई है ना।
2: आई जानकारी हमरे मन के देते रहे हैं डॉक्टर विशाखा सिंह और इनका से बातचीत कर रहे हैं एसके लाल।
3: तो एखन जैसे कि बेरा बाचल है रिंकी बहन, तो चलू हमरे मन एक ठो नागपुरी में कृषि गीत सुन लेवा थी मेघनाथ महतो और संगी मन के गावल।

भाकपा माओवादी के भाई और बहनों, सरकार आपके पुनर्वास के लिए लगातार प्रयासरत है। अतः आपसे आग्रह है कि वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुए सही निर्णय लेकर मुख्यधारा में लौट आइए। भयमुक्त जीवन का आनंद अपने परिवार के साथ लीजिए। साथियों, समय रहते विचार कीजिए और मुख्यधारा में लौट आइए। साथियों, आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जल, जंगल, जमीन की रक्षा मात्र हिंसा से ही हो सकती है? इतने सालों की प्रयास के बाद क्या हमारा आदिवासी समाज सुरक्षित हो पाया? आज सैकड़ों पूर्व माओवादी साथी हिंसा को पीछे छोड़कर समाज के बीच एक अत्यंत गरिमापूर्ण और कुशल जीवन बिता रहे हैं। प्रशासन आपकी सुरक्षा और गोपनीयता की 100% गारंटी देता है। हिंसा और कठिनाइयों का जीवन छोड़े और अपनों के पास लौट आइए। मुख्यधारा में आने के उपरांत आपको पर्याप्त आर्थिक सहायता

0: प्रदान की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको जेल जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी और आपकी सहायता की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको सारी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। स्वरोजगार के लिए भी आपको उचित अवसर प्रदान किए जाएंगे। पुनर्वास हेतु कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 9863475217। नंबर एक बार फिर नोट करें 9863475217।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूँ यार।
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूँ?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम,
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
5: तो एखन हमरे मन गीत सुनत रही जानकी देवी और संगे मनगर गावल।
6: हाँ।
5: और चलू हमरे मन एगो सुनब वार्ता कोठा में। स्वरोजगार हेतु सरकारी सुविधाएं और एकर बारे में हमरे मन के बतावे रूपेश कुमार महतो।

0: पाटिल लोक जिला के स्वरोजगार जिला में जोड़े खातिर सक्षम कौशल विकास कर योजना के शुरुआत करल जाय रहल है। एकरे तहत लोक जिला के बढ़िया से हुनरमंद बना के रोजगार से जोड़ल जायत है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहल है कि ईमानदारी से काम करे वाला जिला के सरकार अपन बाटे ले प्रोत्साहित कर रहल है। एकरे कड़ी में जे भी संस्थान जिला बेस्ट ट्रेनिंग देत है ओकर ट्रेनर जिला के सरकार सिंगापुर कर दौरा में भेज रहल है। वहीं कुशलता पूर्वक ट्रेनिंग लेके बेस कंपनी गिलाई काम प्राप्त करे वाला छवा गिला के 2 लाख रुपया इनाम भी देल जायत है। हामिन कर मुख्यमंत्री ने ई योजना के शुरू होवे से गांव में रहे वाला नवयुवक और नवयुवतियों कर हाथे हुनर दे के रोजगार दिया जाएगा। इससे झारखंड एक लोगे पलायन टा रुकते। मुख्यमंत्री ने कहल है कि जे छुआ मन के एखन 5-7 हजार रुपया टाकर खातिर दोसर राज्य जाय के काम तलाश करे पड़े है ओकर झारखंड के राज्य में काम मिल जाते। एकरे खातिर राज्य सरकारे अपन बाटे ले कारपोरेट कंपनी आर पीयूसी कंपनी अधिकारी गिला कर साथे जल्दी बैठक कर सलाह मशवरा करके एकर जरूरत किला के समझल जाएगा। एकरे अनुसार छुआ मन के प्रशिक्षित करके काम दिल जाएगा और सरकार बाटे ले एखन कृषि ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ केयर आईटी प्लम्बिंग टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी अप्रेल ब्यूटी एंड वेलनेस कैपिटल गुड्स फूड प्रोसेसिंग आयरन एंड स्टील आर कर ट्रेनिंग दिल जाएगी और आगू 5 साल कर भीतर 20 लाख लोग जिला के प्रशिक्षित करके कौशल विकास से जोड़ल जाएगा। राज्य सभी जिला में 95 कौशल प्रशिक्षण केंद्र जिला में 18 से 35 वर्ष के युवक जिला के प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहल है कि हामिंग कर यहाँ कुटीर उद्योग में बेस संभावना है। कुटीर लघु हस्तकरघा तसर लाह के लिए अलग अलग बोर्ड होंगे साथ ही साथ एगो अलग अलग सचिव होंगे। एकरे में एक्सपर्ट भी होते और एकर बाटे ले बनावल उत्पाद जिला के विश्व स्तरीय डिजाइनिंग पैकेजिंग ब्रांडिंग और मार्केटिंग होते। एकरे से झारखंड एकर उत्पादन गिला कर मांग देश और विदेशों में होते और ईटा के जे बनाते ओके बेस दाम मिल सकते और यहाँ टेक्सटाइल कर क्षेत्र रोजगारे बड़ी संभावना है। एकरे खातिर रांची में टेक्सटाइल कर मिल लगावल जाय रहल है। यहाँ कर बच्चा गिला के प्रशिक्षित करल जाते और सरकारे हामिंग कर बजट में उच्च शिक्षा और कौशल विकास बाटे और अधिक राशि टाके खर्चा करते और सिंगापुर कर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कर साथे एगो करार करल जाय रहल है। इस संस्थान में झारखंड कर छवा जिला के प्रशिक्षण देते। हामिंग कर मुख्यमंत्री कहल है कि कौशल विकास के कर लिए महिलाओं जिला कर खातिर अलग से प्रशिक्षण केंद्र कर स्थापना करल जाएगी। दुग्ध तसर लाह मुर्गी पालन समेत अन्य स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत अखिन के प्रशिक्षित करल जाएगा जिससे राज्य महिला जिला भी राज्य विकास एक अपन योगदान देते। कुटीर उद्योग के बढ़ावा दिए ले अलग से एगो सचिव कर नियुक्ति करल जाएगी। महिला युवक और युवतियाँ जिला के समय कर मांग के अनुरूप कुशल और हुनरमंद बनावल जा सकते है। 20 लाख युवा जिला के हुनरमंद बनाए कर योजना हामिन कर मानव संसाधन विकास मंत्री नीरा यादव कहल है कि आगू कर 5 बछरे कर भीतरे 20 लाख युवा अगिला के हुनरमंद बनावे की योजना है। राज्य कर सभी शिक्षण संस्थान गिला में युवा गिला के कौशल विकास कर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यहाँ अपन पसंद कर अनुरूपे प्रशिक्षण प्राप्त करके अपन प्रतिभा का रूपे अपन के विकास करते। हम इनके झारखंड के उग्रवाद और भ्रष्टाचार मुक्त बनाव के लिए अपन हाथे के हुनरमंद बनाव होगा और हाथ के काम प्राप्त है। एकर ले सरकारें कई गो योजना जिला के शुरू करल है। लोग एकरे प्रति जागरूक बने। हम इनकर झारखंड एक सरकार बाटे ले कई प्रकार कर योजना।
1: तो एखन हमरे मन जानकारी करत रही, खोरठा वार्ता सुनत रही, स्वरोजगार हेतु सरकारी सुविधाएं के बारे में, और एक बारे में बताते रहे रुपेश कुमार मातो
2: और इनकी बहिन। और समय हो गया है विदा लेवे के, है ना।
1: हाँ।
2: तो घर ही इशारा करत है कि हमरे मन के अब जैसे चलेक चाहिए,
1: चलेक चाहिए।
2: तो पूरे कार्यक्रम के प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लाल के। कल हमरे मन फिर से भेटा, तब तक ले जोहार
1: जोहार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ये देख कैसे।
5: हैप्पी बर्थडे भाई।
4: दीका,
6: हाँ मेरा फेवरेट कलर
5: हमेशा शॉपिंग।
7: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
8: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
9: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
7: आई नो ना।
9: RBI कहता है,
10: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की पश्चिम बंगाल में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले की निंदा। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हमले को बताया गलत। राज्य में दो सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। महागठबंधन का दावा, दोनों सीटें जीतने के लिए है पर्याप्त संख्या बल। एनडीए ने कहा, पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल करेंगे राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ। झारखंड समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस अभियान में शामिल होने का किया अनुरोध। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में 6 जून तक गर्जन वज्रपात और तेज हवाएं चलने की जताई आशंका, येलो अलर्ट जारी। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में अब से कुछ देर में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आम लोग सरकारी दिशा निर्देशों का जरूर पालन करें।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों को गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेलपन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करने का सुझाव दिया है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पर कल हुए हमले की निंदा की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री सोरेन ने कहा है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हिंसा और हमले के लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस हमले को गलत बताया है।
2: हमला कहीं भी लोकतंत्र में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। मैं मानता हूं कि 15 वर्षों तक वहां की जनता को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काफी परेशान किया, प्रताड़ित किया। गुस्सा निश्चित रूप से होंगी जनता की, लेकिन राज्य सरकार को देखना चाहिए। कानून को हाथ में जनता को नहीं लेनी चाहिए और सरकार निश्चित रूप से देख रही होगी।
0: राज्य में दो सीटों पर होने वाली राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दावा किया है कि महागठबंधन के पास राज्यसभा की दोनों सीटें जीतने के लिए पर्याप्त संख्या बल है।
3: उनके पास कितनी संख्या है? 24 है, तो कैसे 28 देंगे? ये पार्टी के प्रति जो आइडियोलॉजी में जिनको विश्वास है वह पार्टी चुनाव में विधायकों के लिए करती है, तो ये विधायक को भी राज्यसभा चुनाव ये सेंटर का है, आलाकमान का है, आलाकमान ये तय करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ इंडिया गठबंधन की जीत होगी।
0: इधर भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर बावरी ने कहा है कि पार्टी पूरे दमखम के साथ राज्यसभा चुनाव लड़ेगी।
4: आंकड़ा है तो फिर उनको चिंता करने की बात क्या है? अब हमारा संवैधानिक अधिकार है चुनाव लड़ने का, हमारी वैचारिक मतभेद है तो हम चुनाव ही ना लड़ेंगे। हम अपने विचारों के साथ, अपने मुद्दों के साथ, अपने लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में रहेंगे। हमारे लिए 81 मतदाता है और उसमें हमको जीत के लिए 28 सीट चाहिए। हम पूरे आश्वस्त हैं कि हमें 28 जीत के आंकड़े मिलेंगे।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। इससे पहले श्री चौहान ने झारखंड समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस अभियान में उनकी भागीदारी के लिए बात की है। खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा और खूंटी के विधायक राम सूर्या मुंडा ने आज मुरहू स्थित एक आवासीय विद्यालय परिसर में 50 शैया वाले छात्रावास निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सांसद ने बताया कि कल्याण विभाग की ओर से लगभग 2,25,00,000 रुपए की राशि से इस छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज परीक्षा केंद्र पर आज बीएड, एमएड और बीपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान कई अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि दस्तावेज जांच में देरी के कारण वे समय पर परीक्षा कक्ष तक नहीं पहुंच सके और उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया गया। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग से सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्ष देश के विकास और आत्मनिर्भरता के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत में आज सांसद ने कहा कि विभिन्न केंद्रीय योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है।
5: अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा हुआ उसकी सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये 12 साल बिताए हैं और 12 साल में जो रिफॉर्म्स है, 13 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण, 54 करोड़ लोगों को जो है आयुष्मान भारत में 5,00,000 का इलाज हो रहा है, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, 5 करोड़ से ज्यादा घर बन गए हैं और 8 करोड़ से ज्यादा गैस का सिलेंडर मिला है, तो सभी फ्रंट्स पे ये देश प्रगति कर रहा है।
0: विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर कुमला सदर अस्पताल परिसर में आज जिले के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने तंबाकू नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जन जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार करने वाले रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पलामू जिले से पुलिस ने एक आपराधिक गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि ये अपराधी एक निजी कंपनी के कैंप पर गोलीबारी करने की योजना बना रहे थे।
6: SDPO हुसैनाबाद के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया और पुलिस के द्वारा उनको पकड़ा गया, तो उनके पास से एक बैग में 2 9mm की पिस्टल रिकवर हुई थी और इसके अलावा कुछ गोली उनके पास से बरामद हुई। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि उनके द्वारा राहुल सिंह के गैंग के लिए रंगदारी वसूलने का काम किया जा रहा था, उनके द्वारा यहां पे किसी घटना को अंजाम देने के लिए ये सब लोग मिलकर आए हुए थे। इसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
0: बोकारो जिले में 25 वर्षीय एक महिला की कथित हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई ने दावा किया है कि महिला 4 महीने की गर्भवती थी और उसकी हत्या की गई है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में 6 जून तक गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने इस दौरान आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। विभाग के अनुसार कल राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों को छोड़कर अधिकतर क्षेत्रों में गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। वहीं 2, 3 और 4 जून को उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी जिलों को छोड़कर राज्य के शेष भागों में गरज के साथ बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। जामताड़ा के गांधी मैदान में चल रहे 20वीं राज्य स्तरीय 3 दिवसीय बालिका खो खो प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में आज रांची की टीम ने प्रतियोगिता जीत ली। इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों की 18 टीमों ने भाग लिया था। आईपीएल गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। यह मैच अब से कुछ देर बाद शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की पश्चिम बंगाल में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले की निंदा, दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हमले को बताया गलत। राज्य में 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। महागठबंधन का दावा, दोनों सीटें जीतने के लिए हैं पर्याप्त संख्या बल। एनडीए ने कहा पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल करेंगे राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ। झारखंड समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस अभियान में शामिल होने का किया अनुरोध। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में 6 जून तक गर्जन वज्रपात और तेज हवाएं चलने की जताई आशंका, येलो अलर्ट जारी। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में अब से कुछ देर में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: तीनों कॉलेज में
8: डोंट वरी
7: फीस तो देखो
9: क्या हाल है, क्या हुआ?
8: फीस की टेंशन,
9: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
10: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4,00,000 रुपए तक, नो कोलैटरल।
9: वो कहाँ है?
10: मिठाई।
11: आरबीआई कहता है
12: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: का लोक सेवा प्रसारक।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम जिले में आजकल।
2: जिले में आजकल प्रस्तुत है। जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चतरा संवाददाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आकांक्षी जिला चतरा में केंद्र सरकार के सहयोग से किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा करते हुए चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि
2: घंटागंज में बाईपास सैंक्शन हो गया, चतरा बाईपास निर्माण हो रहा है, चतरा का रेल लाइन का गजट हो गया, ये भारत सरकार की लाइन ही तो क्या है। दूसरी बात, ये बहुत जगह ऐसे प्रखंड थे जहां आपको पोस्ट ऑफिस नहीं था, कुंदा में पोस्ट ऑफिस नहीं था, लावलंग में पोस्ट ऑफिस नहीं था, राजपुर में पोस्ट ऑफिस नहीं था, कि दौर में इन सारे पोस्ट ऑफिस जो सरकार से रजिस्टर्ड था 25 वर्षों से थे सारे सैंक्शन हो गए। रेल लाइन कभी हम लोग गया चढ़ने के लिए जाते थे राजधानी, आज लातेहार में हम चढ़ रहे हैं। 32 ट्रेनें राजधानी केवल चतरा लोकसभा, केवल हंटरगंज या चतरा ही नहीं है, 5 लोकसभा है, सभी लोकसभा के लिए काम हो रहा है। चतरा से डाल्टनगंज की दूरी 60 किलोमीटर घट गया, एक रोड का शिलान्यास होने जा रहा है, प्रशासनिक हो चुका है उसका, यूना टेंडर होने जा रहा है, मैं खुद लगाऊ चंदवा फ्लाई ओवर के लिए।
1: चतरा जिले के 35वें स्थापना दिवस के मौके पर 851 झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। मौके पर जिले के उपायुक्त रवि आनंद ने कहा कि जिला प्रशासन जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रहा है।
3: सबसे पहले तो मैं चतरा जिले के 35वें स्थापना दिवस पर चतरा जिले वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और झारखंड अलग राज्य गठन हेतु किए गए आंदोलन में जो आंदोलनकारी थे या उनके आश्रित हैं उनको आज प्रमाण पत्र शॉल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया था। पूरे जिले अंतर्गत जो 122 आंदोलनकारी थे सभी प्रखंडों से हम लोगों ने उनको बुलाया है आज यहाँ पे जिला स्तर पे और 122 आंदोलनकारी को जो है सम्मानित किया गया जिला स्तर पहले स्तर। इसके साथ ही साथ जो संबंधित प्रखंड है प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने संबंधित प्रखंडों में जो प्रखंड के आंदोलनकारी हैं उनको वहीं पे सम्मानित किया जा रहा है। जिले के अंदर जितने भी हमारे 121 आंदोलनकारी चिन्हित किए गए थे उनको आज प्रमाण पत्र मोमेंटो एवं शॉल के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है।
1: भाजपा के 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर चतरा पहुंची केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्रालय के द्वारा महिलाओं और बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा करते हुए बताया कि
4: मिशन सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य जो साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि 6 साल तक के बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट लगभग 85% हो जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आंगनबाड़ी केंद्र की जो हमारी दीदियां हैं उनको प्रशिक्षित कर उनको पोषण ट्रैकर के माध्यम से छोटे छोटे रील्स बनाकर कि वो गर्भवती माताओं को भी गर्भवती महिलाओं को भी बताएं धात्री माताओं को भी बताएं और जो बच्चे 3 से 6 साल के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में आते हैं उनको पोषण के साथ साथ उन्हें उनका बौद्धिक विकास कैसे हो उस दिशा में भी वो काम करे, तो छोटे वीडियो के माध्यम से उनको समय समय पर प्रशिक्षण देकर कि उनका बेहतर देखरेख कर सके इस दिशा में भारत सरकार कार्य कर रही है।
1: 30 मई को व्यवहार न्यायालय चतरा में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें 238 मामलों का निपटारा किया गया, वहीं 31 लाख से अधिक के सरकारी राजस्व की प्राप्ति भी हुई। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा।
0: अभी आप सुन रहे थे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिले में आजकल। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शतदल। प्रस्तुति स्वर प्रणव कुमार की, प्रस्तुति प्रशांत गौरव का।

0: शतदल के आज के इस आयोजन में झारखंड के दो साहित्यकार अभिषेक अब्र और प्रतिभा सिंह को हम सुनेंगे। अभिषेक अब्र जहां अपनी कविताओं के माध्यम से समाज सरोकार की विडंबनाओं पर प्रहार करेंगे, वहीं प्रतिभा सिंह कहानी के माध्यम से नारी के स्वभाव, जीवन और उसके संघर्ष को सामने रखेंगी। मित्रों, आज के समय को साहित्य का स्वर्णिम समय कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें अब हर क्षेत्र के लोग दस्तक दे रहे हैं और अपने अनुभव के विस्तार से इसे संपृक्त कर रहे हैं। जीवन की कठिनाइयां, जीने की नैसर्गिक शर्तें, बाजार और पूंजी का दबाव हर क्षेत्र के लोगों पर समान रूप से प्रभाव डाल रहे हैं। कोई इन्हीं में उम्र भर के लिए खप जाता है तो कोई इस संकरी गली से निकल अपने लिए सृजनात्मकता का आकाश गढ़ लेता है। अभिषेक अब्र पेशे से चिकित्सक हैं, लेकिन इनकी सृजनात्मक ऊर्जा मरीजों के जख्म पर मरहम लगाने के साथ व्यवस्था से पीड़ित प्रताड़ित लोगों के साथ भी साहित्य के माध्यम से खड़ी होती है। यही कारण है कि इत्र की शीशी के साथ जूही का संवाद कराते हुए रहीम के दोहे रहीमन देख बरेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार की याद दिलाते हैं। नारी के आंचल को प्रतीक रूप में लेकर उसकी हर भूमिका और समस्या को सामने ले आते हैं और कह उठते हैं, बहुत कर लिया कैंडल मार्च और बड़े गुहार लगाए, आग लगा देंगे अब के हम उरा जो उसका आंचल। इसके साथ ही जीवन जगत की अन्य विचित्रताओं और विडंबनाओं पर भी जब इनकी पैनी नजर पड़ती है तो वे काव्य रूप में अभिव्यक्त हो जाती हैं। तो आइए सुनते हैं अभिषेक अब्र की आवाज में ही उनकी कुछ कविताएं।
1: इत्र की शीशी। जमा कूड़े में फेंकी एक खाली इत्र की शीशी देख, क्यारी में खिली जूही इतराई, मारा ताना उससे बतियाई, बोली सुन ओ इत्र की शीशी, पड़ी हुई है कैसे ऐसी, गंधों वाली गली में तेरा नाम बड़ा था, एक समय था जबकि तेरा दाम बड़ा था, कृत्रिम खुशबू पे भी तो गुमान बड़ा था, नाक चढ़ी रहती थी खुद पे मान बड़ा था, हुआ आज क्या खाली हो गई, चीज फेंकने वाली हो गई, बागों से तो निकल चली थी, बाजारों में पहुंच सजी थी, कीमत हरे गुलाबी थे पर कीर्ति आज तेरी काली हो गई, तू बिकाऊ है तू बनावटी, खुशबुएं तेरी रही मिलावटी, तुझसे ही बदनाम हो कलियां, संगत में बर्बाद हैं सखियां, तू समाज का अभिशाप है, तुझ पे बाग को पश्चाताप है, मुझे देख मैं पाकी फूलती, रोज ओस संग ताजी खिलती, बागों की शोभा में बढ़ाती, प्राकृतिक सुरभि फैलाती, मैं कुलीन हूं बाग का नाज, मैं प्रकृति और प्रेम का ताज, मैं तो शुद्ध हूं मैं ही दैविक, मैं अनमोल हूं मैं ही सात्विक, मैं सौंदर्य हूं मैं श्रृंगार, पुरस्कार मैं उपहार, मैं अभिनंदन मैं ही अलविदा, देखो तो मेरी शान है जुदा। इतना सुनकर इत्र की शीशी ने मुंह खोला, सदियों ताने सुनती आई, आज जा बोला सुन ओ जूही की डली इतराई, तू तो अब भी बाजना आई, गली के कोने में खुशबू बाजार जवां है, तभी बाग की कलियों

से अनभिज्ञ का यूं अपमान न कर। तुझे ज्ञान नहीं कि किसकी क्या है कहानी, तू तो खुद की नियति से अभी है अनजानी। तू न समझ एक तेरा ही अस्तित्व खरा है, इस समाज में मेरा भी महत्व बड़ा है, इस विधान का मैं भी एक अभिन्न अंग हूं। मुझे समझ मैं गंध ही का एक भिन्न ढंग हूं, मुझे बूझ संतुलित समाज की एक सेविका, गंध वाली मिट्टी बिन बने न बुत देवी का, बाग से अलग हुई पर मिट्टी का हिस्सा हूं, त्याग दर्द मजबूरी का अनसुना किस्सा हूं। कितनों की खुशबू की प्यास बुझाती हूं मैं, बेबाग हुए को गुल की आस जगाती हूं मैं, गर्द लिबास से लिपट गिला बिन जाती हूं मैं, इस्तेमाल हो कूड़े में फेंकी जाती हूं मैं, खुदी मिटाकर दूजों को अपनाती हूं मैं, फिर भी किसी के ध्यान कभी नहीं आती हूं मैं, फिर भी किसी के ध्यान कभी नहीं आती हूं मैं। आखिर कब तक, कब तक, आखिर कब तक रोक लोगे नद के प्रवाह को, और कब तक छेंक लोगे सूर्य के दाह को, चंदन को घिसते हो, सुगंध और भी फूटता है, हिना को कुचलो ना, रंग और ही उठता है। अरे नद के सीने से बहने की जिद लूट लोगे, हाँ जितनी मेड़ बंदी पाषाणों की बनेगी, धार उतनी ही पैनी होती जाएगी, और सतत हट से उन्हें काटता छीलता धकेलता हुआ वह इस दूल्हे पृथ्वी का सेहरा बनकर झर झर करेगा ही। फिर अरे सूरज के तन से तपने का संकल्प चुरा सकोगे भला, जितने शामियाने मेघों के तनेंगे रोष तो उतना ही जमा होता जाएगा, और अंततः उस प्रचंड अनल के ताप से गलते पिघलते बादलों के बिलाते ही वह अक्षत अक्षय व अक्षुब्ध सप्ताश्व सवार बन उस अनंत मंच पर आह्वानित होगा ही। तब तो ठीक, आज रोको रोको और प्रवाह, छेको छेक लो ना दाह, चंदन तुम घिसो घिसो, मेहंदी को खूब पीसो, किंतु कल तो सौरभ रंग पीयूष और तेज की चढ़ाई से लज्जित पराजित तुम्हें भी अभिनंदन कतार में खड़े होना है, और हाथ मलना है अपने हास्यास्पद कृत्य का, संग स्वागत भी करना है एक विशुद्ध प्रबुद्ध व आच्छादित सत्य का। शहर में बाघ, मेरे शहर में एक बाघ घुस आया है जो दिखाई नहीं देता, बस एक दहशत बन घूम रहा है, कहीं भी कभी भी किसी को भी पकड़कर अपना ग्रास बना लेता है। उसके डर से हमें अपने घरों में छुप कर रहना पड़ता है। उस आदमखोर को मुंह चिढ़ाकर शायद हम आदमियों ने ही बुलाया है उसके अपने जंगल से इंसानों की बस्ती में शिकार करने के लिए। सुना है उसके पीछे पीछे हिरणें भी निकल आई हैं, सड़कों पे निडर टहलती पाई गई हैं, और हमारे घर में रहने से गौरैया हारिल पंडुक मैना भी डालों पे चहचहाने लगी हैं। हवा धूप पानी मिट्टी आसमान सबका मिजाज अलग है, जबकि मौत मंडरा रही है चारों ओर और मनहूसियत नाच रही है। बाघ की दहाड़ इस बार घोर सन्नाटा पसार रही है और रह रह कर हमें अपनी औकात बता रही है, दिखा रही है कि जंगल से छेड़छाड़ का हश्र क्या होता है। चेताया था जंगल ने कई बार, बार बार सावधान किया था, मत करो खिलवाड़ मत छेड़ो मुझे, मगर हम नहीं चेते। और अब जंगल बदहवास है, ये बाघ अभी घूमेगा, अभी और बाघ निकलेंगे। प्रकृति खुद को विनियमित करती है समय समय पर, और यह एहसास दिलाती है कि तुझसे मैं नहीं मुझसे तू है। उड़ा जो उसका आंचल, भीनी हवा का झोंका आया उड़ा जो उसका आंचल, मदहोशी में हमको लाया उड़ा जो उसका आंचल, भीगे बालों की फुहार कर जाती है खुशहाल सुबह, तरो ताजगी में हम जागे उड़ा जो उसका आंचल, दस्त की धूप में पस्त हुए जब माँ की गोद में लौटे, दस्त की धूप में पस्त हुए जब माँ की गोद में लौटे, शीतलता की छांव मिली थी उड़ा जो उसका आंचल,
लड़ते और झगड़ते हैं, पर खैर सदा

0: ही मनाती, लड़ते और झगड़ते हैं पर खैर सदा ही मनाती, भाई पे आती आँच बुझा दे उड़ा जो उसका आंचल, लाड़ प्यार से गोद में पलती उसकी रुंझुन बिटिया, रोएगा बाबुल विदाई कर उड़ा जो उसका आंचल, लहलहाते खेत बहती संस्कृति और सौर्य धारा, लहराता है तिरंगा जैसे उड़ा हो उसका आंचल। बहुत कर लिया कैंडल मार्च और बड़े गुहार लगाए, बहुत कर लिया कैंडल मार्च और बड़े गुहार लगाए, आग लगा देंगे अब के हम उड़ा जो उसका आंचल। इज्जत और मोहब्बत की चाहत वो केवल रखती, इज्जत और मोहब्बत की चाहत वो केवल रखती, बन जाए फिरदौस ये जमी उड़ा जो उसका आंचल।
1: साथियों, समय के प्रवाह के साथ प्रकृति, इंसान, सभी की स्थितियां बदलती रहती हैं। स्त्री का जीवन बदलाव की रेखा को अमिट पहचान देता है। अकिंचन धन की इच्छा करता है, संपन्न लोग शांति की, कहीं कुछ पूर्ण नहीं। साहित्य से दर्शन तक की ऐसी कई यात्राएं लेखिका प्रतिभा सिंह अपनी रचनाओं के माध्यम से कराती हैं। चट्टान से टकराने वाली लड़की को परिस्थिति से संतुलन स्थापित करने के लिए जब नदी की धार में बदलती हुई ये देखती हैं तो बरबस कह उठती हैं, शादी के गठबंधन में ऐसी क्या बात है कि चुलबुली छुई मुई लड़कियां एक गांठ हो जाती हैं। बहुत मजबूत गांठ जो अंदर बाहर हर तरफ से सख्त होती हैं। सहन शक्ति तो लड़कियों को ईश्वर द्वारा प्रदत्त अद्भुत देन है। तभी तो शास्त्रों में धर्म कर्म के लिए स्त्रियों को आगे कर दिया गया है। शास्त्रों के पंडित भली भांति जानते थे कि पुरुष न सीता जैसी अग्नि परीक्षा दे सकता है, न अहिल्या की भांति सदियों पत्थर बनकर रह सकता है। गृहस्थ जीवन का सामर्थ्य केवल स्त्रियों में ही है, यह देखते हुए औरतों के लिए कड़े नियम कानून बना दिए गए ताकि वे फंसी रहें इसी में। तभी तो बिंदास जीने वाली लड़कियां मर्यादाओं को समेटते हुए रिश्तों के तार में उलझती चली जाती हैं। फिर भी इनका जीवन जैसे अग्नि परीक्षा है। प्रतिभा सिंह की कहानी नारी विमर्श के ऐसे कई संदर्भों को समेटती हुई आगे बढ़ती है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी इनकी एक कहानी, वापसी।
2: घरघोर अंधेरे के बाद दुधिया उजियारे से आंखें चकमका जाती हैं। थोड़ा समय लगता है आंखों को सहज होने में। बरसों बाद जब रीत का फोन आया तो मेरा मन पुरानी धुंधली तस्वीरों को साफ करने का यत्न करने लगा। ज्यादा नहीं, बस एक साल पहले की बात है, उसने मुझे अचानक फोन किया। मैं अचंभित हो गई। इतने दिनों बाद उसे मेरी याद कैसे आ गई? इतना आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तेरा फोन बहुत मुश्किल से मिला है, कैसी है तू यार? रीत की आवाज सुनकर मुझे झट उसका चेहरा, उसके साथ बिताए दिन चलचित्र की भांति आंखों के सामने तारने लगे। लगभग 20 साल पहले की यादें ताजा हो आई। हम लोग थे तो रिश्तेदार, पर हमारी दोस्ती का तार कुछ ज्यादा मजबूत था। साथ कॉलेज जाना, साथ बाजार जाना, पसंद भी लगभग एक जैसी थी हमारी। हम दोनों के परिवारों के बीच अच्छा सामंजस्य होने के बावजूद समय के कालचक्र में रिश्तों का पहिया आपस में तालमेल नहीं रख पाया। नतीजा यह हुआ कि कब मेरी शादी हुई और कब उसकी विदाई, हम दोनों को मतलब ही नहीं रहा। रीत से मिलने की अपनी उत्कट आकांक्षा को किसी से नहीं कह पाई। एक उम्मीद का पतवार लिए मैं हरदम तैयार रहती कि शायद कभी किनारा मिले और हम दोनों मिल जाएं। ओह रीत, कितने दिन हो गए तुझसे मिले। मैं तो हमेशा अपने पति से तेरे बारे में बातें किया करती थी। मुझे पता चला तेरे पति बहुत बड़े अधिकारी हैं, तू तो बड़े ठाट से रहती होगी। मेरे कहने पर रीत ने हामी भर दी। अच्छा छोड़, तू बता तेरे पति क्या करते हैं? वो तो बैंक में है, दो बच्चे हैं। इसी के इर्द गिर्द मेरी जिंदगी एक वृत्त में चक्कर काट रही है। रीत भी बहुत कुछ बातें बताने लगी। अब बातें लगभग रोज हो रही थी। हमारी बातों से लग रहा था जैसे उसने चहकना छोड़ दिया है। उसकी हर बात में निरसता झलकती थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, बस फिर क्या था, वह शुरू हो गई अपने बदलाव में छिपे कारण के बीज को दिखाने के लिए मुझे।

ले गई उन कंदराओं में जहां जहां से उसकी जड़ें बेतरतीब बढ़ती चली जा रही थी। उससे निकले वृक्ष में ना तो वह हरापन था, ना ही मीठे फल और ना ही पक्षियों को आश्रय देने वाले घोंसले। रंगहीन बेजान से थे बिल्कुल। वह अपने अंदर की आग बातों के माध्यम से निकालने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरा ही इंतजार था। बरसों से वह अंदर ही अंदर जल रही थी, पर आज आग की लप से जलने की बू मुझे भी आश्वस्त कर रही थी। बहुत सारी कहानी रोते हुए बताने लगी। अपने तथाकथित संबंधों पर से सारे नकाब हटाती चली गई जो बाहरी तामझाम के भीतर उसके खोखलेपन की ओर इशारा कर रही थी। ऐशो आराम ठाट बाट अब जैसे उसे काटने को तत्पर हूँ। रीत के गोरे रंग व आकर्षक चेहरे ने तो कॉलेज में कितने लड़कों को दीवाना बना रखा था। अंदाज और आवाज में भी वो औरों से अलग ही थी। घर बाहर हर कार्य के साथ पढ़ाई में भी अव्वल, अर्थात ईश्वर ने उसे सर्वगुण संपन्न बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं उसकी खास सहेली होने के कारण कुछ न कुछ मैं उसे सीखा करती। भाई बहनों में सबसे छोटी होने के बावजूद उसके मम्मी पापा बिना उसकी सलाह के कोई काम न करते। वह अपने घर की केंद्र बिंदु थी, घर की रौनक थी वह। समय से पहले शादी एक मजबूरी थी। कारण था उसके पापा का रिटायरमेंट। बहुत धूमधाम से उसकी शादी हुई थी, पर पहली ही रात पति के स्वभाव ने उसे विचलित कर दिया था। लगा जैसे ताश के पत्तों की तरह उसके सपने ढककर अपनी कब्र खोज रहे हों। पति का उच्चाधिकारी होना और सोच छोटा होना उसे अचंभित कर रहा था। बात बात पर तंज कसना, पुराने मित्रों से बात करने पर बदचलन होने का प्रमाण पत्र देना आदि पतिदेव की आदत में शुमार था। उसका फोन पर किसी से बात करना भी पति के मन में संदेह उत्पन्न करता था। यही वजह थी कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी सोशल मीडिया के तौर तरीके से दो चार नहीं हो पाई थी। अपने पति को खुश रखने का भरपूर प्रयास करती। कभी कभी तो वह एक आदर्श पति जैसा व्यवहार करता। रित को आश्चर्य होता, यह वही है, आशंकित होती, कहीं यह उसकी कोई चाल तो नहीं। साथ में खाना, घूमना, बाजार जाना और महंगे कपड़े जेवरों पर पैसे खर्च करने पर उसे जरा भी नहीं सोचना। उसका बदला स्वभाव देखकर वह भी आंतरिक उथल पुथल को जज्ब कर खुश रहने लगती। यह खुशी उसे ज्यादा दिन नसीब नहीं होती। सुंदर दिखने वाला चेहरा अचानक रौद्र रूप धारण कर लेता, जैसे सर पर सिंह निकल आए हों और उसकी नुकीली सिंह से रीत लहूलुहान हो जाती। शायद राक्षसों में संवेदना स्पंदित होती हूँ, पर उसमें कतई नहीं। ठंड के दिनों में भी वह रात में रीत को फ्लैट से बाहर कर देता और वह बेपरवाह अपने कमरे में मनपसंद गाना सुनता, जैसे सब कुछ सामान्य हो। वह फ्लैट के लोगों से खुद को बचाते हुए या पूछने पर ज़्यादा खा लेने पर टहलने का बहाना करती। समय अंतराल के बाद फिर खुशी फिर दुख, रीत अब इसकी आदि हो गई थी। मायके में बिताए हसीन अतीत को याद कर उसकी आंखें डबडबा जाती, लेकिन मजाल है कि कभी अपने मायके वालों के सामने आंसुओं को उड़ेल दे। इतनी शक्ति आती कहाँ से है, उससे आश्चर्य होता है। शादी के गठबंधन में ऐसी क्या बात है कि चुलबुली छुई मुई लड़कियां एक गांठ हो जाती हैं। बहुत मजबूत गांठ जो अंदर बाहर हर तरफ से सख्त होती हैं। सहन शक्ति तो लड़कियों को ईश्वर द्वारा प्रदत्त अद्भुत देन है। तभी तो शास्त्रों में धर्म कर्म के लिए स्त्रियों को आगे कर दिया गया है। गृहस्थ जीवन का सामर्थ्य भी केवल स्त्रियों में ही है। तभी तो बिंदास जीने वाली लड़कियां मर्यादाओं को समेटते हुए रिश्तों के तार में उलझती चली जाती हैं। फिर भी इनका जीवन जैसे अग्नि परीक्षा हो। रीत परीक्षा ही तो दे रही थी दोहरा किरदार निभाने की। सफल भी हो रही थी, पर कब तक। एक बात तो हद ही हो गई, ऑफिसर्स की पार्टी में रीत की तारीफ कुछ अधिकारियों ने कर दी। यह बात उसके पति को फूटी आंख नहीं सुहाई। घर आकर उसने उसकी सुंदरता को कोसना शुरू कर दिया। इसका असर यह हुआ कि रीत दिन प्रतिदिन शारीरिक रूप से कमजोर होती चली गई। जीवन उसे नीरस लगने लगा, खिलखिलाता चेहरा मलिन पड़ने लगा। उसने अंधेरों से दोस्ती कर ली, सभी से बातें करना भी छोड़ दिया। सुबह शाम काम करने आती बाई सोमा से भी कुछ नहीं बात करती, बिल्कुल जड़ हो गई थी। यह सब देख उसकी बाई सोमा ने अपनी मालकिन को समझाया और कहा, तूफान में उड़कर अपनी पहचान खो देने का नाम जीवन नहीं, बल्कि चट्टान की तरह डटकर सामना करने का नाम जीवन है। दीदी, हम स्त्रियों का जीवन तो कुछ ऐसा ही है, हमारा मर्द भी कुछ ऐसा ही है। छोड़ देने की बात की
तो अब रस्ते पर है। सोमा के मुख से निकली इन बड़ी बड़ी बातों ने रीत अचंभित होती और मैंने भी कुछ सकारात्मक उदाहरणों से उसे समझाने की कोशिश की। बीच बीच में पहले

0: वाली विभाग निडर रीत को जगाने की कोशिश करती। समय के प्रवाह के साथ प्रकृति, इंसान, सभी की स्थितियां बदलती रहती हैं। अकिंचन धन की इच्छा करते हैं, संपन्न लोग शांति की, कहीं कुछ पुण्य नहीं। हर बार मुझे उसका हंसता चेहरा याद आता। ना जाने कितनी बार रीत ने मेरी मदद की कॉलेज जाते समय, उन लफंगों को जवाब देकर जो मेरे बेडौल शरीर को देख तंज कसते। हर वक्त तैयार रहती अन्याय के विरोध में। यहाँ तक कि अपनी माँ चाची को घर के पुरुषों की जी हुजूरी करते देख गुस्सा हो जाती। नए ख्यालात की लड़की खुद को अंधेरे में समेट ले और खुद ही अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ले, यह कैसे संभव है। मैं इसी उधेड़पुन में लगी रहती। काफी दिन हो गए रीत का कोई फोन नहीं आया। मैं चिंतित थी, तभी फोन की घंटी गनगनाई। रीत की थी। उसकी आवाज में अजीब सी खनक सुनाई पड़ रही थी। वह बिंदास बातें कर रही थी। मुझे अच्छा लग रहा था। उसमें मैं पहले से ज्यादा दृढ़ता और आत्मविश्वास महसूस कर रही थी। बहुत खुश थी। उसने बताया कि अब वह पति को उसी के अंदाज में जवाब देती है। अपने भीतर पल रहे डर के कबूतर को उसने उड़ा दिया है। चहकते हुए कहा, धन्यवाद मेरी दोस्त, तुमने मुझसे मेरा परिचय कराया। मैं तो अपना अस्तित्व ही भूल गई थी, तुमने मुझे जीना सिखाया। तुझसे जल्द मिलती हूँ। व्हाट्सएप पर उसने मुझे मैसेज के साथ अपनी सुंदर सी मुस्कुराती हुई तस्वीर भेजी और मैं तस्वीर देख विमुक्त होकर देर तक मुस्कुराती रही।
1: इसी के साथ साप्ताहिक कार्यक्रम शतदल का आज का यह आयोजन संपन्न होता है। आपको आज का यह आयोजन कैसा लगा, हमें ईमेल के जरिए जरूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है bolorachi@gmail.com। ईमेल आईडी एक बार पुनः नोट कर लें, bolorachi@gmail.com। इस कार्यक्रम का संचालन किया प्रणव कुमार ने और प्रस्तुति प्रशांत गौरव की।

अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक पत्रिका शतदल, प्रस्तुति थी प्रशांत गौरव की। आइए अब सुनते हैं संताली समाचार पत्रिका।

प्रधान मंत्री दो मन की बात रे रांची रे हुए बाबू तेरो खेलो डिलिस्टिंग इदी कते राजनीति रे जहां चितान जूरे आदिवासी को अस्तित्व बचा दो साहिबगंज खून आतंकी मजदूर सांजोना अकानी साक्षी दिया को पाकुर खून कुमरी इदी कते या गुठा को सुने का कुरियर को साक्षी को आर संताल सांते आयमा टोखा दे दा दराय ते लोलो को मेना 19 जून

0: Okay. Gurinder Veer Singh ar Animesh Kujur sao kathay tulu esar ha ke kina ardil dare hoy ema kina
1: an char alag alag event mein char national record tute Gurinder Veer Singh Vishal TK Tejaswini Shankar Dev Meena aur Kuldeep Kumar in saathiyon ne alag alag category mein naye record banaye. मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं. साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़. महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा. जिन 2 एथलीट्स ने ये कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर.
0: मन की बात रे तेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयमा सिखना तना जीवन यात्रा बाबते चर्चा किया. उनी दो केरलम रिया स्विमिंग क्लब रिया कथा तुलु लई किदाय जे सेवा लगी साधन जरूरी बांग कना मोने रे साना तहन जरूरी कना. श्री मोदी दो दिसम रिन आयमा होळ को कहनी लई तुलु जहाई गे निजेरा कुरुमुटु ते जहाना कना उत्तर प्रदेश रिया मनोरमा गाड़ा रिया पुनर जीवन अभियान गंगा रे डॉल्फिन संरक्षण रिया और चलाक का नवाचारी समुदाय अयुर बाबत कोई लई के आ. उनी दो सेवा पर्यावरण संरक्षण विज्ञान संस्कृति और खेल बाबत ते भारत लहा रिया कमी कोई सदर के आ.
1: जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात वहां क्लास नदी में लगती हो. साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है. केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं. अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं. साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है. इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है. कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी. उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया. उन्होंने सोचा अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती. बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान.
0: पोनोत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वा मन की बात सानाम होड़ को आजम किया. अगोरोबान कथा कना जी सानाम होरना कथा को सराह के तया पीएम मासिक मन की बात आयमा जन आंदोलन को वाहक बिनाव कना भाजपा प्रदेश कार्यालय रे हो तेहें आदित्य प्रसाद साहू और बाबूलाल मारंडी साथे आयमा नेता को नेल किया और को आजम किया. नई दिल्ली रे 24 मई हेलो जनजाति संस्कृति समारोह हुए ना नुवारी झारखंड साथे गोटा दिसम खोन 1.5 लाख खोन बढ़ती जनजाति सांतारिन होड़ को सेलेट लेना. नुवारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये मेन की आजे सरकार दो सानाम जनजाति सांता समुदाय को समान नागरिक संहिता रिया दायरे खोन बाहरे दोहो रिया ए प्रावधान करा नुवारी जोश करना अधिकार को बचा दोहोय. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दा जारा जायगा अतिक्रमण इदी काते केटेज ए नेलोक कना. 29 मई हिलो रांची रे शहरी विकास और आवास विभाग रिया समीक्षात्मक दुपड़ूप रे लई की आय जे शहर रिया गड्ढा आहार डेम नाला और दा एटा दा जायगा कुरे झारखंड रिया जीवन डाहर कना और नवारे अतिक्रमण दो एकाल ते हों बांग सहा आ. मुख्यमंत्री लय अकाद को आए जे सानाम कमिया को नवा चेतान भगी नजर कोई दो होयमा. श्री सेरोन दो शहरी विकास और नागरी सुरक्षा चेतन जूरे एम ए आ. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अयुर ते 27 मई हेलो हुएन राज्य मंत्रिमंडल दुपड़ूब रे 39 महोतान प्रस्ताव को रे मंजूरी एमेना. कैबिनेट फैसला को रिया बाबत कथा लई तुली विभागीय सचिव वंदना ददेल लई किदाय जे मंत्री परिषद दो पोनत सरकार रिन कमिया को महंगाई भत्ते रे 12% बढ़ती रिया ए ठौक किया साथे आयमा प्रस्ताव को रे हो मंजूरी ए लगाव किया.

अभी आप सुन रहे थे संताली समाचार पत्रिका। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, वेस्ट से वेल्थ यानी कचरे से कंचन बनाने के बारे में हम सबने देखा भी है, सुना भी है और हम भी औरों को बताते रहते हैं। कुछ उसी प्रकार से वेस्ट को वैल्यू में बदलना का भी काम किया जा रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण केरल के कोच्चि के सेंट टेरेसा कॉलेज का है। इस कॉलेज के स्टूडेंट्स रीयूजेबल टॉयज बना रहे हैं, वो भी बहुत ही क्रिएटिव तरीके से। ये स्टूडेंट्स पुराने कपड़ों, फेंके गए लकड़ी के टुकड़ों, बैग और बॉक्सेस का इस्तेमाल खिलौने बनाने में कर रहे हैं। कोई विद्यार्थी पजल बना रहा है तो कोई कार और ट्रेन बना रहा है। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि खिलौने सेफ होने के साथ साथ चाइल्ड फ्रेंडली भी हो। और इस पूरे प्रयास की एक अच्छी बात ये भी है कि खिलौने आंगनवाड़ी बच्चों को खेलने के लिए दिए जाते हैं। आज जब भारत खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग में काफी आगे बढ़ रहा है तो वेस्ट से वैल्यू के ये अभियान, ये अभिनव प्रयोग बहुत मायने रखते हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक प्रोफेसर श्रीनिवास पदकांडला जी है, वे बहुत ही रोचक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ऑटोमोबाइल मेटल स्क्रैप से स्कल्पचर्स बनाए हैं। उनके द्वारा बनाए गए विशाल स्कल्पचर्स सार्वजनिक पार्कों में लगाए गए हैं और लोग उन्हें बहुत उत्साह से देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल वेस्ट की रिसाइकलिंग का यह एक अभिनव प्रयोग है। मैं एक बार फिर कोची और विजयवाड़ा के इन प्रयासों की सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि और लोग भी ऐसे प्रयासों में आगे आएंगे।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म वास्तव से, आवाजें सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की, शब्द रचना समीर का, संगीत से सजाया है जतिन और ललित ने।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार।
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है,
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म सुल्तान से, आवाज राहत फतेह अली खान की, संगीत से सजाया विशाल और शेखर ने, शब्द रचना इशाद कामिल की।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म कुर्बान से। आवाज़ें सोनू निगम, श्रेया घोषाल और सलीम की। संगीत से सजाया है सलीम सुलेमान ने, शब्द रचना निरंजन अयंगर की।

0: नमस्कार श्रोताओ, मैं राखी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम हमारी बेड़िया में। हमें बहुत खुशी होती है जब आप फोन व पत्र के माध्यम से हमें सुझाव भेजते हैं और हमें उत्साहित करते हैं। हमें आपके सवालों व सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो श्रोताओ, आज फिर हम आपके लिए एक और नई कहानी को साथ लेकर आए हैं। हमें आशा है आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आएगी। आज की कहानी को शुरू करने से पहले आप हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारा फोन नंबर है
1: 9311504000।

0: चार। जी हाँ, 9311504004।
1: दोस्तों, कहने को तो हम सब एक आजाद भारत में रहते हैं, पर आजादी हमें आज भी पूरी रीति से नहीं मिली है। आज भी हमारे देश में लड़कियां कई रूप से पाबंद हैं और उन्हें कई क्षेत्रों में अभी भी आजादी नहीं मिलती है। आज भी हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ने की, नौकरी करने की, अपने सपने पूरे करने की आजादी नहीं है। परंतु वे आज भी बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, शारीरिक शोषण, पुरुष प्रधानता, सती प्रथा जैसी प्रचलन में पाबंद हैं। आज हम हमारी कहानी के द्वारा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि किसी की कही बात किसी के दिल में किस प्रकार घर कर जाती है, वे उनके जीने तक की इच्छा को खत्म कर देती है या फिर अंदर ही अंदर उन्हें तनाव में ले जाती है। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर।
2: अरे ज्योति, कहाँ हो?
3: जी काकी, आइए आइए, अंदर आइए।
2: कैसे हो, आजकल दिखाई नहीं देते?
3: बस काकी, बढ़िया हूँ। अरे काकी, ये घर के कामों से फुर्सत कहाँ मिलती है? पहले तो पीयू काम में हाथ बटा देती थी, पर अब तो वो पढ़ाई में लगी हुई है। बस परमेश्वर करे बच्ची की मेहनत सफल हो जाए।
2: अरे ज्योति, तेरी क्या मत मारी गई है क्या, जो लड़की को घर के काम न सिखा कर पढ़ने में लगा दिया है?
3: अरे काकी, कैसी बातें कर रही हो आप, आजकल पढ़ाई के बगैर कुछ है क्या?
2: ज्योति, तू नहीं समझेगी, लड़की को फोन दे रखा है, अकेले बाहर आने जाने की अनुमति भी दे रखी है, यह सब तुझको आगे भारी पड़ेगा।
3: नहीं नहीं काकी, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पीहू ऐसी नहीं है।
2: हाँ, पर बाहर की हवा लगने में समय नहीं लगता, बाकी तो जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो बस समझा रही थी, उम्र में तजुर्बे से तुमसे बड़ी हूँ।
3: जी काकी, पर मेरी पीहू ऐसी नहीं है।
2: मैं जानती हूँ ज्योति, तभी तो कह रही हूँ, जिन संस्कारों में बच्ची पली बड़ी है उसे उसी में रहने दो, ये बाहर नौकरी के लिए जाना, ज्यादा पढ़ना, फिर बच्चे पूछते भी नहीं है माँ बाप को, तुम उन्हें जानती हो ना, मेरे राजसमंद वाले भाई को?
3: हाँ काकी।
2: उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, इतनी अच्छी लड़की थी, समझदार, होशियार, बाहर सूरत पढ़ने गई और फिर लौट कर आई नहीं।
3: काकी, जितना मैं अपनी बच्ची को जानती हूँ ना, मेरी पीहू अपने माता पिता की बहुत कदर करती है, अगर हम उससे कहें ना तो वो बिना कुछ कहे सब कुछ छोड़ देगी, पर हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची खूब आगे बढ़े, अपना, अपने गांव का, अपने माता पिता का, सबका नाम रोशन करे।
2: हाँ चलो, ऐसा ही हो बस, अब मैं चलती हूँ ज्योति, कभी समय निकाल कर घर पर आना और अपना, मोहन का और पीहू का भी ध्यान रखना।
3: जी काकी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा।
4: पीहू बेटा।
5: जी माँ, आई।
3: बेटा, आप क्या कर रहे थे?
5: माँ, मैं पढ़ रही थी, फिर पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई थी, आपने आवाज दी तो उठ कर गई।
3: बेटा, तुम सच में पढ़ती ही हो ना बस, या फोन में कुछ?
5: नहीं नहीं माँ, ये आप कैसी बात कर रहे हो? माँ, सब ठीक है ना?
6: ज्योति, मैंने सुना है ये क्या पूछ रही हो तुम पीहू से?
3: आप, आज वो पड़ोस वाली काकी आई थी, खूब सुना रही थी मुझे, सीधे सीधे तो कुछ बोल नहीं पाई, परंतु बहुत कुछ कह के गई है, मुझे बस मेरी बच्ची पीहू की चिंता हो रही है।
6: ज्योति, तुम अच्छे से जानती हो हमारी पीहू कैसी है, तुम उसकी माँ हो।
3: वो तो मैं जानती हूँ, पर आप भी तो जानते हो ना, हमारे यहाँ लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की अनुमति नहीं है, बस वो घर संभालती हैं। आज तो बस काकी भूल कर गई है, पर कल कोई ऊंच नीच हो गई तो सारे गांव वाले हमें ही सुनाएंगे।
6: अरे, ये कैसी बातें कर रही हो, ऐसी बातों ना तो सोचो ना ही करो, हमारी पीहू बहुत होशियार है, अच्छे से पढ़कर कलेक्टर बनेगी और हमारे पूरे गांव का नाम रोशन करेगी हमारी बेटी।
3: हाँ, आप सही कह रहे हैं,

0: ज्योति, मैं जानता हूँ गांव में ज्यादा लोग पढ़ाई के महत्व को नहीं समझते। उनके लिए चूल्हा चौका एक लड़की की जगह और संस्कार है। घर, पति, बच्चे, यह सब संभालने के लिए बना है, पर सही उम्र में। और पढ़ना या कुछ बनकर अपने गांव, शहर, अपने देश के लिए कुछ करना गलत नहीं है। हमारे पीहू के विचार बहुत अच्छे हैं। वो चाहती है कि वो हमारे और ऐसे कई गांव की परिस्थितियों को बदले और कुछ सहयोग कर सके।
1: जी, आप सही कह रहे हैं। अब मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी जिससे हमारी पीहू परेशान हो।
0: चलो अब सो जाते हैं।
2: पीहू बेटा, कैसी हो?
3: मैं अच्छी हूँ काकी जी, आप कैसी हो?
2: मैं भी अच्छी हूँ पीहू बेटा। ये अचानक से तुम्हारा वजन कैसे बढ़ गया?
3: वो क्या है ना, सारा दिन बैठकर पढ़ती रहती हूँ ना, इसलिए बस अब कुछ दिन बाद परीक्षा है, उसके बाद सैर कसरत करके मैं पहली जैसी हो जाऊंगी।
2: हाँ बेटा, सेहत पर भी ध्यान दो, मोटी लड़कियों को आजकल कोई पसंद नहीं करता।
1: काकी, हमारी पीहू इतनी प्यारी है कि कोई भी उसे देखते ही पसंद कर लेगा।
2: अरे ज्योति, बुरा मत मानो, मैं तो पीहू की भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। अच्छा वैसे तुम्हें पता चला, पास के गांव की रेखा शहर गई थी पढ़ने के लिए, वहीं एक लड़के के साथ चक्कर चल गया।
1: अरे वो रेखा उर्मिला काकी की बेटी?
2: हाँ वही रेखा।
1: अरे उर्मिला काकी ने उसके लिए कितना किया था।
2: तभी तो तुम्हें समझाती हूँ ज्योति, समय रहते समझ जाओ, पर तुम तो कुछ सुनती समझती ही नहीं हो।
3: पर काकी, सब एक जैसे तो नहीं होते हैं ना।
2: पीहू बेटा, तुम अभी छोटी हो, तुम कुछ नहीं समझती। ज्योति, पर तुम तो समझदार हो ना, कैसा जमाना है, तुम तो समझती हो ना कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है।
1: जी काकी, शायद आप सही बोल रहे हो, और पीहू बेटा आप छोटे हो, आप चुप रहो। चलो काकी, मैं अभी घर चलती हूँ। पीहू बेटा, मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दे सकती बेटा, तुम्हें जितना पढ़ना है यहीं पर पढ़ो और एक आम जिंदगी जियो जैसे सब जीते हैं। ठीक है बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे सपने बड़े हैं, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो जिससे मैं अपनी बेटी को ही खो दूँ।
3: माँ, वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर आप चिंता मत करो, मैं वही करूँगी जो आप कहोगे।
1: थैंक यू बेटा, मैं चाहती थी कि जो तुम चाहती हो वो बन जाओ, पर बेटा अब मुझे बहुत डर लग रहा है।
3: माँ आप डरिए मत, मैं यही हूँ आपके पास।
0: पीहू, तुम किचन में?
3: अरे बाबा, आप वो मम्मी की ना तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैं खाना बना रही थी।
0: क्या हुआ ज्योति को?
3: कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही, और वो कमरे में अभी आराम कर रही हैं।
1: अरे आप आ गए?
0: तुम ठीक हो ज्योति, क्या हुआ तुम्हें? पीहू बेटा, तुम जाओ पढ़ाई करो, यह मैं देख लूँगा।
3: नहीं पापा, मैं बाद में पढ़ लूंगी, आप माँ के साथ बैठो।
0: ज्योति, मुझे बताओगी क्या हुआ?
4: ज्योति पड़ोसियों की इधर उधर की और अपने दिल की चिंता, वह उसका निर्णय कि पीहू बाहर जाकर नहीं पढ़ेगी, वह समाज में चल रही हर एक बात मोहन को कह सुनाती है कि किस प्रकार वह अपने लोगों से लड़ते लड़ते थक चुकी है। देखते हैं अब मोहन किसका साथ देगा और किस प्रकार इस परिस्थिति को संभालेगा।
0: पीहू इधर आओ बेटा, मुझे आपसे और आपकी माँ से ये उम्मीद नहीं थी। अब बेटा तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, परीक्षा दो, मुझे तुम पर भरोसा है, मेरी बेटी अपना मुकाम हासिल कर लेगी, बस इतनी मेहनत करके पीछे मत हटना।
3: थैंक यू सो मच पापा, मुझ पर भरोसा करने के लिए।
0: जाओ अपने कमरे में जाओ बेटा। ज्योति, मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है तुम पर मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ कि ऐसे ही किसी की बात सुनकर इतना नकारात्मक मत हो, अपनी बेटी पर भरोसा करो। अगर इस समय हमने उसका साथ नहीं दिया तो शायद जरूर हमारी बच्ची हमसे दूर हो जाएगी।
1: मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद ही अपनी बच्ची का जीवन खराब करने चली थी।
0: ज्योति, लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते, हम उनके मुंह भी नहीं बंद कर सकते। कोई मोटा हो तो भी उन्हें दिक्कत है, कोई पतला हो तो भी उन्हें दिक्कत है। हम सबको परमेश्वर ने उसकी स्वरूप और समानता में बनाया है, इस बात के लिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए।
1: जी सही कहा आपने।
0: ज्योति याद रखना, वही बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं जिनके माँ बाप

0: समझते नहीं। अपनी बेटी का साथ दो, उस पर भरोसा करो और उसकी मेहनत की कद्र करो। प्रार्थना करो कि परमेश्वर से कि हमारी बच्ची सफल हो जाए और परमेश्वर उसे अच्छी बुद्धि दे। लोगों की बातों पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखो।
1: जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगी। मैं अपनी बच्ची का साथ दूंगी।
0: और हाँ, मैं खुद जाऊंगा अपनी बच्ची के साथ उसे परीक्षा दिलवाने।
1: पीहू, आज तो तुम्हारा नतीजा आने वाला है ना परीक्षा का।
2: हाँ माँ।
1: बेटा, आप इतने परेशान क्यों हो?
2: डर लग रहा है माँ मुझे।
1: अरे मेरी बेटी, मुझे पता है नतीजा अच्छा ही आएगा, तो डर मत।
0: पीहू, ज्योति, जल्दी बाहर आओ, कहाँ हो? अरे पीहू बेटा, तुमने परीक्षा पास कर ली है और तुम्हारा पहला पड़ाव भी कलेक्टर के लिए पास हो गया है।
2: आप सच बोल रहे हो ना?
0: हाँ बेटा हाँ, ज्योति मैंने कहा था ना कि पीहू कर लेगी। चलो मिठाई उठाओ, चलो मेरे साथ।
1: कहाँ?
0: काकी कैसी हो? ये लो, मुंह मीठा करो।
3: अरे मिठाई, किस खुशी में?
0: हमारी पीहू ने पहला पड़ाव पार कर लिया है।
3: अरे वाह, बहुत बहुत बधाई।
1: जी हाँ काकी, अब आप देखना जिस तरह हमारी पीहू ने परीक्षा अच्छे अंकों से पास करी है ना, वो आगे के भी सारे पड़ाव पार कर और जरूर अपने मुकाम पर पहुँच कर हमारे देश का नाम ऊंचा करेगी।
3: हाँ ज्योति, और तुम सब मुझे माफ कर देना, मैंने पीहू के लिए गलत बोला, पर अब मुझे विश्वास है हमारी पीहू सबसे अलग व समझदार है।
0: शुक्रिया काकी। और पीहू ही क्या, हमें किसी के लिए भी कुछ भी गलत बोलने का हक नहीं है बिना उसकी परिस्थिति जाने।
3: हाँ बेटा, मुझे माफ कर देना।
0: नहीं नहीं काकी, कोई बात नहीं, यह तो खुशी मनाने का समय है।
4: तो श्रोताओं, जैसा कि हमने आज पीहू की कहानी से देखा कि किस प्रकार पीहू बहुत पढ़ने वे अपने परिवार, गांव, देश का नाम रोशन करने के सपने देखती थी, परंतु समाज की गलत व नकारात्मक सोच का असर उसके परिवार, उसकी माँ के मन तक आ गया। परंतु मोहन की समझदारी की वजह से पीहू अपने सपने को पूरा कर पाई। कार्यक्रम से जुड़े विचार और सवाल आप हम तक शीघ्र से शीघ्र पहुँचाएं। हमारा नंबर है
5: 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
4: हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। इसी के साथ मैं राखी आपसे विदा लेना चाहूँगी। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
3: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुर्खियों में, जिसमें हम आज मन की बात के 134वें संस्करण में उठाए गए प्रमुख विषयों और उनसे जुड़े संदेशों पर चर्चा करेंगे। इस कड़ी में खेल, पर्यावरण, संस्कृति, विज्ञान और समाज सेवा जैसे अनेक प्रेरक विषयों को स्थान दिया गया। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन। अशोक जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद
3: अशोक जी। मन की बात के इस संस्करण के प्रमुख बिंदु क्या रहे और इनमें कौन से विषय आपको सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगे?
4: देखिए, महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और देश के जनता के साथ संवाद करते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर तो वो अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। और उस कड़ी में अगर हम आज की बात करें तो आज तो सबसे प्रमुख बात जो प्रधानमंत्री ने

0: की वो थी मौसम को लेकर कि लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी और इसके साथ साथ उन्होंने जो गर्मी में इससे निपटने के घरेलू नुस्खे भी बताए और जो हमारे पेय जल हैं या जैसे हमारे देश में आम के बारे में शरबत के बारे में दक्षिण भारत के तो उन सब की भी चर्चा की और उसके साथ साथ उन्होंने भारत के जो खिलाड़ी हैं महिलाएं हैं या पुरुष हैं वो जहां जहां भी कुछ एक अचीवमेंट करते हैं उसकी चर्चा जरूर करते हैं। तो आज उन्होंने जो खेल हुए हैं राष्ट्रीय खेलों में जो नए कीर्तिमान हुए हैं उनकी भी चर्चा की, उसके साथ उन्होंने जो अपने विदेशी दौरे हुए उसमें उनकी चर्चा की कि कैसे हमको हमारे पुराने विरासत जो ताम्रपत्र वापस किए गए और इसी तरह से वही नीदरलैंड की यात्रा के दौरान हुए फिर तो इस तरह के उन्होंने 5-7 जो बहुत मुख्य मुद्दे थे। फिर उन्होंने स्विमिंग क्लब की बात की, नदियों को सफाई करने के बारे में जो युवा अभियान चला रहे हैं उनकी भी चर्चा की। तो मुझे लगता है कि अगर हम मौसम की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण रहा, लेकिन हमारे जो एथलीट हैं उन्होंने जिस तरह से आज 100 मीटर की दौड़ में 2 दिनों के अंदर राष्ट्रीय रिकॉर्ड को 3 बार तोड़ा और 2 जो एथलीट थे विशेष तौर से उनकी चर्चा भी की और उनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की और काफी लंबी समय तक बातचीत की। तो ये खिलाड़ियों और खेलों को प्रोत्साहन देने का जो प्रधानमंत्री का एक संकल्प है वो भी आज बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उजागर किया
1: जी। और सबसे पहले खेलों की ही बात कर लेते हैं क्योंकि युवाओं के लिए ये विशेष रूप से प्रिय विषय है। भारतीय एथलीटों की हाल की उपलब्धियों को भारत में खेल संस्कृति के विकास से आप किस तरह से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने पहले भी बताया कि पीएम खेलों का और खेलों से जुड़ी हुई उपलब्धियों का अक्सर उल्लेख करते हैं।
0: बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है और ये मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जब जब हमारे देश के खिलाड़ी चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो तो उनको जिस तरह से प्रधानमंत्री स्वयं बात करते हैं और कई बार तो हमारी जैसे T20 की क्रिकेट टीम जब विश्व कप जीत कर आई तो उनको अपने घर पर बुलाया और एक एक के साथ अलग से बात की, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के जो लोग हैं देश हित में समाज हित में जब ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे होते हैं और जब उनके विषय में हम सुनते हैं तो हमें भी नई प्रेरणा मिलती है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत ही उन्होंने एथलीट्स के साथ की कि देश की ऐसी उपलब्धि जो हुई है और खासतौर से झारखंड के रांची में जो इस समय नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन हुआ उसमें 800 एथलीटों ने भाग लिया जो देशभर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे और उन्होंने वीरेंद्र वीर सिंह और विशाल टीके तेजस्विनी शंकर देव मीना कुलदीप कुमार इनके अलग अलग कैटेगरी में बनाए गए रिकॉर्डों की चर्चा की और 2 एथलीट हम बात करेंगे तो वीरेंद्र सिंह और अनिमेश इनके साथ तो टेलीफोन पर भी बात की और उनके संस्मरण सीखे बात की और उनको खूब प्रोत्साहित किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा एक तरह से उदाहरण है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो खेलों के बारे में इतने चिंतित हैं कि आज मन की बात के लगभग 10 मिनट तो उन्होंने खेलों के बारे में चर्चा की।
1: अशोक जी, विदेशों से वापस लाई जा रही भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों का हमारे इतिहास और विरासत संरक्षण के लिए क्या महत्व है, इस पर आपकी राय जानने, लेकिन पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस पर क्या कहा है।
2: नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था धर्म और संस्कृति

0: संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: अशोक जी, अभी हमने प्रधानमंत्री की बात सुनी और ये जो पहल है और ये जो सब कुछ अभी प्रधानमंत्री ने जिसका उल्लेख किया है, भारत की प्रतिष्ठा और गरिमा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है?
2: देखिए, प्रधानमंत्री को पिछले 12 वर्ष में अमेरिका, ब्रिटेन और दुनिया के अन्य देशों ने कितनी ही ऐसी भारत की जो विरासत है वो वापस लौटाई है। अगर उसकी कैटलॉग बनाई जाए तो हजारों में है, और ये केवल प्रधानमंत्री के प्रयास के कारण हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो हमारी एक परंपरा है, जो हमारा इतिहास है, वो हमको वापस मिलना चाहिए। क्योंकि हर बार जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां की स्थानीय सरकार ये कोशिश करती है कि हम प्रधानमंत्री को उनकी विरासत किस तरह से लौटा सकते हैं। और इसी कड़ी में जब प्रधानमंत्री नीदरलैंड गए थे तो वहां पर उनकी जो बातचीत हुई और उसमें विशेष समारोह हुआ और प्रधानमंत्री नीदरलैंड के भी मौजूद थे, और उस विशेष समारोह में जैसा अभी हमने सुना, चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को सौंपी गई, एक विशेष कार्यक्रम हुआ, और उसमें देश विदेश से लगातार अब संदेश मिल रहे हैं, लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं कि दुनिया भर में तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है, क्योंकि इस ताम्र पट्टिकाओं के प्रति लोगों की बहुत जिज्ञासा थी और इससे जुड़े हुए जो बातें प्रधानमंत्री ने स्वयं साझा की, इनमें से 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से, जैसा हम अभी सुन रहे थे, राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज चोला के एक वचन को पूरा करने के लिए जुड़ी हुई है। जो उस समय चोला वंश की जो उपलब्धियां थी उसका भी वर्णन मिलता है। तो इससे पता ये चलता है चोला साम्राज्य जो था उसकी समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की भी इससे जानकारी मिलती है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है, जिसकी भी अभी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। ये जो कुछ हो रहा है, ये सारी जो धरोहर हैं, ये भारत में जब वापस आएंगी तो भारत की धरोहर, संस्कृति, विरासत के बारे में हमारी नई जो जनरेशन आ रही है उनकी भी जानकारी बढ़ेगी।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं में खगोल विज्ञान और विज्ञान के प्रति बढ़ती रुचि का भी उल्लेख किया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: अशोक जी, जो अभी प्रधानमंत्री ने कहा है उसे आप भारत के भविष्य के लिए कितना सकारात्मक मानते हैं, और युवाओं में खासकर जो खगोल विज्ञान को लेकर जो अब दिलचस्पी बढ़ रही है उस दृष्टिकोण से?
2: देखिए, रात को तारों को निहारना ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। तो एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप्स और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा लोग टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कहा कि राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्थान भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। तो यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ पुस्तकें, लाइब्रेरी, टेलीस्कोप की सुविधाएं भी हैं। तो इसकी तरफ युवा वर्ग को आकर्षित करने की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। जैसे हमने सुना, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी ये जो एस्ट्रोनॉमी है ये हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद हैं, और ये जो मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं, नेविगेशन हो, पांचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। और हमारे यहाँ तो एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में लोगों में उत्सुकता जगाई है। तो इसको और एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, और आज के युवाओं ने भी इस प्रकार से काफी उत्साह दिखाई दे रहा है।
1: अशोक जी, प्रधानमंत्री की एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी है।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है।

0: इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: अशोक जी, गंगा डॉल्फिन संरक्षण और नदी स्वच्छता जैसी पहल पर्यावरण संरक्षण के व्यापक लक्ष्य में किस प्रकार योगदान दे सकती है?
2: आज एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि मन की बात में जब प्रधानमंत्री इसकी चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर विजुअल भी दिखाया गया कि कैसे भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस जो है वो उत्तर प्रदेश के उस घटना स्थल पर किस प्रकार से काम कर रही है। वहाँ एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी और ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये जो एम्बुलेंस है उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची और फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया, तो एक जीवन जो है उसको लौटाया गया। ये एक साधारण बात हो सकती है लेकिन डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस जो है ये एक चलता फिरता अस्पताल है और इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, विशेष स्ट्रेचर्स हैं, बचाव के उपकरण हैं, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंसे या नदी से कट जाए तो उसकी तुरंत सहायता की जा सकती है। तो जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर को भी बचाते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री का ध्यान इन बातों की ओर भी जाता है कि कैसे देश में इस प्रकार का जो प्रकृति की धरोहर है उनको बचाने की दृष्टि से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। यानी ये जो अभियान चला है चलता फिरता अस्पताल वाला डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस, ये अपने आप में एक अजूबा है, जिन लोगों ने कभी देखा नहीं आज सब लोग टेलीविजन पर उसको देखकर सचमुच में आश्चर्यचकित हुए।
1: श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री के मन की बात का ये संस्करण हमें प्रेरित करता है कि सकारात्मक प्रयास, जन भागीदारी और सामूहिक संकल्प से बड़े परिवर्तन संभव हैं। अशोक जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम

0: कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज एक रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमा के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित यह क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमा की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashwani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को, जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
2: जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीज फातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
1: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रहीं।
0: महबूब

0: खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। यह फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
1: देरी यहाँ से नहीं जाएगी।
2: खबरदार राधा, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना।
1: राधा तो देरी ने तुम्हें धन दिया और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना फेर है,

0: अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती थी।
1: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
0: मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह यह भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहाँ जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूं समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है, यानी उस वक्त से काम कर रही हूं जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
2: फिल्म तकदीर में इस फिल्म के सह कलाकारों को याद करते हुए नरगिस कहती हैं,
0: जैसा कि आप सब जानते हैं, मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया, कैसा हुआ? और वो बिगड़कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाये के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ, याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था, मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहाँ तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया।
1: पुरानी फिल्मों की तुलना नई फिल्मों से करते हुए नरगिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
0: फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही खिसक आए हैं। इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोम कर देने वाले डायलॉग सुनने में नहीं आते। बहरहाल, ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं।
2: श्रोताओं, पुरानी फिल्मों के कलाकार अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। अभिनेत्री नरगिस भी ऐसी ही कलाकार थी।
0: फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्याल रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेस बदलकर एक कोठे पर गई। वहां आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बातचीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए।
1: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस विराम के बाद।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: एक्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है पर जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
1: डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.

0: श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के गायक पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।
1: श्रोता है जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमा, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में, राग सिंधुरा में, चतुरंग।

फिल्म बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।

पंडित डीवी पलुस्कर शुद्ध शास्त्रीय संगीत गायक के अतिरिक्त एक महान भजन गायक भी थे। आइए सुनते हैं पंडित जी का गाया लोकप्रिय भजन ठुमक चलत रामचंद्र।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात।

श्रोताओं, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखीं, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत, किसने बांसुरी बजाई।

0: अंतिम पद है।
1: उतर गगन से एक बार फिर पीकर इसका प्याला, उतर गगन से

सन 40 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शास्त्री जी का एक और गीत।

संस्कृति के उपकरण बदल गए, बदल गए पहले कारण करण। जीवन के बाने में आने वाला मरण, जीवन के बाने में आने वाला

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: अभी आप आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे।
2: You were listening to the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की
1: आकाशवाणी इंटरनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वे ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु येरैया is a renowned saxophone artist from Andhra Pradesh. He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashvani Kadappa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of कंची कामकोटी आस्थान विद्वान।
0: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वी एन बालचंदर संगति देंगे। श्री वी एन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टी जी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
1: इन टुनाइट्स कंसर्ट श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी इज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री वी एन बालचंदर इज अ रिनाउंड डोलू आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर डिस्टिंग्विश्ड गुरुस इंक्लूडिंग श्री एन लक्ष्मी नारायण एंड तिरुच्चारई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई। ही इज ए टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी।
0: श्री येरैया अपने सैक्सोफोन वादन की शुरुआत कर रहे हैं निन्नु कोरी युनन्नुरा से। ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया बिगिन्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नु कोरी युनन्नुरा ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वीएन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पटनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanamemi, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari, set to Adithal.

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सूरजानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना
0: मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: यू आर नाउ लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुर एर्रैया इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एर्रैया नेक्स्ट प्रेजेंट्स सामगान प्रियकरम, ए कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु सूरजानंद इन राग कीरवाणी सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: श्री येरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तुरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग, जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा, सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन, डोलू पर संगति दी श्री वीएन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। दिस प्रोग्राम was recorded in the studios of Akashwani Kadapa, and this broadcast came to you from the studios of Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान।
1: आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशिरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के आलुवा में शाजी वलाशिरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। शाजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। शाजी वलाशिरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला

0: सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमा के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President Ou Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a 5-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme. The Central Board of Secondary Education CBSE has said an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal of its service provider that were recently flagged in the public domain. It said vulnerabilities have been identified and contained and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. In Himachal Pradesh, the Bharatiya Janata Party, BJP, has won 3 out of 4 municipal corporations in the civic body elections, winning Dharamshala, Solan and Mandi. The Congress Party has won the Palampur Municipal Corporation. The counting of votes was held today while polling took place on the 17th of this month. In Maharashtra, the ruling Mahayuti Alliance today finalised its seat-sharing formula for the upcoming Legislative Council elections to 17 seats. Under the agreement, the BJP will contest 11 seats, Shiv Sena 4 seats and Nationalist Congress Party, NCP, 2 seats. The opposition Mahavikas Agadi, MVA, had earlier announced its allocation for 15 of the 17 seats, with Congress contesting 8 seats, Shiv Sena UBT 4 and the Sharad Pawar-led NCP 3 seats. Discussions on the remaining Nashik and Nanded seats are still underway. Tomorrow is the last day for filing nomination papers for the elections. In the high-voltage IPL title clash, Gujarat Titans set a target of 156 runs for defending champions Royal Challengers Bengaluru, RCB, at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. In reply, RCB were 133 for 5 in 14.3 overs when reports last came in. Put into bat, Gujarat Titans posted 155 for 8 in their 20 overs, with Washington Sundar scoring an unbeaten 50 off 37 balls. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है. मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर. हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं. मीडियम वेव पर हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है. कल प्रातः 5:55 पर प्रातःकालीन सभाओं के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे. तब तक के लिए हमें अनुमति दें. शुभ रात्रि. जय हिंद.